एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त सन 2026। स्टूडियो घड़ी में समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ पलों में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए

0: रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1,000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नज़दीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जाँच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदनवार।
3: ये है विविध भारती।

8 अगस्त यानी आज ही के दिन 1942 को बॉम्बे के अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। गांधी जी का विचार था कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। उन्होंने कहा, करो या मरो। ये था चिंतन। और आइए अब सुनते हैं कुछ भक्ति रचनाएं।

ये था भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदनवार। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

झरोखा में सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, इसका 274वां भाग प्रसारित होगा। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुदगल, भाग 8, प्रस्तुत करता है कांचन प्रकाश संगीत। सुबह 7 बजे आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय है सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर। आज ये कार्यक्रम गीतकार गुलशन बावरा पर केंद्रित होगा, प्रस्तुतकर्ता हैं रमेश गोखले। इसी कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी दिल की गिरह, लेखिका विनीता अस्थाना, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। दिन में 11 बजे सुनिएगा मैटिनी शो, क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2 प्रसारित होगा, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। यादों की महफिल कार्यक्रम होगा दोपहर 12:05 पर और 1 बजे आप सुनते हैं सुरीला सफर। दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे और 3 बजे फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। नाट्य तरंग में दोपहर 3:30 पर सुनिएगा नाटक किसी एक फूल का नाम लो, इसका भाग 1 प्रसारित होगा, मूल गुजराती लेखक मधु रॉय, हिंदी रूपांतर ज्योति व्यास और निर्देशक सुशील बनर्जी। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का 1 भाग प्रसारित होगा, संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। संध्या 5 बजे आप सुनते हैं छाया गीत का पुनः प्रसारण और 5:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन 6:35 पर और विशेष जयमाला कार्यक्रम संध्या 7 बजे प्रसारित होगा। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे अभिनेता निर्देशक निर्माता मनोज कुमार। जिज्ञासा का प्रसारण समय संध्या 7:45 और हवा महल में रात्रि 8 बजे सुनो कहानी के अंतर्गत कहानी होगी पंच परमेश्वर, इसका भाग 1 प्रसारित होगा। कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, वाचक स्वर अमरकांत दुबे का और प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। रात्रि 9 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए और आज रात 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे मैटिनी शो का पुनः प्रसारण। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, आज इसका भाग 274।

वानर सम्राट सुग्रीव की अपने चरणों में भक्ति और समर्पण देख श्रीराम ने उन्हें भरत की भांति अपना लिया और उनसे वे सभी उपाय करने का आग्रह किया जिससे सीता का समाचार प्राप्त किया जा सके। सुग्रीव के आदेश पर वानरों की विशाल सेना एकत्र हो गई। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वानरों की वो सेना मैंने देखी थी। उनकी संख्या इतनी थी जिसकी गिनती करने वाले को मूर्ख ही कहा जा सकता है। सभी वानर श्रीराम के सम्मुख आकर सिर झुकाते हैं। प्रत्येक वानर से श्रीराम उसकी कुशल क्षेम पूछकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। सुग्रीव ने असंख्य वानरों की विशाल सेना को सभी दिशाओं में जाकर सीता जी को ढूंढने का आदेश दिया और इस काम के लिए एक माह का समय दिया। अपने राजा के सामने एक बार फिर सिर नवाकर वानर श्रीराम का स्मरण करते हुए विभिन्न दिशाओं में

देखी थी। उनकी संख्या इतनी थी जिसकी गिनती करने वाले को मूर्ख ही कहा जा सकता है। सभी वानर श्रीराम के सम्मुख आकर सिर झुकाते हैं। प्रत्येक वानर से श्रीराम उसकी कुशल क्षेम पूछकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। सुग्रीव ने असंख्य वानरों की विशाल सेना को सभी दिशाओं में जाकर सीता जी को ढूंढने का आदेश दिया और इस काम के लिए एक माह का समय दिया। अपने राजा के सामने एक बार फिर सिर नवाकर वानर श्रीराम का स्मरण करते हुए विभिन्न दिशाओं में चल दिए। सबके अंत में जब पवन सुत हनुमान ने सिर नवाया तो श्रीराम ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया तथा अपना अनन्य सेवक जानकर उन्हें अपनी अंगूठी उतार कर दी। बोले, सभी प्रकार से सीता को समझा बुझाकर शीघ्र लौट आना।

0: गीता कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान आज आप सुन रहे थे भाग 274।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में वर्षा चौमासा को लेकर आज हम पुनः उपस्थित हैं। शुभा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टूडियो में।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, और आप ही की ओर देखे जा रही हूँ, सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आपने आज कौन सा राग चुना है, किस बंदिश के लिए आपका मन बना है?
1: वैसे तो हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि राग मल्हार जो है उसके विभिन्न प्रकार हैं। आज सोच रही हूँ कि ऐसे दो मल्हार के प्रकार सुनाऊं, आम शायद सुनने को ना मिलते हों। वैसे तो इतने प्रकार हैं और अलग अलग गुणीजन वो सुनाते ही हैं, मीराबाई की मल्हार, धूलिया मल्हार इत्यादि इत्यादि,
0: चरजू की मल्हार, रामदासी मल्हार,
1: जी वो बहुत हैं रचनाएं। लेकिन दो मल्हार के प्रकार मैंने गुरुजी से सीखे भी और सुने भी। तो एक का नाम है चंद्र मल्हार। तो इस राग की थोड़ी सी विशेषता बता दूं कि ये बिलावल थाट का उन्होंने बताया है, और पूर्वांग में इसमें केदार उसका उसके कुछ स्वर समुदाय मिलते हैं, और जो उत्तरांग में बिलावल
0: जी,
1: तो और उसकी फिर एक विशेष स्वर संगति है जो कि इस राग में मिलती है केवल
0: जी।
1: तो वो आपको मैं जरा सा गा के सुनाती हूँ
0: जी।

0: ये तो केदार
1: का
0: जी
1: ये है।
0: और पनी धनी सादा पमा ये बिलावल का अंग हो गया, और इसकी जो अपनी विशेष एक स्वर संगति है वो मा प ध नी ध प मा, ये चंद्रमल्हार की संगति मानी गई है। तो ये इन स्वर संगतियों को मिला के चंद्रमल्हार राग तैयार किया गया है।
1: जी, ये नाम भी बहुत ही सुंदर लग रहा है
0: जी।
1: और इसकी बंदिश जिसमें हम वर्षा ऋतु से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली या जो गीत रचना है उसके बारे में भी तो बताएंगे ना आप।
0: जी, बंदिश के बोल इस तरह हैं, बरखा न भावे उन बिनरी, शीतल पवन लागे दहन। तो पवन तो ठंडी चल रही है लेकिन वो हमें जला रही है विरह में, विरह व्यथा में जलती नायिका को, और भी उसको आग जैसा जैसी महसूस हो रही है। कारी कारी घटा देख डर लागे, वो उधर तो उत्सव मनता है लेकिन यहाँ काली घटा देख के एक दुख।
1: तो शीतल पवन जहाँ दाहक हो गई तो यहाँ तो काली घटा तो डराएगी ही।
0: कारी कारी घटा देख डर लागे, दामिनी दमक मुरला बोलन, ये इसका
1: मुरला मतलब मोर।
0: जी हाँ जी,
1: आप सुनाएंगी?
0: जी जरूर।

0: श्रोता मित्रों, अभी हमने ये सुना राग चंद्रमल्हार। चंद्रमल्हार की ये बंदिश बहुत ही खूबसूरत थी। शुभा जी, आप एक और दूसरे मल्हार का भी जिक्र कर रही थी, वो
1: जी ये भी एक अलग अलग रागों को जोड़ के एक ये राग बना है, अरुण मल्हार
0: मिश्रण।
1: जी
0: हाँ
1: जी है, मिश्रण है। और इसमें कुछ स्वर संगतियाँ तो गौड़ की दिखती हैं, कुछ स्वर संगतियाँ दिखती हैं बिलावल की, और इसमें तिलंग का भी एक अंश आता है, एक टुकड़ा ऐसा है जो कि तिलंग की याद दिलाता है
0: जी।
1: तो ये अरुण मल्हार है। और इसकी मुख्य रूप से मैं बता देती हूँ कि क्या चलन बताया गया है मुझे।
2: रे गामा गामा सा रे गामा गामा,
1: ये गौड़।
2: मा रे पा,
1: विशेष मल्हार की स्वर संगति।

0: आज हमने दो मल्हार के दो प्रकार सुने, एक तो चंद्र मल्हार और अरुण मल्हार। प्रतीक्षा करते हैं कल की और आज लेते हैं आज्ञा। कल फिर भेंट
1: नमस्कार।
0: होगी। नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संग।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भोले बिजली गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज ऐतिहासिक आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, तो इस अवसर पर इस कार्यक्रम में हमने आज आपके लिए कुछ खास गीत चुने हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले पिछले गीत।

0: Durango, Durango, Durango, Durango.
1: अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे कवि प्रदीप की ये रचना। गाने वाले कलाकार थे आमिर बाई कर्नाटकी, प्रदीप और साथी। फिल्म का नाम था किस्मत। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जागृति का गीत, आवाज प्रदीप की। गीत को लिखा है प्रदीप ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था।

कार्यक्रम का अगला गीत सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में प्रदीप का लिखा हुआ हमने चुना है। आवाजें हैं हेमंत कुमार, सविता चौधरी और साथियों की। फिल्म का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस।

0: बज गया पिदुल दीवानो चलक चलो,
1: बज गया पिदुल दीवानो चलक चलो,
0: मंजिल की तरफ मस्तानो चलक चलो,
1: मंजिल की तरफ मस्तानो।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद भोले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज ऐतिहासिक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर भोले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ देशभक्ति गीत।

0: का और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
1: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हंसराज बहल का संगीत, आवाज मोहम्मद रफी और साथियों की थी, फिल्म का नाम था सिकंदर आजम। और आइए अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाजें शांति माथुर और साथियों की, फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया।

बढ़ाऊंगा कदम, पहने पाए, पहने

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिस्ते गीत कार्यक्रम की ये है आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है शहीद। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफ़ी खान मस्तान और साथी। गीत को लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और धुन बनाई है गुलाम हैदर ने।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के इस अंक के साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। नमस्कार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करते हैं एक सुविचार के साथ। कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता है, क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है। महात्मा गांधी। तो ये था आज का सुविचार।

और अब एक नज़र डालते हैं 8 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1919 ईस्वी में आज ही के दिन यानी 8 अगस्त को ही रावलपिंडी संधि के तहत ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की आज़ादी को मान्यता दी थी। 1942 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था और गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था। पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी आज के दिन 1947 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया की सदस्यता को मंजूरी दी थी और सन 2010 में आज ही के दिन तेजस्विनी सावंत ने म्यूनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता के 50 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी।

और अब एक नज़र 8 अगस्त को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। सन 1908 में जन्म हुआ था आज ही के दिन शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का। भारतीय लेखक भीष्म साहनी का भी जन्म हुआ था 8 अगस्त को ही सन 1915 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में जन्म हुआ था आज ही के दिन भारतीय क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई का। 1948 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ कपिल सिब्बल का। और प्रसिद्ध भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का भी जन्म हुआ था आज के दिन 1994 ईस्वी में। अब एक नजर डालते हैं उन व्यक्तियों पर जिनका निधन 8 अगस्त को ही हो गया था। सन 2000 में निधन हुआ था 8 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1968-69 में अध्यक्ष रहे एस निज लिंगप्पा का। और भारतीय फिल्म और टीवी कलाकार अनुपम श्याम का भी निधन हुआ था 8 अगस्त को ही सन 2021 ईस्वी में। तो श्रोताओ, ये था आज का इतिहास। नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में आगे हम नजर डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर, लेकिन पहले हम आपको सुना रहे हैं ये भक्ति रचना।

मारुति मेरा दोस्त, अभी आपने सुना इस फिल्म से यह भक्ति रचना हरिहरन और साथियों की आवाजों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। अब हम नजर डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। पहले सुनते हैं ये संदेश।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अब लीजिए सुनिए स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। विशेष वाहन जांच अभियान में 1,40,000 रुपए का जुर्माना। जहां जिला मुख्यालय सासाराम स्थित समाहरणालय गेट के समीप मुख्य सड़क मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरती गई। अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार के वाहनों की गहन जांच की गई, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों की जांच के साथ साथ यातायात नियमों के अनुपालन का भी निरीक्षण किया गया। इस कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों

से कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के डीटीओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से चलाया गया।

बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर रोहतास जिले की मानी ग्राम पंचायत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर 5 दिवसीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। मानी जैव विविधता प्रबंधन समिति की पहल पर आयोजित इस अभियान में पंचायत के करीब 10 सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया तथा पृथ्वी को हरा भरा, स्वच्छ और पर्यावरण संतुलित बनाए रखने का संकल्प लिया।

सिखों के आठवें गुरु श्री गुरु हरकिशन पातिशाही जी के 370वें प्रकाश गुरु पर्व के अवसर पर बिहार सिख मिशन धर्म प्रचार कमेटी के तत्वावधान में ऐतिहासिक गुरुद्वारा चाचा फग्गूमल साहिब सासाराम द्वारा सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रुद्रपुरा स्थित कुष्ठ अस्पताल तथा सदर अस्पताल सासाराम में चिकित्सकों के निर्देशानुसार मरीजों के बीच फल दवा और लंगर का वितरण किया गया। शाम 7 बजे ऐतिहासिक गुरुद्वारा चाचा फग्गूमल साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ के भोग के उपरांत भव्य कीर्तन दरबार एवं गुरु इतिहास कथा का आयोजन किया गया।

सूर्यपुरा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं के सम्मान में गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। मदैना, कल्याणी, अलीगंज, गोशलडी, बलिहार एवं सूर्यपुरा समेत कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं द्वारा पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को फल, पौष्टिक आहार एवं उपहार भेंट कर उनके स्वस्थ मातृत्व की कामना की गई।

अब लेते हैं कुछ गतिविधियां कैमूर जिले की। 15 अगस्त को जगजीवन स्टेडियम भभुआ में आयोजित होने वाले एक दिवसीय फुटबॉल फाइनल मैच की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को सुबह 8 बजे जिला खेल पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला फुटबॉल संघ कैमूर के पूर्व सचिव राम प्रसाद सिंह ने की। बैठक में जिला खेल पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह, जिला फुटबॉल संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बिरजू सिंह पटेल एवं जिला फुटबॉल संघ के सचिव निर्मल सिंह सहित खेल जगत से जुड़े कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।

स्वतंत्रता दिवस पर कैमूर जिले के 3532 महादलित टोलों में होगा ध्वजारोहण, तैयारी शुरू। जी हां, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैमूर जिले के

532 महादलित टोलों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके मद्देनजर जिला कल्याण पदाधिकारी 11 अगस्त तक महादलित टोलों का चयन कर सूची उपलब्ध कराएंगे। डीएम ने की तैयारियों की समीक्षा। प्रभारी मंत्री सुबह 9 बजे जगजीवन स्टेडियम में करेंगे मुख्य झंडोत्तोलन। प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। तो श्रोताओं, ये थी रोहतास और कैमूर के कुछ स्थानीय गतिविधियों के बारे में जानकारी। और अब डालते हैं एक नज़र मौसम पूर्वानुमान पर। तो रोहतास और आसपास के क्षेत्रों में आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है, बारिश की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और श्रोताओं, नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में अब हम सुनवा रहे हैं एक और गाना। गाने के बाद हम नज़र डालेंगे समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर। पहले सुनते हैं ये गाना।

मुकेश और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे धर्म करम फिल्म का ये गीत। मजरूह ने गीत को लिखा था और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और अब चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्ते रोहतास के आखिरी पड़ाव पर नज़र डालते हैं समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर। तो हमारे पास है प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र। प्रभात खबर अपने पहले पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में लिखता है, सूबे में खुलेंगे 400 डिग्री कॉलेज, 15 से जेईई नीट की ऑनलाइन कोचिंग। संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं। दैनिक भास्कर लिखता है, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक बनेगा 50 किलोमीटर लंबा कच्चा कावरिया पथ। गडकरी से मिले पथ निर्माण मंत्री, कई प्रोजेक्ट पर की बात।

हिंदुस्तान अपने पहले पृष्ठ पर लिखता है, सड़कों के विकास में नाबार्ड 21,000 करोड़ देगा। और इस खबर को भी अपने मुख्य खबर बनाया है, लिखता है, बिहार में साइबर अपराध पर बड़े प्रहार की तैयारी। साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट पर मुख्य सचिव और डीजीपी की बैठक में दिए गए कई बड़े निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए सभी जिलों के डीएम और एसपी। हिंदुस्तान ये भी समाचार दिया है, बफोर्स घोटाला केस हमेशा के लिए बंद। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को करीब 40 साल पुराने बफोर्स घोटाले पर आखिरी याचिका भी खारिज कर दी। इसके साथ ही अब यह मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। दैनिक जागरण इस खबर को अपनी सुर्खी बनाई है, लिखता है, एनटीए के 3 विषय विशेषज्ञ ही थे पेपर लीक के मुख्य स्रोत। सीबीआई ने आरोप पत्र में हुई सुरक्षा चूकों को किया उजागर। और ये भी समाचार दिया है, रेल यात्रा के दौरान अब छोटे अपराधों में जेल नहीं।

आर्थिक समाचारों में है, शाकाहारी थाली के दाम 7 महीने के शिखर पर, मांसाहारी 9% हुई महंगी। क्रिसिल की रिपोर्ट में प्याज तेल गैस ने बढ़ाया रसोई का बजट, और बाजार में 2 दिन की तेजी थमी, सेंसेक्स 456 अंक टूटा।

खेल समाचारों में है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत एक बार फिर बैडमिंटन के सबसे बड़े महाकुंभ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। 17 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में जहां पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी जैसे स्थापित दिग्गजों पर सबकी निगाहें होंगी, वहीं भारत के चार होनहार युवा खिलाड़ी भी पहली बार इस वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। ये आकाशवाणी सासाराम है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से हम रिले करेंगे समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुनेंगे समाचार।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे

0: प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
2: इस कॉन्वोकेशन में 3,000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट। यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक एफसीआरए पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: We have seen the comments.
5: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
3: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
5: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
3: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्ण

0: निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
3: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
4: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में

0: नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
2: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही तीन विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के तीन विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से ये देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के साजाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त लाल बहादुर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं दोस्ती फिल्म के इस गाने से जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत को लिखा है मजरूह ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं पठानटोली कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सद्दा फारजू, साहिल अरमान, मशकूर आलम, शम्मा परवीन, सादिया तस्नीम और बेबी अलीशा। पुराना शहर दाऊदनगर से सैयद सरफराज अहमद, खुर्शीद अहमद और राजेंद्र कुमार। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद, फारूक। और ढोली सकरा से हमारे श्रोता हैं जयंत कुमार वैरागी। इसी गाने के लिए फरमाइशी पत्र आया है फुटानी चौक नारायण स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन, परासर, आराध्या और लल्लू पंडित का भी। तो चलिए आप सभी को हम सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। चलिए अब कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर फकीरा फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। और इस गाने को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका पर

प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर काला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। तो पेश है आप सबों की पसंद पर फकीरा फिल्म का ये गीत।

0: चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: पसंद आपके कार्यक्रम में अब हम सुना रहे हैं आप सबों की पसंद पर आशिक फिल्म का एक गीत मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और संगीत दिया है शंकर जय किशन ने। और इस गीत को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं कुवात से शेख जफर हसन और राकेश रोशन। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से हमारे श्रोता हैं अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रुबीना वसीम।

आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। और ये हमारे श्रोता हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी और बुलकी वाली फलना झा। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

हिमालय की गोद में। अब हम सुनवा रहे हैं इस फिल्म से गीत आप सबों की पसंद पर। आवाजें हैं लता मंगेशकर की, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। पसंद करने वाले श्रोता हैं गढ़ानोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान। ब्रह्मपुरा मानीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। नैका गांव धर्मशाला सासाराम से राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति कुमारी, राहुल और बादल। और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं हिमालय की गोद में फिल्म से ये गीत।

और अब पसंदा भी कार्यक्रम के आखिर में हम सुन रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, रचना है वर्मा मल्लिक की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनना चाहते हैं थाना मोड़ गड़ानोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुन्निशा सद्दा मंसूरी, नगमानिशा लाल बाबू, सिमरन अली अरबाज मंसूरी, सैफ अली शबाना और शाहबाज। आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, साइना शर्मा और निवान शर्मा। और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम नाहौना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ, जगदीश, दशरथ, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इरमान राजा और आलम शेख। नगर पंचायत दिनारा से हमारे श्रोता हैं जयराम सिंह और मोहल्ला बागवाही खां सासाराम से शमशेर आलम, गोल्डन आलम और मंजर आलम। तो आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

इसी गीत को इन श्रोताओं ने भी सुनना चाहा है। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने भी

0: श्रोता इस गीत के साथ ही आज का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब थोड़ी देर में हम रिले करेंगे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल डाउनलोड वेब

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीतामढ़ी जिले में दुग्ध चूर्ण संयंत्र समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा घर की शुरुआत की जाएगी। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीतामढ़ी जिले में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध चूर्ण संयंत्र और मत्स्य ब्रूड बैंक के प्रजनन कार्य का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री इस दौरान जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे।
1: मुख्यमंत्री सीतामढ़ी जिले के राघोपुर बखरुई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आज जिले को कई सौगात देंगे। वह 76 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत वाली 30 MTPD क्षमता के दुग्ध चूर्ण संयंत्र परियोजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मत्स्य ब्रूड बैंक के प्रजनन कार्य का उद्घाटन भी करेंगे। स्थानीय लाभुकों को ऑक्सीजनरेटेड बैग के माध्यम से स्पॉन का वितरण तथा मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री पहले पुनौरा धाम पहुंचेंगे, जहां मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद परिसर में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और डेयरी मत्स्य और पशुपालन संसाधन मंत्री नंद किशोर राम समेत जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए सीता से राजेश कुमार।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में 400 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों का पलायन रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। श्री चौधरी ने कहा कि 211 नव स्थापित डिग्री कॉलेजों में 10 अगस्त तक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब नीट और जेईई जैसी प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने मठ और मंदिरों से स्कूलों को गोद लेने या नए स्कूल खोलने का आग्रह भी किया।
2: अगले कुछ दिनों में 400 से अधिक और डिग्री कॉलेज खोलूंगा सर, क्योंकि हमारी कल्पना है कि बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाए। मैं तो यह आग्रह करूंगा, जितने मठ और मंदिर है तय कीजिए, एक एक स्कूल एक एक कॉलेज सब आपको गोद लेने का काम किया और आप लोग खोलिए, हम लोग आपको मान्यता देंगे।
0: उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि नवगठित 211 सरकारी डिग्री कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले सहायक प्राध्यापकों को अपनी पीएचडी की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने कहा है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले सहायक प्राध्यापक सेवा अवधि के दौरान यदि पीएचडी कर रहे हैं तो उन्हें इसे छोड़ना होगा। विभाग का मानना है कि शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से शिक्षण कार्य करना होगा, इसलिए शोध और नियमित सेवा साथ साथ संभव नहीं है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा घर की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि आशा घर की स्थापना से आशा कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सामुदायिक सहभागिता को मजबूती मिलेगी। इस बीच राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जन को आशा घर शुरू करने के निर्देश भेज दिए हैं। इस योजना के तहत हर जिले में जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर में आशा घर के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बने रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने

0: स्पष्ट किया कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई के जरिए लेन देन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेन देन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में नए खनिज उत्पादों के लिए ब्लॉक चिन्हित कर खनन की तैयारी की जा रही है। खान एवं भूतत्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया में लौह अयस्क के रूप में दुर्लभ खनिज मैग्नेटाइट के भंडार का पता चला है। वहीं रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट के ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के स्तर पर खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय टीम 17 अगस्त को पटना आएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा में बिहार 7,30,00,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर का स्थान है। देश भर में इस मिशन के तहत कुल 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण हुए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरणवाल ने कहा कि ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने कहा है कि प्रदेश भर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में आवास के साथ बाजार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होगी। श्री सिंह ने पाटलिपुत्र टाउनशिप से जुड़ी अंतर विभागीय परामर्श बैठक में निर्देश दिया कि आवासन के साथ ही बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि टाउनशिप में रोजगार, आवास, वाणिज्यिक गतिविधियां, मनोरंजन और संस्थागत सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश में नियोजित शहरों का विकास संभव हो सकेगा। प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी

0: के प्रति लोगों को जागरूक करने और इस संबंध में सूचना देने के लिए सुधा दूध के पैकेट और बिजली बिल की प्रतियों पर हेल्पलाइन नंबर अंकित किए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने साइबर अपराध से जुड़ी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दूध के पैकेट और बिजली बिल पर हेल्पलाइन नंबर 1930 अंकित करने के निर्देश दिए हैं। श्री अमृत ने कहा कि इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की वित्तीय साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने केंद्र सरकार से वैशाली जिले में हाजीपुर के पासवान चौक से बिदुपुर तक एलिवेटेड सड़क के निर्माण की मांग की है। नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान श्री शैलेंद्र ने भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पीपा पुल के निर्माण की मांग भी रखी है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, कटिहार, बांका और जमुई समेत राज्य के दक्षिणी भागों के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
1: दिनांक 8 अगस्त को राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है तथा शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पुणे में 12 अगस्त से आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 17 सदस्यीय बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकर ने बताया कि राजगीर खेल अकादमी में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक गेविन फरेरा के मार्गदर्शन में टीम का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि आज टीम पुणे के लिए रवाना होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग के कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि इस सुविधा से लोगों की सभी समस्याओं का समाधान अब एक ही जगह पर हो सकेगा। रोहतास जिले के मुरादाबाद में कल देर रात समरसता का संदेश लेकर पहुंची संत रविदास जयंती की कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। उल्लासपूर्ण माहौल में कलश को संत रविदास मंदिर में स्थापित किया गया है। मधुबनी जिले के जयनगर स्थित एसएसबी की 48वीं वाहिनी मुख्यालय से राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ओवर ब्रिज तक देशभक्ति मैराथन का आयोजन किया गया। अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास बंगाली टोला से पुलिस ने छापेमारी कर 12 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक जब्त किया है। मौके से 2 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार में साइबर अपराध पर बड़े प्रहार की तैयारी, पटना, नवादा और नालंदा देश के टॉप 10 हॉट स्पॉट में। दैनिक जागरण ने सड़क परियोजनाओं पर लिखा है, नाबार्ड से उधार लेकर सड़क और पुल बनाएगी सरकार। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले को तरजीह देते हुए लिखा है, एक्सपर्ट ने पेपर के 2 सेट बनाकर बेचे थे, चार्जशीट दाखिल। प्रभात खबर ने ईओयू की कार्रवाई पर लिखा है, 4 साल की नौकरी में सहरसा के डीपीओ के पास सीवान में भव्य मकान, 40 लाख का जेवर, छपरा में पत्नी के नाम 6 बीघा जमीन। आज अखबार लिखता है, बेटा से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया 25 टन मखाना। राष्ट्रीय सागर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार की संस्कृति, सभ्यता और लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाना हमारी प्राथमिकता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीतामढ़ी जिले में दुग्ध चूर्ण संयंत्र समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा घर की शुरुआत की जाएगी। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय

यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें, जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले के हलचल हम रिले करेंगे पटना केंद्र से, और शाम 7:50 से आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से रात्रि 8 बजे से। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे हेलो मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग। रात्रि 8:30 प्रायोजित कार्यक्रम होगा उड़ान। रात्रि 9:15 समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 से आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत। और रात्रि 9:15 गजलों का हमारा कार्यक्रम होगा महफिल। रात्रि 10:00 से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। और रात्रि 10:30 से होगा कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी सासाराम है। सुबह के 9:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका।

सावन को आने दो। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में। गौर कनपुरी की रचना थी और राज कमल का संगीत। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। अब हम सुन रहे हैं प्यार का मौसम फिल्म से एक गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार है मजरू और संगीतकार आर डी बर्मन।

मेरा गांव मेरा देश। अब हम सुना रहे हैं इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब गीत मालिका कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं चुपके चुपके फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है एस डी बर्मन ने।

0: लता मंगेशकर के गाए चुपके चुपके फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतमालिका अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब हम थोड़ी देर में रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
2: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प गीतकार के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब क्या करें, इस गीतकार का नाम ही बावरा है। जाहिर है कि बावरेपन की बहुत सारी निशानियां होंगी इनकी इस दास्तान में।

आज के फनकार कार्यक्रम आज गुलचन बावरा पर केंद्रित है, एक ऐसी जुनूनी शख्सियत पर जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और फिल्म संसार में जबरदस्त नाम कमाया।

0: प्यार मेरी जिंदगी।
1: देखिए जी, मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को जिला शेखुपुरा में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। साकी वाले दिन मैं जन्मा था। कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए, तो मैं तो अपने माता पिता खो चुका था। लकीली देखिए, हमारी एक बहन है कौशल्या देवी, जो जयपुर में रहती थी।
2: पढ़ाई लिखाई के बाद गुलशन बावरा को शौक लग गया लिखने का और वो चले आए मुंबई।
1: जब मैं आया था बम्बई में 1955 में, तो मुझे लगता है बम्बई की पॉपुलेशन 10 लाख थी, और आज इतनी पब्लिक को देखना, उनसे वाकफियत करना, उनसे बोलना।
2: लेकिन मुंबई वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं आए थे, वो तो आए थे गायक बनने के लिए। आपको बता दें कि गुलशन बावरा को रेलवे में नौकरी मिल गई थी और कोटा में उनकी पोस्टिंग हुई, और उसके बाद वो चले आए मुंबई। सन 1955 में वो मुंबई आए, रेलवे में क्लर्की करते और बाकी समय में फिल्मों में लिखने के लिए और गायकी के लिए जद्दोजहद करते।
1: बम्बई ऐसी नगरी है कि यहाँ पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बम्बई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ।
2: यही वो दिन थे जब रेलवे में माल गोदाम की नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब से आई मालगाड़ी गेहूं के एक के बाद एक बोरे उतारे चली जा रही है। गेहूं की इस जबरदस्त पैदावार को देखकर गुलशन बावरा के मन का जो गीतकार था, वो कह उठा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये कविता उन्होंने अपनी डायरी में लिखकर रख ली और मनोज कुमार को उन्होंने दिखाई, जो उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और गुलशन बावरा के दोस्त भी थे। मनोज कुमार को ये कविता याद रह गई। आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म उपकार बनाई, तो इस कविता को एक नामी गीत में बदल दिया गया।

जो उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और गुलशन बावरा के दोस्त भी थे। मनोज कुमार को ये कविता याद रह गई। आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म उपकार बनाई तो इस कविता को एक नामी गीत में बदल दिया गया।

0: गुलशन बावरा का नाम गुलशन बावरा कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है।
1: बात यूं है, जब मैं नया नया दिल्ली से आया था तो मेरा कुछ रहने या कपड़ों का स्टाइल कुछ ऐसा था जो दिल्ली वाले नीले पीले कपड़े और पहना करता था, तो लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे। गीत लिखा चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जा। तो जब वो गीत रिकॉर्ड हुआ उसके साथ ही मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तो एक दफा कल्याण जी भाई के घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था, तो उसने बोला एक तीसरा गाना लिखना था भजन, तो उसने उसको बोला कि ये गाने तुम उसी से ही लिखवाओ जिसने ये दोनों गाने लिखे। तो बोले ये सामने बैठा हुआ है लड़का, इसी ने लिखा है वो गाना। तो बोले झूठ मत बोलो कल्याण जी भाई, आपका जोक मारने का स्टाइल है, तो ये क्या लिखेगा, ये तो पिक पॉकेट सा पॉकेट मार सा लग बावरा। तो उस फिल्म में शैलेंद्र और हर्षद के भी गीत थे, तो उन्होंने रविंदर भाई से पूछा कि रवीन भाई ये कल्याण जी करेक्ट बोल रहे हैं कि ये गाने इसी ने लिखे हैं? बोले हाँ बिल्कुल इसी लड़के ने लिखे हैं। तो बोले अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा, ये बावरा सा लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया।
0: तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। सबसे पहले गुलशन बावरा ने सन 1959 में कल्याण जी वीरजी शाह के संगीत निर्देशन में अपना पहला गीत लिखा जिसे लता मंगेशकर ने गाया। वो गाना था
2: मैं क्या जानू।

1961 में गुलशन बावरा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी ताकत से फिल्मों में गाने लिखने लगे। गुलशन बावरा ने सबसे ज्यादा काम आरडी बर्मन के साथ किया। पंचम के साथ उनकी दोस्ती बड़ी ही मशहूर रही है। गुलशन बावरा ने एक एल्बम भी जारी किया जिसमें वो पंचम से जुड़ी दोस्ती की और गाने बनने की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें गुलशन बावरा ने बताया था कि एक दिन बारिश का समय था और पंचम का उनके पास फोन आया। उन्होंने फोन पर गुलशन बावरा को एक धुन दी जो थी चाबू चाबू चिया चिया चाबू चाबू चिया। गुलशन बावरा ने कहा ये क्या है, इस पर मैं क्या गाना लिखूं? तो पंचम ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर पर आता हूं। दरवाजा खटका और पंचम गुलशन बावरा के घर में घुसते हुए गाना गाने लगे। मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग बनाना अंजू, गीत क्या है धुन क्या है तू समझ गया गुल्लू, अब जल्दी से लिख दे गाना गुल्लू।

इस तरह से बड़े ही सुंदर और मस्ती भरे माहौल में गुलशन बावरा और पंचम ने कुछ अनमोल गाने दिए। गुलशन बावरा को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सन 1974 में जंजीर फिल्म के इस गाने के लिए।

0: 68 में फिल्म उपकार के इस गाने के लिए।
1: ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती।
0: जरा हाथ की सफाई फिल्म का ये गाना सुन लीजिए और ये सोचिए कि गुलशन बावरा ने किस तरह के मजेदार और सुरीले गाने दिए फिल्म संसार।

बाबरा बहुत लंबे समय तक लिखते रहे, यहाँ तक कि अजय देवगन के अभिनय वाली हकीकत फिल्म का ये मशहूर गाना सुनिए जो उनके बाद के दौर का गाना है।

0: वैसे आपको बता दें कि गुलशन बावरा पर्दे पर भी नजर आए फिल्म जंजीर के इस गाने में जो शख्स हारमोनियम बजाता हुआ थिरक रहा है वो गुलशन बावरा ही हैं।
1: दीवान

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म संसार को बहुत ही मस्ती भरे और अनमोल गाने देने वाले गीतकार गुलशन बावरा पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान,

0: संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस अग्रणी संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं।
2: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन बीएसई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने इन कार्यक्रमों को समय से और प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधि

0: मंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की अपनी मांग दोहराई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल सकती है। लिंडसे ओ ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग कवि, दार्शनिक, संगीतकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय सुबह के 10:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान।

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित जानकारियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत मोकर ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव अग्रेर के बारे में। सासाराम प्रखंड मुख्यालय से उत्तर दिशा में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सासाराम आरा रोड के सटे बगल में एक गांव है अग्रेर। आज तो अग्रेर गांव का इतना विस्तार हो गया है कि सासाराम आरा रोड के दोनों तरफ बस्ती हो गई है और अग्रेर एक छोटा बाजार के रूप में विस्तारित हो गया है। आसपास के लोग सामान्य खरीदारी भी अग्रेर बाजार से ही कर लेते हैं, फिर भी पुरानी बस्ती जो अग्रेर की है उसकी स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं दिखती। गाँव में गली नाली की स्थिति बहुत ही खराब है। गांव के कुछ भाग में तो नाली का पानी गली में बहता है तो कुछ भाग में नाली बिल्कुल टूटी हुई दिखाई दिया। गांव के पास में ही एक मध्य विद्यालय अग्रेर स्थित है और पास में ही 10+2 विद्यालय भी है जो रामपुर नरेश के नाम से जाना जाता है। गांव में बिजली के पोल पर कवर्ड तार दिखा। गाँव में ही एक सामुदायिक भवन भी है जहाँ छोटे छोटे कार्यक्रम एवं बैठक वगैरह किया जा सकता है। श्रोताओं ये तो रही सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम अग्रेर की बाहरी स्थिति जो हमें देखने को मिला, लेकिन वास्तव में वहाँ विकास की क्या स्थिति है, नाली गली पेयजल शिक्षा स्वच्छता स्वास्थ्य सुविधा के बारे में ग्रामीणों का क्या कहना है, सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ वहाँ रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है, इन सभी जानकारियों के लिए हमने संपर्क किया ग्राम अग्रेर के लोगों से और बातचीत की। विषय है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम अग्रेर में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं आज हम रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम अग्रेर में उपस्थित हैं और यहां पर अग्रेर के कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, तो आइए इनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। जी आप अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका?
1: उपेंद्र सिंह।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
1: अग्रेर का।
0: पंचायत
1: मोकर।
0: अच्छा ये बताइए कि अभी अग्रेर में विकास की क्या स्थिति है, मतलब कि नाली गली बिजली कैसी स्थिति में है?
1: सर बिजली ठीक है, आप सब देखिए रहे हैं सर, आईबे किए हैं सर, गली भी नली देखिए सर।
0: अग्रेर

0: लगभग कितने घरों की बस्ती होगी?
1: होगा 600-500 ऐसे ही लगभग।
0: 500 से 600 है
1: जी सर।
0: हम लोग इधर गांव के तरफ आए हैं, ये रोड साइड में भी है, सब अग्रेर में ही पड़ता है?
1: अग्रेर में पड़ता है सर।
0: तो जो गांव है आप लोगों का, ये इसमें गली ठीक है हालत में?
1: नहीं सर, गली भी बुरा है, नली भी बुरा पास है, देख रहे हैं पानी देखे सर सामने।
0: तो नली गांव में बनी थी कि नहीं बनी थी?
1: बनी थी, ऐसी हो गई सर, ड्रेसिंग हो गई, काम नहीं कर रहा है सब, देखिए कि पानी लगल बात देखिए रहे हैं।
0: तो पानी नहीं निकल पाता है,
1: घर घर झगड़ा हो जा रहा है सर पानी खातिर सर, घर में पानी नहीं ना रहेगा सर, बाहर निकालिए सर, भाग गई थी देखिए रहे हैं सर।
0: पानी आप लोगों का निकल कर कहाँ जाता है, नाली का पानी?
1: देखिए पोखरा है, पोखरा में जाता है।
0: तो अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है?
1: नहीं सर, नहीं पा रहा है।
0: अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को पीने के लिए जो नल जल योजना सरकार चलाई थी उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं?
1: नहीं मिल रहा है सर, किसी को नहीं मिल रहा है, लगे हुए नहीं है सर।
0: मैंने लगा ही नहीं है। वार्ड कितने हैं यहाँ पर?
1: 4 वार्ड है
0: यहाँ पर, 4 वार्ड हैं। तो चारों वार्ड में से किसी में नहीं लगा है?
1: किसी में ही लगा हुआ सर। नहीं बंद बस, अब चालू कहाँ है, सब बंद है एकदम।
0: मतलब कि लगा नहीं है कि चालू नहीं है?
1: लगले नहीं कि कहीं,
2: तुम नहीं लगा है अभी,
0: एक दो वार्ड में नहीं लगा है?
2: नहीं लगा, एक दो में नहीं लगा है।
0: अच्छा, बाकी में जो लगा हुआ चालू नहीं है?
2: बाकी में 3 में लगा हुआ था, वो खाली जो रखा हुआ है चालू नहीं हुआ,
0: वो भी चालू नहीं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर बिजली कैसी आप लोगों को मिलती है?
1: बिजली ठीक है सर,
0: बिजली ठीक है,
1: समय से मिलती है।
0: बिजली में जो सरकार छूट दे रही है उसका लाभ आप लोग ले रहे हैं?
1: ले रहे हैं 25 वार्ड ना सर,
0: 125
1: सर मालूम है,
0: तो छूट मिल रही है,
1: छूट
0: बहुत से लोगों का तो बिजली माफ हो जा रहा होगा।
1: पंप वगैरह उसको एक ही बॉल पर काम करता है, 25 कम चला रहा है सर।
0: अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय है कि नहीं?
1: आज नहीं देखा है, वही है रामगढ़।
0: अच्छा, रामगढ़ में जो सरकारी विद्यालय है
1: जी सर।
0: किस कक्षा तक है?
1: 5 तक,
0: 8 तक। अच्छा, उत्क्रमित हो गया होगा?
1: अच्छा,
0: उत्क्रमित होकर
1: मध्य विद्यालय।
0: अच्छा, तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी?
1: नहीं, बच्चा जाता है, पढ़ के आता है।
0: और ये बताइए सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं, जैसे जो पात्र होते हैं उनके लिए राशन कार्ड होता है?
1: राशन तो बना है, मिल रहा है,
0: मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर आवास योजना के भी पात्र होंगे जिनको कॉलोनी मिलती है, घर मिली है कुछ लोगों को?
1: आप सबको मिला है, जैसे अनुशासन होता है वैसे करता है सब।
0: मैंने मिला है ना कुछ लोगों को?
1: हाँ मिला है, हर आदमी मिलता है
0: जी। अच्छा, आप करते क्या हैं?
1: खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं।
0: खेती अपनी है, जमीन अपनी है,
1: लेके पैसा पकड़ते हैं।
0: अच्छा, आपके घर में कोई बूढ़े लोग हैं कि नहीं जिन्हें पेंशन योजना का लाभ मिलता हो?
1: नहीं सर, हमारे गांव घर में नहीं है
0: जी। धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं जी। आप अपना नाम बताएं।
3: कृष्णा पासवान।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
3: अग्रेर का।
0: अच्छा, अग्रेर मोकर पंचायत में है ना
3: जी।
0: ये बताइए कि अग्रेर कितने घरों की बस्ती है?
3: 500 है।
0: वार्ड कितने हैं यहाँ पर?
3: 4 वार्ड है।
0: 4 वार्ड है। आप किस वार्ड में रहते हैं?
3: 2 में।
0: 2 की स्थिति बताइए, 2 में क्या स्थिति है नाली गली की?
3: नाली गली का पूछिए मत, ना नली ठीक है ना गली ठीक है, देखिए रहे पानी जाम लगा हुआ है, गली में चल रहे हैं तो पानी पे चल रहे हैं, ना नली ठीक है ना गली ठीक है,
0: नाली के पानी नहीं निकल पाता है।
3: नहीं, जगह नहीं तो निकलेगा कहाँ से?
0: तो बरसात का समय अभी चल रहा है, इस समय तो बहुत परेशानी होती होगी
3: जी।
0: यहाँ पर पेयजल वाला कुछ सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है? नल जल
3: नहीं है, लगा नहीं है,
0: लगा ही नहीं है
3: जी।
0: तो आपके, आप 2 वार्ड में है, 2 वार्ड में नहीं लगा है और किसी वार्ड में नहीं लगा है?
3: 2 और 3 नहीं लगा है, 1 बाजार में 4 मैंने है, उसमें नल जल जैसे बैठा गया है, बाकी उसका अभी कोई काम पूरा नहीं हुआ है अभी।
0: मैंने लगा कर छोड़ दिया,
3: खाली बैठा कर ऊपर से, और कुछ नहीं हुआ है,
0: लाभ नहीं ले पाता नहीं। है यहाँ लोग। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों को पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र है कि नहीं?
3: जी बगल में है,
0: बगल में है,
3: यहीं पे देखिए।
0: ये तो हम लोग बैठे हुए सामुदायिक भवन है ना,
3: इसका बगल में आंगनबाड़ी है।
0: अच्छा, ये आंगनबाड़ी
3: ढह गया है,
0: तो बच्चे वहाँ पर जाते हैं पढ़ने?
3: नहीं नहीं, गिर जाएगा तो मर जाएगा ना बच्चा।
0: मतलब कि पढ़ाई वहाँ पर नहीं हो पाती? कहाँ पढ़ते?
3: मुखिया जी के घर होता है।
0: अच्छा, बगल में जा करके पढ़ाई
3: जी।
0: और यहाँ हम लोग जो बैठ कर कार्यक्रम बना रहे हैं, ये सामुदायिक भवन
3: है।
0: अच्छा, आप क्या करते हैं?
3: हम लोग मजदूरी करते हैं।
0: तो मजदूरी के लिए आपको यहीं पर मिल जाता है काम की? बाजार जाना पड़ता है,
3: सासाराम जाना पड़ता है
0: जी।
3: गलोछनी पर अगर जो है ना बस्ती, गरीबे का है, यहाँ सब कमाने खाने वाला है।
0: खेती गृहस्थी नहीं है?
3: खेती गृहस्थी नहीं है।
0: अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉलोनी मिली है लोगों को?
3: मिला है, कुछ मिला है कुछ नहीं मिला है।
0: आप पात्र हैं कि नहीं, आप लिए हैं कि नहीं?
3: हम लिए हैं, बहुत पहले ही मिला था हम लोग का 50,000 जब चल रहा था तो घर के लिए।
0: उस समय जो मिला था उसमें बन गया था, बना लिए थे,
3: बना लिए हैं,
0: उसी में रहते हैं ना
3: जी।
0: अच्छा, राशन कार्ड है कि नहीं आपका?
3: राशन मिलता है।
0: और जिनका राशन कार्ड होता है उन्हें आयुष्मान कार्ड बनता है जिसमें 5 लाख तक के इलाज घर परिवार के लिए होते हैं, ये बनवाए हैं?
3: बनवाए हैं।
0: कोई और योजना का लाभ आपके परिवार को मिलता है, जैसे घर में कोई बूढ़े लोग होंगे तो पेंशन योजना कोई है बड़े?
3: है, हमारा बाबूजी है,
0: पिताजी हैं।

0: जी
1: माँ भी हैं तो उनको पेंशन योजना की राशि मिलती है ना?
0: मिलता है।
1: तो आप लोगों के गांव की एक समस्या सभी लोगों के साथ है कि यहाँ पर नाली गली सही हालत में नहीं है और पेयजल की समस्या है
0: जी।
1: बाकी चीज तो यहाँ पर ठीक है। जी धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। जी आप अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका?
2: सिकंदर कुमार।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: अगलेर का।
1: क्या करते हैं सिकंदर जी?
2: पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। इसे
1: यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए बेसिक जो शिक्षा केंद्र होता है यानी प्राथमिक चाहे मध्य विद्यालय है आपके पास में ना?
2: हाँ सर है।
1: कैसी स्थिति है?
2: ठीक ठाक है सर।
1: आप गांव से पढ़े हैं?
2: हाँ सर।
1: उस समय की स्थिति और आज की स्थिति देखते हैं तो क्या अच्छी स्थिति है आज?
2: हाँ आज तो बहुत अच्छी है पहले से।
1: विद्यालय के?
2: विद्यालय के सर।
1: शिक्षक हैं वहाँ पर?
2: हाँ सर है।
1: बैठने की व्यवस्था वगैरह
2: सब बढ़िया है सर।
1: अच्छा आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर है?
2: हाँ सर है।
1: आंगनबाड़ी तो देख रहे हैं यहाँ पर जर्जर हालत में है।
2: नहीं नहीं आगे भी बना है सर।
1: अच्छा अलग वार्ड में है?
2: हाँ वो अलग वार्ड में है। इस वार्ड ये दूसरा वार्ड में पड़ता है। दो है।
1: अच्छा,
2: एक दो में है बस।
1: अच्छा एक दो में आंगनबाड़ी है?
2: हाँ सर।
1: एक वाला ठीक है?
2: हाँ सर एक दो दोनों सही है सर। मसलत यहाँ टूटने ये टूटने की वजह से वहाँ पढ़ाया जाता है सर।
1: यहाँ जर्जर हालत में है दो वार्ड में जो है और एक वाला ठीक है?
2: हाँ सर वो एक वाला बन गया है नया
1: जी। अच्छा ये बताइए अभी आपके जो गांव की स्थिति पूछी जाए तो कैसी लग रही है, क्या स्थिति है अभी?
2: सर बहुत दयनीय है। गली नली का बहुत प्रॉब्लम है सर। बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है। हाँ गली नली,
1: गली और नाली दोनों?
2: दोनों सर। ना गली सही है ना नली सही है।
1: क्या गली तो हम देख रहे हैं कि ढलाई किया हुआ है लेकिन
2: सर 10 गो में 1 गो नहीं होता है कि सही होता है वही बस सर। 9 गो खराबे है सर।
1: मैंने पूरे गांव में सही हालत में नहीं है।
2: सही हालत में नहीं है। रोड पे नली बह रही है। अब बताइए बहुत पहले का बात है, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उसी टाइम का नली बना हुआ है। अभी तक फिर उस साइड का नली नहीं बना।
1: तो बरसात के समय तो बहुत दिक्कत हो रही होगी अभी?
2: हाँ सर बहुत दिक्कत। रोड पे नली बहती है, बोलिए दिए सर। बरसात का जो मौसम आता है तो रोड पे नली बहने लगती है।
1: इसकी शिकायत आप लोग अपने जो जनप्रतिनिधि यानी मुखिया जो होते हैं, आपका मुकर पंचायत है ना?
2: जी सर।
1: तो कभी नहीं किए हैं?
2: बुजुर्ग लोग किए हैं।
1: कंप्लेन हुआ है?
2: हुआ है सर।
1: शिकायत हुई है कि मैंने इस तरह की स्थिति
3: तभी ना देखें सर।
1: लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि यहाँ पर पेयजल के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है?
2: हाँ सर नहीं है। कहीं हुआ है सर मगर चालू नहीं है। कहीं सफा है भी नहीं किया है।
1: अच्छा ये बताइए सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ आपको आपके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है?
2: सर मेरे घर में बूढ़ बुजुर्ग तो नहीं है, दादी नहीं है ना दादा है।
1: पिताजी?
2: पिताजी हैं तो मजदूरी वजूरी करते हैं।
1: उम्र कितनी है उनकी? 60 नहीं पार करी है?
2: नहीं सर अभी 60 नहीं।
1: ये बताइए कि आप पात्र हैं कि नहीं, आप लिए हैं कि नहीं आवास योजना का लाभ?
2: सर मिला होगा पापा को, मेरे को
1: पापा को मिला। और राशन कार्ड है आपका?
2: हाँ सर है।
1: आप तो पढ़े लिखे हैं, कम से कम आयुष्मान कार्ड बनवा लिए होंगे?
2: हाँ सर है।
1: यानी कि योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ विकास के मामले में ये गांव पिछड़ा हुआ?
2: हाँ सर यही बात है।
1: जी धन्यवाद। श्रोताओं सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम अग्रेर के कुछ और लोगों से की गई बातचीत हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे लेकिन उससे पूर्व आपको सुनवाते हैं एक गीत आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और फिल्म है शिकार।

0: गीत संगीत का आनंद लेने के बाद आइए चलते हैं लोगों के बीच।
1: श्रोताओं, आज हमारी बातें हो रही है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम अग्रेर में विकास कार्य और योजनाओं के बारे में, और हमारे साथ ग्राम अग्रेर के कुछ ग्रामीण हैं। आइए मिलते हैं और बातें करते हैं। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और उनका परिचय जानते हैं।
2: हनुमान राम।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: अग्रेर के।
1: कौन पंचायत है आप?
2: मोकर।
1: आप अग्रेर में रहते हैं, क्या स्थिति है?
2: गली नाली क्या है?
1: गली नाली सही हालत में नहीं है?
2: ना, सही नहीं है।
1: तो ये सब जगह वही स्थिति है कि कुछ में ठीक है?
2: कुछ में हल्का ठीक है, हल्का कहीं ढह गया, फूट गया।
1: तो नाली पक्की बनी थी पहले ना?
2: हाँ, पहले बनी थी,
1: लेकिन उसका मरम्मत नहीं हो पाया?
2: ना, नहीं हुआ है।
1: ढका हुआ है वह नाली?
2: ढका नहीं, उघार में है, पानी बहता है पूरा आषाढ़ को, तो पूरा रोड पर चल जाता है, आने जाने में समस्या पड़ता है। यही बात है।
1: तो बरसात के समय, जैसे अभी बरसात का चल रहा है, इसमें तो आने में दिक्कत होती है?
2: सर, अभी भर जाएगा पानी।
1: अभी चल रहा है
2: नली के ऊपर, अगवा बड़ा के पेड़ चलो थोड़ा सा अगवा
1: जी। यहाँ पर बिजली कैसे मिलते हैं आप लोग?
2: बिजली ठीक ठाक है यहाँ पर।
1: बिजली में सब जो तार खींचा गया हो, कवर्ड तार हो गया ना पुल पर,
2: केबल वाला सब हो गया,
1: खुला तार नहीं ना है?
2: ना, खुला नहीं।
1: बिजली तो भरपूर मिलती है, और इसमें जो सरकार छूट दे रही है उसका भी लाभ मिल रहा है?
2: उसका भी लाभ लिए हैं हम,
1: सबको 125 यूनिट की छूट मिल रही है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं?
2: सब कपड़ा पड़ा मिलता है, खाना पीना आंगनबाड़ी में, अभी तो छोटा बच्ची है जा रही है, कपड़ा ड्रेस व्रेस मिला है।
1: सरकारी विद्यालय की स्थिति?
2: सब ठीक ठाक है।
1: पेयजल के लिए जो नल जल योजना सरकार चलाई थी, यहाँ पर लगा नहीं?
2: अभी नहीं, दो नंबर में लगा हुआ है अभी।
1: तो आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं?
2: पानी वो कल से, चापा कल से पीते हैं अपन।
1: गर्मी के समय में कोई समस्या होती है कि चलता है?
2: चलता है, गर्मी की समस्या में कभी भागता है कभी चलता है।
1: आप क्या करते हैं?
2: हम मजदूरी।

0: करते हैं।
1: अच्छा बताइए, सरकारी कुछ योजना का लाभ आप या आपके परिवार के सदस्य कुछ ले रहे हैं?
0: मिला है, आवास मिला है, घर द्वार बनाए हैं, थोड़ा बहुत
1: आवास योजना का लाभ आपको मिला
0: जी।
1: और घर में बूढ़े लोग भी हैं?
0: ना, पिताजी थे तो उसका मिल रहा था बूढ़ा पेंशन।
1: और कोई घर में नहीं है?
0: माँ है, माँ को अभी नहीं मिलता है।
1: माँ को है तो माँ को तो अभी रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत भी पेंशन मिलती है?
0: नहीं तो अभी नहीं मिलता है।
1: आवेदन कर देना चाहिए ना?
0: आवेदन कर थे, कुछ प्रॉब्लम था उसमें छट गया फॉर्म।
1: और राशन कार्ड?
0: राशन सब मिलता है।
1: आयुष्मान कार्ड भी बनवा लिए हैं ना?
0: स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया
1: तो उसमें 5 लाख तक के इलाज की सुविधा है
0: ना? तो अभी तो बनवाएंगे।
1: यहाँ योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? विकास के मामले में कुछ पिछड़ा हुआ है?
0: विकास के मामले में फंसा
1: है। धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: सुभाष पासवान।
1: सुभाष जी कहाँ के रहने वाले हैं?
2: अगलेर का।
1: पंचायत?
2: मुकर।
1: ये बताइए आपके गांव की क्या स्थिति है अभी आज के समय में?
2: बहुत दयनीय है, रोड पर पानी चल रहा है।
1: नाली का पानी?
2: जी नाली का पानी।
1: पक्की नाली बनी हुई थी पहले से ना?
2: बनी हुई थी, बाकी सब भर गई है।
1: टूट भी गया है?
2: टूट गया है।
1: गली की क्या स्थिति है?
2: गली भी टूट गया
1: है। कभी आप लोग शिकायत पंचायत जो प्रतिनिधि हैं यानी मुखिया जी से नहीं किए?
2: बहुत बार किए थे सब लोग, बाकी उस सब नहीं समझते हैं,
1: ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
2: नहीं,
1: यहाँ पर रहने वाले लोगों को पानी की भी समस्या है, बोल रहे हैं लोग कि पेयजल के लिए सरकार की तरफ से नल जल योजना नहीं लगा। पानी तो अपने घर का चापाकल का पीते हैं।
2: जी जी।
1: अच्छा यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए कोई है व्यवस्था, मतलब अचानक कोई बीमार पड़ जाए तो जाना पड़ता है सासाराम? कहीं है?
2: जाना पड़ता है।
1: आसपास में कोई नहीं है उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह?
2: उतना मुझे पता नहीं है।
1: अच्छा आप करते क्या हैं?
2: गाड़ी घोड़ा चलाते हैं।
1: गाड़ी चलाते हैं
2: जी।
1: सरकार के तरफ से बहुत सी योजनाएं चलती है, उसमें से कुछ लाभ आप लोगों को मिला हुआ है?
2: कुछ नहीं।
1: बोलने मिली है?
2: नहीं
1: किसी को परिवार में?
2: नहीं।
1: अच्छा यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा व्यवस्था?
2: आंगनबाड़ी है गांव में, फिर से रामपुर स्कूल पर ग्रेड भी है।
1: अच्छा सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं और जो चलाई जा रही है उसका लाभ घर में कोई बड़े बूढ़े कोई सदस्य हैं क्या?
2: मेरी मम्मी है।
1: पेंशन योजना का लाभ लेते हैं?
2: जी विधवा पेंशन।
1: राशन कार्ड का लाभ?
2: हाँ राशन मिलता है।
1: आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं?
2: अभी बनवाई भी नहीं किए हैं।
1: बनवा लेना चाहिए ना, उसमें लाभ होता है क्योंकि इलाज की सुविधा होती है, अचानक कोई बीमार पड़ जाए तो 5 लाख तक का एक तरह से इंश्योरेंस है।
2: बनवा लेंगे।
1: तो क्या कहना चाहेंगे इस गांव के बारे में?
2: रोड है, नली जाम है, ये सब जरूरी है।
1: और पानी पे पानी बाकी योजनाओं का लाभ आप लोग ले रहे हैं? जी धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
3: राम अवतार कुमार
1: जी। राम अवतार जी क्या करते हैं आप?
3: अभी तो हम काम उम करते हैं
1: जी,
3: पढ़ाई छोड़ चुके हैं।
1: अग्रेर करने वाले हैं ना?
3: हाँ हाँ हाँ।
1: पंचायत कौन सा है?
3: मोकर पंचायत।
1: क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के बारे में?
3: अभी क्या कहना चाहेंगे, गली नली ठीक नहीं है, पानी जो नल जल का योजना है वो नहीं बैठा है यहाँ।
1: मैंने नाली गली की समस्या है और पीने वाली पानी की समस्या। अच्छा शिक्षा के मामले में कैसा है आपका गांव?
3: सही है,
1: यहाँ तो आंगनबाड़ी केंद्र भी है, मध्य विद्यालय भी है, और आपके पास में एक 10+2 विद्यालय भी है ना?
3: हाँ, वो रामपुर में।
1: रामपुर मतलब पास ही में है?
3: हाँ,
1: रामपुर भले कहलाता है लेकिन बगल में ही है। तो शिक्षा के मामले में तो यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, आपके पास से ही आरा सासाराम रोड जो है ये गुजर रहा है बगल में, लेकिन गांव में जो गली है वह अच्छी हालत में नहीं
3: है। नहीं देखिए ना कैसा है।
1: बिजली सही मिल रहे हैं ना आप लोगों को?
3: बिजली सही है
1: जी, बिजली में जो छूट सरकार दे रही है उसका भी लाभ?
3: हाँ सही मिल रहा है।
1: ये बताइए कि यहाँ पर खेती करने वाले लोग हैं कि नहीं?
3: हाँ कुछ घर
1: कुछ लोग हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं?
3: आप मजदूरी करते हैं, कमाते हैं।
1: मजदूरी का काम मतलब कि बहुत ही गरीब बस्ती है ये?
3: हाँ बहुत गरीब,
1: गरीब लोगों की।
3: हाँ
1: तो यहाँ कुछ लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है?
3: हाँ मिला है।
1: आप ही हैं उसके पात्र? आपको मिला है?
3: हाँ हमको, पिताजी को मिला है।
1: पिताजी को मिला? तो जो आवास योजना का लाभ मिला था वो बनवा लिए थे कि?
3: बना है।
1: जब बना है उसी में रह रहे हैं ना?
3: हाँ।
1: और राशन कार्ड आप लोगों का बना हुआ है?
3: हाँ बना हुआ,
1: उसका लाभ लेते हैं ना?
3: हाँ।
1: आयुष्मान कार्ड बनता है?
3: बनवाए हैं, पापा बनवाए हैं।
1: अच्छा बनवा लिए हैं। और पिताजी की उम्र कितनी है?
3: 60 पार।
1: अच्छा मतलब कि पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं?
3: हाँ, हाँ।
1: कोई और लोग भी हैं घर में?
3: हाँ मम्मी पापा
1: भी।
3: हाँ मम्मी को भी मिलता है, पापा
1: जी। तो यानी कि योजना जो है सरकार के द्वारा जो संचालित है उसका लाभ मिल रहा है?
3: हाँ।
1: इसमें कोई दिक्कत नहीं है?
3: ना।
1: लेकिन समस्या है तो केवल नाली गली और पानी की, बाकी चीज तो ठीक है ना?
3: हाँ सब ठीक है
1: जी। जी धन्यवाद। श्रोताओं आप सुन रहे थे सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम अग्रेर के लोगों से की गई हमारी बातचीत। विषय था रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकर स्थित ग्राम अग्रेर में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं यदि आप भी अपने गांव मोहल्ला में हुए विकास

कार्यों के बारे में बातचीत करना चाहते हों या आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपने लिखा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन 821115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisasaram akashvanisasaram@gmail.com। श्रोताओं, समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
0: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। लोकमाधुरी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भोजपुरी एल्बम से लोकगीत। आरंभ में हम सुनवा रहे हैं भरत शर्मा ब्यास के स्वर में ये श्रृंगार गीत।

बदरी बहार के स्वर में आप सुन रहे थे यह लोकगीत, रचना थी अशोक शिवपुरी की। और अब लोक माधुरी कार्यक्रम के अंत में हम सुन रहे हैं सर्वानंद ठाकुर के स्वर में ये पारंपरिक लोकगीत।

और उसी के साथ लोकमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सासाराम में हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम रसधार। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी एल्बम से कुछ रचनाएं। आरंभ में सुनिए ये भक्ति रचना।

राजेश तिवारी रतन के गाए इस हनुमान भजन के बाद अब हम आपको सुना रहे हैं मोहन राठौर के स्वर में ये कांवर भजन।

0: और इसी के साथ रसदार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम कुछ ही पलों में रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। मैटिनी शो कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमारे साथ थे जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी। क्या शानदार दास्तान उनकी जिंदगी की और कितने अनमोल किस्से। सुशील जी से बातचीत को इस हफ्ते आगे बढ़ाते हैं। यह है दूसरा भाग, बातचीत कर रहा हूं मैं आपका दोस्त यूनुस खान। जब आप कमेंट्री करते रहे और बहुत तनाव भरे मैचेस थे, तो आपने कुछ जुमले गढ़े थे जो लेजेंडरी बन गए हैं, जो मिथक बन चुके हैं, ये किस तरह से आए थे उसकी बात करें।
2: देखिए, एक तो मुझे 1979 का एक सिलसिला याद है कि भारत को जीत के लिए 438 रन आखिरी दिन बनाने थे और भारत 360 रन तक पहुंच गया था एक विकेट पर, और वक्त काफ़ी था, रन बन सकते थे। सुनील गावस्कर ने 221 रन बनाए थे, बड़ी ज़बरदस्त पारी खेली थी
1: जी।
2: और उस समय मैं कमेंट्री कर रहा था, ओवल टेस्ट मैच की बात है, सभी को याद होगा। और उस समय हमने देखा कि कुछ बूढ़े किस्म के लोग वापस जा रहे थे मैदान से, तो मैंने फिर अंग्रेज़ी कमेंटेटर को कहा कि मैं आता हूँ दो मिनट ज़रा पूछ के कि ये लोग छोड़ क्यों रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, इट इज़ एट सच एन एक्साइटिंग स्टेज। तो उन्होंने कहा, भाई हमें दिल की बीमारी।

0: है। और हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि जब भी इस तरह का कोई रोमांच आए तो मैच छोड़ दीजिए, ये आपके दिल के लिए भारी पड़ सकता है।
1: अरे बाप रे,
0: तो मैंने ये सोचा कि ये जो बात यहाँ मौजूद है, भारत में तो बहुत ज़्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज़ में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमज़ोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है,
1: वाह,
0: क्योंकि जिन्हें दिल की बीमारी है शायद उनके डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे होंगे कि ये आंखों देखा हाल सुनना बंद कर दें, क्योंकि इस मैच का रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तो
1: क्या
0: इस तरह,
1: सुंदर बात,
0: तो उस
1: वाह।
0: समय जब ये कहा तो ये मुझे पता नहीं था कि ये कैसा रहा होगा, मैंने तो कह दिया। जब वापस आया उसी समय मेरी 3 घंटे बाद ही फ्लाइट थी बम्बई की, बम्बई आया तो लोगों ने गले लगा लिया मुझे कि
1: वाह,
0: बोले क्या कॉमेडी की आपने, तो धड़कनें बढ़ा दी और लोगों ने इतनी प्रशंसा की। और आज भी लोग याद रखते हैं, देखो 1979 की बात है, तेज़ रफ्तार ज़माना है,
1: जी
0: लोग कल की बात भूल जाते हैं। आज 46 साल पुरानी, 47 साल पुरानी बातें हैं, और आजकल तो आज हर मैच में कमेंटेटर लोग जिन्हें दिल की बीमारी है बोलने लगे हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: वो ना तो वो कंपन पैदा कर सकते हैं ना ही वैसा वातावरण पैदा कर सकते हैं, एक यंत्रवत एक कह देते हैं।
1: जी
0: लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने कोई लकीर छोड़ी है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, अच्छी बात है, उस लकीर के ही लिए वो प्रशंसा कर रहे हैं।
1: जी सुशील जी, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: अपने समय के साथी कमेंटेटर्स को याद कीजिए और उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाइए सर।
1: हाँ नहीं देखिए, पहली बार जब क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे ना, तो कई ऐसे कमेंटेटर होते थे जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं था।
0: हाँ।
1: अब आकाशवाणी पे ये समझ में नहीं आ रहा था शुरू में कि आवाज़ देखें, भाषा देखें, क्रिकेट का ज्ञान देखें। तो शुरू में कई लोग जिनको केवल भाषा और आवाज़ थी लेकिन क्रिकेट का ज्ञान नहीं था, तो ऐसे लोगों को भी चुना। तो एक मैच का मुझे याद है, वो 1969 मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं भी नया नया था और मेरे साथ वाले जो सज्जन थे वो भी नए थे। तो वो एक नक्शा लेकर आए थे।
0: हाँ हाँ।
1: कि वो देख रहे थे कि तीन स्लिप, एक गली, एक एक्स्ट्रा कवर ऐसा। तो अब उनको ये पता नहीं था कि अगला ओवर जो होगा वो दूसरी तरफ से होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो वो नक्शा तो उन्होंने बदला नहीं। तो लाला अमरनाथ हमारे एक्सपर्ट थे।
0: जी जी।
1: तो जब ओवर कंप्लीट हो गया और दूसरी तरफ से बॉलिंग होने लगी, तो उन्होंने कहा, लाला जी ये क्या हो रहा है, ये तो थर्ड मैन से बॉलिंग क्यों कर रहा है। तो लाला अमरनाथ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, ये इसको नक्शा वापस सीधा कर दिया उन्होंने, उल्टा कर दिया, अब बोलिए। तो ये कई इस तरह की घटनाएं भी होती थी।
0: जी जी।
1: लेकिन कोई बात नहीं, वो सीख के दिन थे, शुरुआती दिन थे। तो कई कमेंटेटर सीख रहे थे और आकाशवाणी ने भी समझा कि क्रिकेट का ज्ञान होना चाहिए, आवाज़ तो होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए, क्रिकेट का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी एक चीज़ में कमी हो तो बात अधूरी रह जाती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। उस ज़माने में जब आपने क्रिकेट कमेंट्री शुरू की, तो मैंने एक चीज़ हमेशा जानी है कि पैसे कम मिलते थे और अपनी जेब के खर्च डाल के आप यात्राओं पर जाते रहे, लेकिन वो जुनून कायम रखा।
1: बिल्कुल। पहली कमेंट्री मैंने 15 रुपये दिन में की थी रणजी ट्रॉफी की।
0: ओहो।
1: और जब 1979 में मैं इंग्लैंड गया तो 100 रुपये प्रतिदिन।
0: हाँ।
1: और पाकिस्तान गया तो शायद 100 रुपये प्रतिदिन। पाकिस्तान 1978 और 82 दोनों बार पाकिस्तान गया मैं, और वो यात्रा भी अभूतपूर्व रही। मतलब पाकिस्तान का तो एक मैं कई बार किस्सा बताता भी हूँ।
0: जी जी।
1: ये 1982 की बात है, और हमारे जो मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़ थे, जो उनका काफ़ी वहाँ पर रुतबा था, सब लोग जानते थे उनको वहाँ पाकिस्तान में। और अब हमारी टीम ने एक पार्टी दी थी पाकिस्तान में, और फतेह सिंह गायकवाड़ खड़े हुए बाहर सबको रिसीव कर रहे थे, मैं भी था और सुनील गावस्कर साहब भी थे। और अचानक आवाज़ उठी कि वो आ गई। सबने कहा, भाई कौन आ गई, मेरी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, छोटा यंग था बिल्कुल आपकी तरह। मैंने कहा, भाई कौन आ गई, कौन स्टार आ गई। तब देखा एक मिडिल एजेड वुमन वहाँ पर आई, और गायकवाड़ साहब ने परिचय कराया कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं, और दुनिया इनकी मुरीद है, भारत के कप्तान हैं, आप तो इनको जानते ही होंगे। तो उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो ज़हीर अब्बास और इमरान खान को जानती हूँ।
0: ओ, ओ, ओ,
1: तो गावस्कर साहब को पूछा कि भाई कोई बात नहीं, आप तो इन्हें जानते ही होंगे ना, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहां हैं। तो गावस्कर साहब तो कद में भले ही छोटे हैं लेकिन स्वाभिमान के मामले में बड़े हैं। उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूँ।
0: अरे बाप रे।
1: तो ये मैं कभी भूलता नहीं कि
0: मौके पे चौका,
1: विरोधी मौके पे चौका, आप सही कह रहे हैं। तो आप विदेशी भूमि पर जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो और वहाँ पर स्वाभिमान की बात, तो गावस्कर साहब के चरित्र में आज भी यही बात देखने को मिलती है कि वो अच्छे को अच्छा

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि जब कमेंट्री करते हुए बहुत तनाव भरे पल आते रहे और जब यूं लगा कि मैच जो है वो एक कच्चे धागे से लटका हुआ है, किसी भी तरफ जा सकता है, ऐसे समय में आपने कहा कि, और ये हमने देखा भी है, आप और पूरी टीम तटस्थ कमेंट्री करती रही, लेकिन अंदर से दिल को क्या महसूस होता रहता था और उसको कैसे बैलेंस करते थे आप?
1: नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि दिल तो चाहता है कि भारत जीते
0: जी,
1: और चूंकि आप निष्पक्ष रहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कहती है कि नहीं, और फिर पब्लिक जैसी आवाज आती है ना,
0: हाँ,
1: आप तो रेडियो के खुद ही आवाज है एक मशहूर, तो ये जानते हैं कि पब्लिक की आवाज के ऊपर से आपकी आवाज जानी चाहिए, आपकी आवाज खोनी नहीं चाहिए
0: जी,
1: तो पब्लिक की आवाज के हिसाब से ही आपकी आवाज उतार चढ़ाव होते हैं और पता लग जाता है अनुभव से कि पब्लिक आवाज कैसी आ रही है, सुनाई भी देता है। तो ये एक

बहुत संकोच से ये कहना पड़ रहा है और पूछना पड़ रहा है कि मैं आपसे एक कमेंट्री सुनना चाहता हूँ, इमेजिनरी कमेंट्री। देखिए, हमारे सुनने वालों में बहुत अलग अलग तरह के उम्र के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो मेरी उम्र के हैं, जिन्होंने पूरा रेडियो कमेंट्री का दौर देखा है और फिर टेलीविजन आते और फिर रेडियो कमेंट्री को थोड़ा कम होते देखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडियो कमेंट्री का सबसे सुनहरा दौर देखा है और ट्रांजिस्टर कान पे लगा के सुनते रहे हैं, जिसमें लोग पूछते थे भाई साहब स्कोर क्या है ना। और कुछ

0: और मैं ये पूरा जो आपने ये जो समा बांधा, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने इतना शानदार दौर याद दिला दिया।
1: बहुत धन्यवाद। और रेडियो के श्रोताओं से बात करके तो मैं हमेशा भावुक रहता हूँ, क्योंकि यहीं
0: जी
1: से मेरी शुरुआत हुई है, मेरी पहचान भी यहीं से स्थापित हुई, और आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया।
0: जी अभी तो और बातें करेंगे। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, रॉकी फिल्म का गाना सुनते हैं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम।

0: सुशील जी, कमेंट्री का पूरा एक दौर देखा आपने और बहुत अलग अलग तरह के कमेंटेटर्स को सुना, हिंदी के और अंग्रेजी के। आपके बहुत फेवरेट कमेंटेटर्स कौन से रहे हैं?
1: नहीं, देखिए, मैं जॉन अर्नोट को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो एक कवि भी थे, तो
0: जी
1: उनका क्रिकेटिंग नॉलेज उतना नहीं था, लेकिन उनकी भाषा अद्भुत रहती थी। तो एक ही बात मैंने उनसे सीखी कि कम शब्दों में ज्यादा व्यक्त करो, जो कहते हैं ना शब्दों की किफायत, जैसे अंग्रेजी में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो जब आप इस तरह की किफायत वापरते हैं तो असर ज्यादा पड़ता है, सही शब्द सही जगह, तो असरदार शब्द। तो ये बहुत महत्व की बात मैंने उनसे सीखी। और मैं कमेंट्री बॉक्स में लेकर आया था, 1979 में जब इंग्लैंड गया तो
0: जी
1: उनको अपने कमेंट्री बॉक्स में लेकर आए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा, हर शब्द का एक चित्र होता है।
0: वाह,
1: जैसे आपने कहा कि ही ड्राइव थ्रू द कवर तो 4 रन, तो इसका मतलब कि उसने हल्के से खेला है। और जब आप कहते हैं कि ड्राइव थ्रू दी कवर 4 रन, तो इसका मतलब जोर से खेला है। तो शब्द का एक चित्र होता है,
0: क्या प्यारी
1: तो
0: बात
1: ये
0: है।
1: शब्द का चित्र के रूप में जब आप खींचेंगे तब आपकी कमेंट्री ऐसा लगेगा सजीव चित्रण होगा। तो ये बात मैंने उनसे सीखी
0: जी
1: और अपनी कमेंट्री में मैं लगातार सीखता, आज भी सीखता हूँ, कई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये उसमें आप बेहतर होते हैं। और इंसान होने का सबूत क्या है, अच्छे इंसान होने का? यही है कि आप निरंतर सीखते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिज्ञासु रहें, तभी तो आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: ये अन्यथा उम्र आपको मार देगी। तो लेकिन उसको जीतना है तो यही करना है कि आप आगे बढ़ते रहें, बेहतर होते रहें, और जो आपको सुन रहे हैं उनको लगे कि भाई वो भी बेहतर अनुभव कर रहे हैं जब सुन रहे हैं आपको।
0: क्या प्यारी बात है। क्रिकेट कमेंट्री के अलावा जीवन में आप और क्या करते रहे हैं? आपका प्रोफेशन क्या रहा है?
1: नहीं, वैसे तो मैं इंजीनियर हूं और मैं एक बात जानता हूं, भारत जैसे देश में अगर आप व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो तो लोग आपकी कला को भी ठीक से नहीं आंकते हैं। सच्चाई है, देखिए लाख लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जीवन की सच्चाई

0: ये है कि आपको व्यावसायिक रूप से भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, और ये हर कलाकार को समझना चाहिए कि वो एक कलाकार ही नहीं है, एक परिवार का हिस्सा भी है, परिवार का एक व्यक्ति भी है, वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी प्रेमिका का प्रेमी भी है, ये तमाम चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, और वो जिम्मेदारियां भी उसकी है। अगर पिता ने उसके प्रति कोई सपना देखा है व्यावसायिक रूप से सफल होने का, तो वो भी एक आपकी जिम्मेदारी है कि वो सफल सिद्ध हो,
1: जी
0: और साथ में आपकी कला को तो आगे बढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्षेत्रों को आप छोड़ दें तो फिर जीवन असफल हो जाता है, लोग आपकी गणना या आपका अंकन ठीक से नहीं करते। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बहुतेरी भूमिका, तो मैं अब जैसे शोरूम है हमारा इंदौर में, 150 आदमी काम करते हैं,
1: जी जी
0: जहां एक 15 रुपये महीने के मकान में किराए से रहते थे, और आज 4 शोरूम्स हैं हमारे, कुल
1: जी
0: मिलाकर 150 आदमी काम करते हैं, यहां से वहां तक, और बेदाग, यानी कि बिल्कुल बेदाग जिंदगी, अभी तक किसी का चुकाना बाकी नहीं। तो ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ये आपके जीवन जीने के दृष्टिकोण को और जीवन की सफलताओं को नए पैमाने प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। यहां एक और दिलचस्प सवाल मेरे जहन में था कि आपने तमाम देशों की यात्राएं की क्रिकेट कमेंट्री करते हुए, सबसे यादगार और दिलचस्प यात्रा कौन सी थी?
0: नहीं, दो बातें मैं जरूर यहां कहना चाहता हूं। एक तो ऑस्ट्रेलिया
1: जी
0: मैं गया था, सबसे अच्छी जगह मुझे वही लगी ऑस्ट्रेलिया। 3 महीने का दौरा था 1977-78 में, और मैं भूलता नहीं कि वहां पर जो कीथ मिलर है वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में,
1: जी
0: उनके फोटो में एल्बम में बचपन में लगाया करता था। कीथ मिलर यानी क्रिकेट के ऐसे व्यक्ति जो अगर 10 ऑलराउंडर्स ऑल टाइम बेस्ट अगर गिने तो कीथ मिलर का नाम उसमें लेंगे। तो एक दिन मैं वहां ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा था, कई यंगस्टर्स भी जो थे ना, जवान लड़के लड़कियां आते थे, कि एक लड़का पता नहीं किस भाषा में बहुत जोर से मुंह चला रहा, बहुत तेजी से मुंह चला रहा, ये बातें बड़ी फैल रही थी, और 20-20 लोग हमारे कमेंट्री, 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे ऑस्ट्रेलिया के, कि अजीब, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी के अलावा कोई कमेंट्री होती नहीं थी उस समय।
1: जी
0: तो एक दिन मैं कमेंट्री का सेशन करके जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, देखा कीथ मिलर पीछे खड़े हैं, तो
1: अरे
0: मेरे
1: बाप
0: तो
1: रे।
0: होश उड़ गए, तो मतलब पसीना पसीना हो गया। मैं छोटा था, तो उम्र
1: जी
0: में
1: जी
0: 29 साल का था, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बॉय, आई हैव नॉट अंडरस्टूड ए सिंगल वर्ड ऑफ वॉट एवर यू सेड, बट वॉट एवर वेंट इन टू माई ईयर्स वॉज वेरी स्वीट।
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: ये
1: वाह
0: जो
1: वाह
0: मैं
1: वाह
0: समझता हूँ जिंदगी में एक बहुत बड़ा ये कमेंट था, कि भाई वो जो आदमी आपकी भाषा नहीं समझ रहा, वो आपको कह रहा है कि आप उनके कान में मिश्री जैसी आवाज आ रही। और एक और कमेंट जो मुश्ताक अली साहब ने, महान खिलाड़ी,
1: इंदौर के
0: 1936 इंदौर के, मुश्ताक अली साहब और मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे 1936 में, ऐसे व्यक्ति जो पहली बार इंग्लैंड में जिन्होंने शतक लगाया,
1: जी
0: पहले भारतीय। तो उन्होंने एक बार कही कि लता मंगेशकर ने गायकी में, ईश्वर ने भेजा उनको, मुझे बैट लेकर भेजा बल्लेबाजी करने के लिए, और सुशील दोषी तुमको भेजा है हिंदी की कमेंट्री करने के
1: वाह वाह
0: लिए।
1: वाह वाह
0: ये
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: बड़ा कमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा कमेंट जो मुझे कहा, आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर जिन्होंने पूछ मुझे पहले भगाया था ना,
1: जी जी
0: उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी आवाज एक ईमानदार आवाज है।
1: अद्भुत।
0: तो मैं ये समझा कि तरह तरह की आवाजें, मीठी आवाज, मोटी आवाज, बच्चन बैरिटोन, पतली आवाज, है ना, सुरीली आवाज, लेकिन ये ईमानदार आवाज, आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ा कमेंट मैंने अपनी जिंदगी में सुना नहीं। तो
1: वाह
0: ये जो बातें मैं कभी भूलता नहीं, तो ये तमाम चीजें। और एक किस्सा मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ,
1: जी
0: कि
1: जी
0: वो जो भाषा की बात कर रहा था, लालित्य की बात कर रहा था हिंदी भाषा की,
1: जी जी जी
0: फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर सुनील गावस्कर 86 रन पर नॉट आउट थे, और शाम का वक्त था, तो मैंने, मेरे हाथ में माइक्रोफोन था, मैंने कहा शाम ढल रही है और मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है।
1: आहा हा हा
0: तो
1: हा
0: वो
1: सुंदर।
0: इतना अच्छा लगा, अखबारों में भी छपा कि इतना बढ़िया वर्णन, एक तरफ डूबता हुआ सूरज, दूसरी तरफ भारत का सूरज जो अभी भी विद्यमान है चमक के साथ। तो ये कब हो सकता है, जब आप साहित्य पढ़ते हो।
1: जी जी जी
0: अगर आप साहित्य नहीं पढ़ते हो, रोमन लिपि में आप समझते हो हिंदी, तो ये बातें आप जिंदगी में कभी नहीं कर
1: और
0: सकते।
1: उस लेवल पर मैच को महसूस करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण
0: सबसे
1: बात है।
0: बड़ी बात जो आपने कही ना अभी, कि जो आप महसूस करो

0: तो महसूस कराओगे। ये
1: जी
0: जिंदगी में अगर आपने रखा है तो आप सफल कमेंटेटर या जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो उसमें कामयाब होंगे।
1: बिल्कुल। सुशील जी, कितना सुंदर वर्णन शाम का आपने किया, और मुझे इस पर एक गाना याद आया जो मैं जानता हूं कि आपका पसंदीदा है, सुहानी शाम ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे।

0: किसी की नहीं देखी, बिना हेलमेट के आप वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे पिचेस पर ढकी हुई नहीं है
1: बिल्कुल
0: और बाउंसर्स की कोई सीमा नहीं है, आपके शरीर पर आक्रमण कर रहा है आदमी, और एक नहीं चार चार एक साथ। वो ऐसे वक्त पर उन्होंने क्रिकेट खेला जब दुनिया में सबसे खूंखार बॉलर्स दुनिया में थे। आप
1: यस
0: वेस्ट इंडीज में देखे कि एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल, यू नो कॉलिन क्राफ्ट, या पाकिस्तान में देखो तो इमरान खान और वसीम अकरम, इंग्लैंड में देखे तो जॉन स्नो, है ना, तो ये तमाम, या ऑस्ट्रेलिया में देखो तो टॉम्पसन और लिली, इतने खूंखार बॉलर एक समय दुनिया में कभी भी नहीं रहे।
1: जी जी
0: उन
1: जी
0: सब बॉलर्स को अनढके विकेटों पर, पिचों पर, उन्होंने बिना हेलमेट के जिस तरह से खेला, दुनिया का को कोई दूसरा को नहीं खेल पाता। तो मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा कोई तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट को स्वाभिमान जिसने दिलाया, ये तो तेज गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बैटर जरा घबराते थे,
1: जी
0: वो स्वाभिमान उन्होंने दिलाया भारत को।
1: जी जी और विश्व क्रिकेट में कौन पसंदीदा रहे हैं?
0: नहीं, विश्व क्रिकेट में जो, एक तो ये है कि डॉन ब्रैडमैन के बड़ा तो कोई रहा ही नहीं, ऐसा जैसा इयान चैपल ने भी कहा कि उनके साथ किसी की भी तुलना करना यानी कि क्रिकेट का ही अपमान है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनको मैंने खेलते भी नहीं देखा, उनसे
1: जी
0: मुलाकात जरूर हुई
1: जी
0: लेकिन उन्हें खेलते भी नहीं देखा,
1: जी
0: लेकिन उनके रिकॉर्ड से बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अगर बैटर्स कहें तो सचिन तेंदुलकर
1: जी
0: बहुत बड़े बल्लेबाज, वो भी अपने आप में, और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन की गली में खेल को ले जाकर खेलना
1: वाह वाह
0: अगर
1: वाह
0: किसी व्यक्ति में था तो वो सचिन तेंदुलकर,
1: बिल्कुल
0: कि वो खेल की धारा को मोड़ देते थे।
1: जी। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता उस वक्त आप कहाँ थे और क्या
0: नहीं, उस
1: आप?
0: समय तो कमेंट्री हुई नहीं हिंदी में भी, क्योंकि उस समय क्या था कि किसी ने भी गंभीरता से लिया ही नहीं था कि जो वनडे क्रिकेट है ना, ये कोई महत्वपूर्ण क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी खुद ही ने टिकटें कोई अमेरिका की ले ली थी सेमीफाइनल की वक्त ही, उनको लगा कि जीत ही नहीं पाएंगे।
1: जी
0: तो ये तो हम लोग तो कमेंटेटर थे तो हिंदी की कमेंट्री नहीं हुई। उस समय क्या कहते थे भारत में कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है वो शास्त्रीय क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट जो है पायजामा क्रिकेट है।
1: जी जी
0: बाद में T20 क्रिकेट को चड्डी क्रिकेट कहना शुरू कर दिया, और
1: जी
0: T10 क्रिकेट जो आया उसके बाद तो हमने सोचना ही बंद कर दिया।
1: बिल्कुल कुल मिलाकर जो टेस्ट क्रिकेट है वो सही मायनों में क्रिकेट है।
0: रेड बॉल क्रिकेट जो होता है ना सही,
1: जी
0: क्योंकि गेंद स्विंग और सीम होती है और परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जो बॉलर और बैटर को बराबरी का मौका देती हैं, इसी कारण वो जो बड़े खिलाड़ी रहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट मानते हैं।
1: जी बिल्कुल सुशील जी, बहुत सारी किताबें आपकी हैं और उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो है आंखों दिखा हाल, जो आपकी एक तरह से बायोग्राफी है। उसके अलावा भी क्रिकेट पर बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, अखबारों में आपके कॉलम्स लगातार हम पढ़ते हैं, ये जो लिखने वाला मामला है इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
0: नहीं, ये मैं 1966 से ही लेखन भी करता हूँ।
1: जी
0: मेरा पहला लेख 1966 में छपा था, कमेंट्री तो मैं 1968 में मैंने पहली की, लेकिन 1966 में मेरा पहला लेख छप चुका था। तो लेखन के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति मेरी आस्था और लगाव लगातार बना रहा, और इसी कारण मेरी भाषा हमेशा ठीक ही रही हिंदी के हिसाब से। तो ये मैंने बहुत सारी 15 किताबें, जैसे आपने जिक्र किया अभी, कुछ 15 किताबें, और सबसे मेरी इच्छा थी कि एक किताब ऐसी भी लिखूं जो क्रिकेट कमेंट्री पर हो।
1: जी
0: तो
1: जी
0: क्रिकेट कमेंट्री एक कला एक विज्ञान नाम से पुस्तक एक मैंने लिखी, शायद दुनिया की पहली पुस्तक है जो कमेंट्री पर, कमेंट्री कला के हिसाब से
1: जी
0: लिखी हुई। तो वो किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है और वो किताब की 65,000 प्रतियां बिक चुकी हैं,
1: वाह
0: तो जो बहुत बड़ा, क्योंकि आज के जमाने में लोग पढ़ते कम,
1: जी
0: फिर भी 65,000 कॉपियां उसकी बिक चुकी हैं। तो एक ये जो मुझे लगता था कि जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मुझे कर देना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम किताबें भी हैं और कॉलम्स भी लगातार अभी भी आप लिख रहे हैं।
0: हाँ, करीब 5,000 से ज्यादा लेख और कॉलम्स, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे पूर्ण बनाती है।
1: जी
0: ये कॉलम लिखना, उसमें पैसा तो कोई इतना रहता है नहीं, पैसा तो रहता है मुफ्त में तो मैं लिखता नहीं,
1: जी
0: लेकिन ये भी है कि एक जो कला ईश्वर ने आपको दी है उसको बराबर पूरा करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि लोगों तक आपके विचार बांटना चाहिए, उससे पता चलता है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तुर्रम खान समझें
1: जी
0: और लोग आपको नहीं समझें तो क्या अर्थ है। तो
1: जी
0: ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की प्रतिक्रिया भी आप समझें।
1: जी जी आपका अपना एक डिसिप्लिन और आपकी अपनी एक फिटनेस

0: एनवायबल है, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, जीवन में देखिए उत्साह
0: जी,
1: और दूसरी बात, आप जब तक क्रिएटिव हैं, यानी कि आप रचनात्मकता जब तक आप में हैं, तब तक आप जवान हैं। रचनात्मकता जिस दिन गई और जिस दिन आपको लगा कि आप समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं, तब आप वेजिटेबल हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि रचनात्मकता आज भी मुझ में सीखने की वही इच्छा शक्ति, अच्छी चीज़ों के प्रति प्रशंसा का वही भाव, और सबसे बड़ी बात कि चुनौती को हर बार स्वीकार करने की इच्छा, ये आज भी बनी रहती है। और जब तक ये बनी है, तब तक मैं अपने आप को काफ़ी स्फूर्तिमान और काफ़ी जोश मुझ में रहता है, कुछ भी नई चीज़ें करता ही रहता हूँ। अभी भी मेरे मस्तिष्क में 2-3 किताबें लिखने का है। तो जो भी साथ में है, एक बहुत लंबी योजना नहीं बनाता हूँ, जो योजना बनाई उसे पूर्ण करो और कार्य रूप में बदलो।
0: यहाँ गाना सुनते हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।

0: आपने आज इस बातचीत में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि जंगली सपने भी सच होते हैं, वाइल्ड ड्रीम्स। इस बातचीत को दुनिया के कोने कोने में हिंदी भाषी लोग सुन रहे हैं, देश के कोने में किसी छोटे कस्बे में आंखों में सपने लिए कोई नौजवान सुन रहा हो, उससे भारत के महान क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बस ये कहता हूं कि अपने आप को एक तो कम मत आंको। देखिए, मेरी तरफ आप ध्यान दें, मेरी कहानी की तरफ ध्यान दो, तो बचपन में मुर्गा बनने की कहानी, मास्टर से डंडे खाने की,

0: कहानी और सप्लीमेंट्री लाकर पास होने की कहानी, एक मामूली आदमी भी अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बन सकता है और पद्मश्री की उपाधि तक भी पहुंच सकता है, तो आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हो भाई लोगों, आप लोग तो आगे बढ़ ही सकते हो और दिखा दो कि आप में दम है, क्योंकि हर व्यक्ति में संभावना अनंत रहती है, संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है।
1: जी, जिस पल पद्मश्री की घोषणा हुई आप कहाँ थे और इस खबर के बाद किस तरह की कैफियत आपकी और आपके परिवार की थी?
0: नहीं देखिए, 2016 में मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ और मैं तो दिल्ली में कमेंट्री कर रहा था।
1: अच्छा,
0: मुझे पता नहीं था कि पद्मश्री मिल सकता है, तो मेरे बेटे का फोन आया कि कुछ लोग आए और पूछताछ कर रहे हैं और पता नहीं कि क्यों पूछताछ कर रहे हैं, वो उनको लगा कि कोई छापा तो नहीं पड़ रहा तो वो घबराया तो मुझे फोन किया, तो मैंने कहा मुझे बात कराइए, तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली में था, मैं कमेंट्री कर रहा था।
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही कुछ पूछना है, तो भारत सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं उन्होंने।
1: जी,
0: और जब भोपाल आया, वहां से ट्रेन से आया
1: जी,
0: भोपाल उतरा मैं, तो भोपाल से फिर मुझे एक दिन पहले जब उतरा तो किसी का फोन आया दिल्ली से कि आपको पद्मश्री देने की घोषणा हुई और आपको स्वीकार है क्या। तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी अगर उपाधि और देश अगर इतना प्यार कर रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। तो ये हुआ, फिर इंदौर आ गया, फिर घर पे मैंने फोन से बताया माता पिता। मेरी माँ के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी महत्वाकांक्षा थी।
1: जी जी,
0: महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उनका मुझ पर बहुत प्रभाव।
1: जी,
0: पिताजी बहुत सीधे साधे, महत्वाकांक्षी नहीं थे, बच्चे का सपना पूरा करना बस, और माँ बहुत महत्वाकांक्षी, बच्चे को आगे बहुत नाम कमाना है, गरीबी में नहीं रहना है, ये उनको बड़ा था और उनका सपना भी मुझे पूरा करना था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी माँ तब जिंदा थी।
1: जी जी,
0: उनके जीते जी पद्मश्री मिल गया। तो उन्होंने एक बात कही कि जिस माँ के बेटे को पद्मश्री मिल गया हो, उसको अब जीवन में और क्या चाहिए।
1: वाह,
0: देखिए माँ होती है तो ऐसी बातें करते हैं तो कई बार आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, जीवन है, बहते रहने का काम है।
1: जी, आपको मिला पद्मश्री, हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का सम्मान माना जाना चाहिए।
0: नहीं बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि सम्मान जो था वो हिंदी को मिला है और मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा को जो पहले द्वयम दर्जे की बात मानते थे ना कमेंट्री के क्षेत्र में,
1: जी,
0: उसमें इतनी पहचान मिलना, तो हिंदी कमेंट्री के प्रति लोगों की आस्था और लोगों की श्रद्धा और लोगों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है, तो अच्छा लगा कि हिंदी के लिए कोई कार्य मैं कर पाया।
1: जी सुशील दोषी जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे ये लंबी बातचीत कर पाया। हमसे ये वादा कीजिए कि विविध भारती पर आप फिर आएंगे और हम फिर लंबी बात करेंगे।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। और आपसे बात करके मुझे तो आपसे शिकायत भी रही कि आपने कमेंट्री क्यों नहीं की, आपकी आवाज़ इतनी बढ़िया है, लेकिन अच्छा ही किया, मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कॉम्पिटिशन मुझे ही मिले।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

गिल्ली डंडा ये अपने इज्जत

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से लंबी बातचीत अभी आपने सुनी, आज दूसरा भाग था। बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर जरूर लिखें, मैटिनी शो की पोस्ट पर, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं, या फिर vbnsmumbai@gmail.com पर अपनी राय दीजिएगा।

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को होने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09

0: 9 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेबेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए यादों की महफिल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनिए यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस गाने से शुरुआत करते हैं। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, शोले।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अन

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सोनिए
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे दिन के 12:11:35 और अगर आपके शहर में बारिश है तो ये गाना आपके लिए

0: झूठ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में था। एमजी हशमत के बोल थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे।

यादों की महफिल में अब गूंज रही है किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है वारंट। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहतनामा
0: किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम साहिब बहादुर, राजेंद्र कृष्ण की बोल मदन मोहन की तर्ज।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

आ रहे हैं विविध भारती पर बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे भूपिंदर सिंह की आवाज, फिल्म का नाम मौसम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। फिल्म का नाम जूली, आनंद बख्शी, राजेश रोशन। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आ रही है किशोर कुमार की ही आवाज में, अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन की तर्ज है। फिल्म का नाम है देश पर।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की इबारत विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट हो चुकी है और आप सभी ने पढ़ी ही होगी। जिन श्रोताओं ने फेसबुक पोस्ट नहीं देखी है उनके लिए इबारत यहां पेश है। इतने दिन कहां थे, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, ये कैसी बातें कर रहे हो, घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अरे खुलकर कहो ना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, ओफो कहना क्या चाहते हो, मुझको अभी चुप रहने दो, पहेलियां बुझाना छोड़ो ना, हम क्यों शिकवा करें झूठा, अरे किससे शिकवा हुआ है, क्या बात है, इंसान मोहब्बत कर बैठा पर ये तो अच्छी बात है ना, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, फिर वही, अरे खुलकर कहो ना, कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दें, देखो ये ठीक बात नहीं है, इस तरह उलझी बातें कौन करता है, बातें हैं बातों का क्या, हाय इतना दुख मेरी तो आंख भर आई, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, अब तुम हद कर रहे हो, अपनी तो यह आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, चुप रहो, अब ऐसी बहकी बहकी बातें की तो बातें बंद हो जाएंगी हमारी, समझे भाई, यही है आज की इबारत। और इस इबारत में बहुत सारे गाने बहुत सारे शब्द समाये हुए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने बाकायदा गानों को एक अच्छी तरीके से पहचान भी लिया है, लेकिन एक जो नहले पे दहला आया है उसे कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक इबारत लिखी है, क्या बात है बड़े छाए हुए आजकल, क्यों आपको पसंद नहीं है, हमें क्यों पसंद नहीं होगा, आखिर आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, वही तो हमारे लिए आप श्रोतागण ही सब कुछ हो, बस इसी बात ने तो हमारा दिल छीना है। विविध भारती से एक संवाद, एक कमाल है भाई कमाल है, यानी नहले पे दहला मार दिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी श्रोताओं की बातें, एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि यादों की महफिल में बहुत ही बढ़िया गाने आपने सुनवाए, इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा कर देते हैं आपका। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता हैं, जरा देखें कि हमारे और श्रोता क्या कह रहे हैं, कुछ श्रोता हैं जिन्होंने बाकायदा पूरे गानों की लिस्ट प्रदान कर दी है और यहाँ भेजा है। इसके अलावा कई ऐसे श्रोता हैं जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि इतने दिन तो हम कहीं नहीं थे, विविध भारती के संग थे और ऐसे ही विविध भारती हमारे साथ चलती रही, गुनगुनाते रहे, दिल पर राज करते रहे, सुकून देते रहे। एक और श्रोता कहते हैं शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, हम विविध भारती सुनते रहे तो दिन खुशनुमा रहे। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अप्रत्याशित थीम है और बहुत ही मजेदार गाने सुनाई देने वाले हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि यादों की महफिल में गाने अच्छे सुनाई दिए थे। एक श्रोता ऐसे हैं जो बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप बालटाल में हैं और वहां से आगे रवाना हो रहे हैं, शुभकामनाएं आपको हम सबकी तरफ से। और वहां भी आप अगर विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। चलिए शुरू करते हैं।

आज के कार्यक्रम का सिलसिला इस गाने के साथ। और आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या आम बोलचाल की भाषा में आप भी गानों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं।

योगेश का लिखा ये गाना मुकेश की आवाज सलील चौधरी की तर्ज आनंद फिल्म, और एक श्रोता ने यह कहा है कि ये गाना पूरी तरह से राजेश खन्ना के साथ जुड़ा हुआ। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज जो पहला गाना आपने बजाया सुरीला सफर कार्यक्रम में वो मेरे दिल के बहुत करीब है, पतिदेव इस गाने को बहुत अच्छे से गाते थे, पहला गाना यही था जो उन्होंने मुझे गाकर सुनाया था। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि योगेश जी क्या बात है, बेहतरीन आगाज इस कार्यक्रम का हुआ है और हम तो अपनी बातचीत में अक्सर ही फिल्मी गीतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा

कहते हैं कि हम अभी से घोषित कर देते हैं कि आज का जो सबसे प्यारा गीत है वो यही है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज जो है प्रश्न पत्र का स्वरूप कुछ बदला हुआ लग रहा है, लेकिन ये बदलाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें शामिल करते हैं। देखिए, कई श्रोता ये कहते हैं कि हमारे कमेंट्स शामिल नहीं होते, इतनी लंबी धारा कमेंट की है कि मैं एकदम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे गानों के बोल हमारे कई श्रोताओं ने लिखे हैं। अब सभी श्रोताओं के लिखे गाने के बोल बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार का शुक्रिया। इतना सारा टाइप करके आपने भेजा, अपने गानों को बिल्कुल ठीक पहचाना है। और एक श्रोता ये कह रहे हैं कि जैसे ही पेज खोलकर सुबह देखा, उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, इबारत पढ़कर चाय और नाश्ते का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुझे याद आया कि कैसे किशोर कुमार की याद के दिन आपने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती बड़े काम की चीज है, कहीं दूर से गम आ जाए, रेडियो से मेरा मन बहल जाए, या रेडियो बजाओ दुनिया वालों या मुझे अभी चुप रहने दो। क्या बात है, इन्होंने अपनी तरीके से इबारत लिख दी है। अब जो गाना रहा है वो आप सभी के दिल के बहुत ज्यादा करीब गाना है, और ये जो फिल्म है ये हम सभी को बहुत ही अपनी सी लगती है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री, एक दूजे के लिए। ये फिल्म आपने किस साल में, कहां, किसके साथ देखी थी, ये यादें हमारे साथ जरूर बांटिए। और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? क्या आपके शहर में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं, या अभी तक आप गर्मी से जूझ रही हैं? शनिवार की दोपहर 1:12, क्या हाल आपके और आपके शहर के मौसम के?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि एक दूजे के लिए जब रिलीज हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, थिएटर में देखी होगी पर याद नहीं है, लेकिन बाद में टेलीविजन पर देखा। जैसे जैसे बड़े हुए इस फिल्म के गानों का जादू सिर चढ़कर बोला, एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ से परिचित हुए और 16 बरस की बाली उम्र से खुद को कनेक्ट किया। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ये गाना दिल के बहुत करीब है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि मिर्ज़ापुर शहर में जब से सावन का महीना लगा है दिन रात झमाझम बारिश हो रही है, इस समय थोड़े बादल और थोड़ी सी धूप है, खुशनुमा मौसम है हमारे शहर का। और इसके अलावा फिलीपींस के एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 3 दिन से बारिश हो रही है और रेड अलर्ट का सिग्नल आ चुका है। एक और श्रोता ने क्या सुंदर जुमला गाने में सुठाया है, दुनिया में प्यार की एक है बोली, सलाम आनंद बख्शी साहब, क्या बढ़िया लाइन लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता लखनऊ से लिख रही है कि सूर्य देव तीक्ष्ण ताप बरसा रहे हैं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके शहर में भीषण वृष्टि हो और तीक्ष्ण ताप की जगह शीतलता आप पर हावी हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो पानी पानी पानी हो गया है, भाई ये जो पानी पानी पानी है इससे मुझे ऐसा लगा जैसे आप गा रहे हैं गाना आज ब्लू है पानी पानी पानी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही है कि ये गीत मन की गहराई में बसा हुआ है, प्रेम के कितने रंग हैं और सादगी भरे बोल इस गाने का आभूषण है। एक श्रोता अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी से और गाड़ी में सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, उनके परिवार के बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर। बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई ये जो लिफ्ट वाला गाना है मेरे जीवन साथी प्यार किए जाए ये बड़ा ही अच्छा लगा था, 1981 में कॉलेज से भागकर दोस्तों के संग पहला शो मैटिनी शो देखा था। अब ये जो कॉलेज से भागकर फिल्म देखने की बात है ना, बस मुझे लगता है कि इसी बात की डोर पकड़ के आगे चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज से भागकर पिक्चर देखी थी, कॉलेज से भागकर कौन सी फिल्म देखी थी और क्या किसी को पता चल गया था। और हाँ, अब रेशमा की आवाज गूंज रही है, फिल्म का नाम हीरो, सुभाष घई की बेमिसाल फिल्म जिसमें आए थे जैकी दादा। ये फिल्म कहां, किस शहर में, कब, किसके साथ, चोरी से या शाम से देखी थी बताइएगा।

एक श्रोता है जिन्होंने बहुत ही मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि भाई फिल्म हीरो हम लोगों ने कॉलेज से गोल मारकर देखी थी, अब साथ में कौन था ये बात प्लीज मत पूछिए वरना बहुत मार पड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये मत बताइए कि साथ में कौन था, लेकिन कॉलेज से भागकर देखी है ये बड़ी मजेदार बात है। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की यादें देखी साझा की हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि दोस्तों के साथ खुदा गवाह देखने गई थी कॉलेज से भागकर, बहुत मजा आया था और हम पकड़े नहीं गए थे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि मिथुन दा की फिल्में तो नहीं देखी लेकिन कैसेट बहुत बजाया करते थे, ये एक बात इन्होंने लिखी है। उसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लंबी जदाई का की बड़ी तारीफ की है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्या गजब करें, सुरीले सफर कार्यक्रम में आपके सारे राज खुलवा देंगे, यहां मेरे बेटी बेटे दामाद बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ कि आप नाम नहीं लेते, वरना ये जो कॉलेज बंक करके फिल्में देखने की लिस्ट तो लंबी है। अच्छा हुआ कि इस कार्यक्रम में नाम नहीं आता, वरना सबको पता चल जाता कि हमने क्या किया था अपने जमाने में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि शहर में थोड़ी सी बारिश भी बहुत अधिक हो जाती है, हम किसानों से पूछो अभी तक धरती में पानी ठीक से अंदर पहुंचा नहीं है और हम मजबूर हैं भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए। आप शहर वाले थोड़ी सी बारिश हुई तो हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश गिरी, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि जो खेती है वो

0: अच्छी तरीके से हो सके। एक और श्रोता लिखती है कि कभी कभी किसी गीत को हम केवल सुनते नहीं बल्कि वो हमारे भीतर घटित होता है। इस गीत को सुनकर लगता है कि हमारे भीतर एक अंतहीन बयाबान पसरा हुआ है। रेशमा की आवाज सबसे उदात्त पलों में ले जाकर छोड़ देती है। एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि मैंने मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये राज उजागर कर दिया है कि कॉलेज से भागकर उन्होंने रफू चक्कर देखी थी सहेलियों के साथ कॉलेज बंक करके। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कॉलेज से भागकर अगर फिल्म देखते तो कहीं फिल्म देखने के काबिल न रहते उस जमाने में, क्योंकि पापा आर्मी में थे और आर्मी थिएटर में 365 फिल्में जरूर देखी सिकंदराबाद में। इसके अलावा एक और श्रोता जलंधर से हैं, वो कहते हैं कि जलंधर के लाल रतन सिनेमा हॉल में हमने फिल्म हीरो देखी थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई बारिश तो हुई है और अभी और भी होगी, कहीं बाढ़ कहीं सूखे के साथ, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका असर कहीं गर्मी और कहीं वर्षा ऋतु का प्यार। एक और श्रोता है जिन्हें जुबली टॉकीज याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि एक दूजे के लिए उन्होंने 1982 में जुबली टॉकीज में देखी थी। किस शहर का की बात है ये आप अंदाजा लगा सकते होंगे, मैं तो समझ गया हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट लिया कि हमारे शहर में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में मुंह फुलाए फूफा घूमते हैं, नजर तो सबको आते हैं मगर काम के नहीं होते। भाई बहुत ही प्यारा कमेंट है। और अब एक ऐसे गाने की तरफ ले जा रहे हैं जो दिल के गुबार को उजागर करता है, जिसमें उदासी लिपटी हुई है। एक बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गाना है ये।
1: दीवानों से ये मत पूछो।
0: क्या आप बता सकते हैं इस गाने के गीतकार कौन हैं? इस फिल्म में कई गीतकारों ने गाने लिखे थे, पर ये गाना किसका?

0: हो।
1: बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं। कमर जलालाबादी ने ये गाना लिखा था, कुछ श्रोताओं ने गुलचन बावरा का नाम भी लिखा है, पर ज्यादातर श्रोताओं ने कमर जलालाबादी का नाम लिखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि जब आपने ये ऐलान किया था कि गीतमाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुरीला सफर कार्यक्रम जब हमने सुना तो तब से बड़ा आनंद आ रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरी उम्र 38 बरस है पर मैंने सिर्फ दो ही फिल्में सिनेमाघर में देखी हैं, एक बजरंगी भाईजान और दूसरी सुई धागा। ओ हो, सिर्फ दो ही फिल्में। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलशन बावरा का नाम लिखा है जो कि गलत जवाब है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब ये दौर कभी नहीं आएगा, पुराना माहौल कुछ और था जो कभी नहीं दोहराया जाएगा। जिन्होंने ये समय दिखा है उनसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। कमर जलालाबादी की बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी। एक श्रोता है जिन्होंने कहा 11वीं कक्षा में कॉलेज से बंक मारकर सहेलियों के साथ कर्ज आंखियों के झरोखों से हम किसी से कम नहीं और ऐसी कितनी ही फिल्में टोपी वाला थिएटर में देखी हैं, गोरेगांव के टोपी वाला थिएटर में। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा कि दीवानों से मत पूछो गाने में एक टीस है, मुकेश की दर्द भरी आवाज रूह तक उतर जाती है। और फिर और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता ये कह रहे हैं कि विविध भारती पर सावन से जुड़े जितने कार्यक्रम हुए हैं उतनी बारिश हमारे यहाँ हो जाती तो मजा आ जाता। इसके अलावा एक और श्रोता है कहते हैं कि भाई बड़ी ही अजीब बात हुई, कल रात आप मेरे सपने में आए, मैं आपको बीमे की किस्त के रुपए दे रहा हूं। भाई ये तो बहुत ही अजीब सपना है आपका। और इसके अलावा एक और श्रोता है कि जिस तरह से आप कमेंट पढ़ते हैं आपका फनी अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कश्मीर में कहते कि मेरे आंखों के आगे कश्मीर, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आंखों के आगे कश्मीर का नज़ारा है और मैं अपने सफ़र पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूं। ये कितनी प्यारी बात है कि वो अपने सफ़र में भी विविध भारती को लगातार सुनते चले जा रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, आज कार्यक्रम छूटता हुआ लग रहा था पर हमने छोड़ा नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लास्ट पीरियड कई बार बंक किया, प्रिंसिपल से डांट खाई और एक बार फिल्म देखी ठिकाना और पापा से भी डांट खाई। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि भागकर तो नहीं पर दोस्तों के साथ एक बार गई थी, मम्मी को फिल्मों का बहुत शौक है तो मम्मी और पड़ोस की चाची और बहनों और उनकी बेटियों, मतलब उन्होंने पूरी टोली का लिखा है कि इन सबके साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टी के बाद मैं और मेरे दोस्त अपनी साइकिलें कॉलेज में ही छोड़कर पास के सिनेमा हॉल में नूरी फिल्म देखने चले गए थे, बाद में प्रिंसिपल ने हमें बहुत डांटा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ट्रेन से सफर करके कॉलेज जाते थे, एक दिन ट्रेन काफी लेट पहुंची, बारिश भी बहुत थी, तब चिच्चोर फिल्म का बोर्ड एक जगह देखा था, मैं और मेरी सहेली फिल्म देखने चले गए लेकिन अंदर जाकर देखा कि अपने पराए फिल्म लगी थी, हमने जो है वो पुराना पोस्टर देख लिया था। तो ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की हैं। और अब चूंकि माहौल उस तरह के गानों का है तो एक और गाना आ रहा है और हेमंत कुमार की ये आवाज पूरी दिल में उतर जाएगी। हेमंत कुमार की आवाज के बारे में अपनी राय अपनी बात कहिए।

हेमंत कुमार की आवाज में अनुपमा फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज बिल्कुल अलग है, वो अच्छे गायक ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि कभी ये गाना शायद ही कभी मुझे भावनाओं से आंसुओं तक लाने में नाकाम रहता होगा, जब भी सुनते हैं आंखें भर आती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इस गाने में धर्मेंद्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि हम स्कूल से भी सिनेमा घर ले जाए गए थे, बच्चों की फिल्म थी तो स्कूल ने हमें फिल्म दिखाने का फैसला किया था। इसके अलावा एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप कमेंट पढ़ने में सेंचुरी मार रहे हो भैया, शुक्रिया। एक और श्रोता है अनुपमा फिल्म का ये जो भावुक कर देने वाला गाना है, ये एक बात, और मेरे पिताजी का पसंदीदा गाना था, ये एक श्रोता की कमेंट है हेमंत की। हेमंत की आवाज में जैसे विषाद का स्वर घुला है, ये भी एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि कॉलेज से भागकर फिल्में देखना, ये तो मैं उस जमाने में सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुझे खुद बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाकर खर्चा निकालना होता था, इसलिए मैं अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं करता था। बहुत ही सुंदर प्यारी बात आपने कही है भाई। आज यानी इस शनिवार 8 अगस्त के दिन हम बातें कर रहे हैं और पूरा एक हफ्ता 15 अगस्त को बचा है, तो चलिए बचपन की यादों की तरफ जाते हैं। स्कूल के दिनों में 15 अगस्त की तैयारियां आप किस तरह से करते थे ये ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग होंगे जो नाटक तैयार करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कविताएं और गाने तैयार करते होंगे। एक ज़माना था स्कूलों में 15 अगस्त को जिस तरह से मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का बचपन का जो उत्साह है वो बहुत

बहुत ही कमाल का रहा करता था। तो हम चाहते हैं कि आप वो यादें हमारे साथ बांटें। ठीक है, एक हफ्ता बचाए 15 अगस्त के लिए और हम ये यादें बांट रहे हैं। तब तक चलते हैं त्रिशूल फिल्म के एक ऐसे गाने की तरफ जो बहस करता है कि मोहब्बत काम की चीज है या नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपका मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं है, या आप ये कहते हैं कि ये बेकार बेदाम की चीज है, या आप ये कहते हैं

अगस्त के लिए और हम ये यादें बांट रहे हैं। तब तक चलते हैं त्रिशूल फिल्म के एक ऐसे गाने की तरफ जो बहस करता है कि मोहब्बत काम की चीज है या नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपका मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं है, या आप ये कहते हैं कि ये बेकार बेदाम की चीज है, या आप ये कहते हैं

0: अमिताभ बच्चन के पक्ष में हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज नहीं मिलती तब तक वो बड़ी अनमोल होती, मिल जाने पर वो बेमोल हो जाती है। बचपन के 15 अगस्त की तैयारियां क्या खूब हुआ करती थी, कई दिनों पहले से ही मन में तिरंगा लहराने लगता था। स्कूल की सफाई, रंग बिरंगे कागजों से सजावट, प्रभात फेरी की तैयारी और हाथ में थामे छोटे से झंडे का गर्व, बिल्कुल अलग तरह का उत्साह होता था। एक और श्रोता, बचपन में 15 अगस्त की बड़ी भोर को अगल बगल के घरों से फूल तोड़कर जमा करके स्कूल ले जाते थे ताकि तिरंगे में बांधे जा सके। राष्ट्रगान के पश्चात मैं वीर रस गाने में मूल गायन करता था, हेडमास्टर से शाबाशी मिलती थी। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो सवाल आपने पूछा है, बहुत उत्साह से तैयारी करते थे, आज भी याद है। अपना स्कूल ड्रेस शूज सभी को धोकर तैयार करके हैंगर पर टांग कर रख देते थे, कब सुबह हो और जल्दी से तैयार होकर जाएं। और बूंदी के जो लड्डू मिलते थे, यूं लगता था कि खजाना मिल गया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होती थी और हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक और श्रोता कह रही हैं कि सुबह से इस गाने को याद कर रही थी पर यह याद नहीं आ रहा था। एक और श्रोता का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नृत्य की प्रैक्टिस किया करते थे और मोतीचूर के लड्डू आज भी उन्हें याद आते हैं। इसके अलावा साहिद लुधियानवी के बोलों की तारीफ हमारे कई श्रोताओं ने कही है और इस गाने में एक ऐसी तपिश है जो दिल को पिघला देती है। एक और श्रोता शिकायत करती है कि भाई हर रोज हमारे काम करने का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, लेकिन जिस दिन आप आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में हमारा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। भाई माफी चाहते हैं लेकिन सुरीला सफर में आना छोड़ नहीं सकते हम, आप अपना टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ कर रखिएगा और हम आते रहेंगे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि हेमंत कुमार की आवाज़ गंभीरता और मिठास लिए हुए हैं और 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में तो बस श्रोताओं के कमेंट लगातार चले आ रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह की बात। एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह का कमेंट लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश और ठंडी ठंडी सुबह होती थी तो 15 अगस्त के दिन नहाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए ये क्या हुआ,
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ।
0: क्या आप आम जिंदगी में इस गाने का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से, कब, जरा हमें बताइए।

एक श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत ईश्वर का खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, बस नीरसता रहेगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत एक सुंदर एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोहब्बत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी तो माँ ही प्रिंसिपल थी, इसलिए 15 अगस्त से काफ़ी पहले गतिविधियाँ शुरू हो जाती थी, नाट्य गीत नृत्य कहानी सभी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के बारे में इस गाने में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपको आना था और हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था, बच्चे आ गए और हम थोड़ा बिजी हो गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम

एक श्रोता कहते हैं कि मेरी लिस्ट का ये सातवां गाना भी बच गया है, यानी आज की इबारत में से उन्होंने बहुत सारा अंदाजा लगा रखा था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत बार जब सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, तो हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब कोई चीज गुम जाती है तो मैं अक्सर गाता हूं ये क्या हुआ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस धरती के अनमोल रत्न से विभूषित किशोर कुमार, भाई किशोर कुमार की तारीफ करें। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ये क्या हुआ।

0: आंकड़ा बज रहा है, बादल छाए हैं, बस बारिश होने वाली है। एक और श्रोता एनसीसी में थी और वो कह रही हैं कि जो खाने का पैकेट मिलता था वो बहुत ही शानदार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, ये क्या हुआ जब तब हमारी जबान से ये निकल जाता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताएं 15 अगस्त की यादें, वो समूह गान, सब कुछ याद आ गया है। और एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे स्कूल में परेड होती थी और हजरतगंज तक पैदल ही हम सब परेड में भाग लेते थे। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत यादें अपनी बांटी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे नींद खुल जाती थी, ये कल बूंदी वाले लड्डू मिलेंगे। भाई हाईलाइट है ये, बूंदी वाले लड्डू जो हैं ये सबके लिए एकदम कॉमन बात है। कितनी सारी यादें श्रोताओं ने साझा की हैं। और अब देखिए क्या प्यारा गाना साहिर लुधियानवी का।
1: खुद पे
0: क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहृदयता, संवेदना कम होती जा रही है?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, ये गाना जमाने की हकीकत को दर्शाता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर संवेदना कम होती चली जा रही है तो उसकी एक वजह मोबाइल फोन है। और इसका एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भाई सचमुच आज संवेदनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहानुभूति होती तो है पर आज के लोग उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप में इतने गुम रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि आज का वक्त ऐसा है कि किसी को किसी के पास वक्त नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संवेदना

योजनाओं में 100% की कमी आई है। तो बहुत सारे श्रोता ये मानते हैं कि आज संवेदनाओं में लगातार कमी आती चली गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने 15 अगस्त की सुहानी याद के बारे में अपनी बात ये लिखी है कि मैं कक्षा छठी में थी और मुझे भाषण देने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं तो रो पड़ी थी। भाई देखिए, ये भी एक याद जो है वो उभर कर सामने आ गई। एक बहुत ही जज्बाती गाना अब आपके लिए, आपको बताना है कि हमने ये किस फिल्म से लिया है।

लता मंगेशकर की आवाज, बहू बेगम फिल्म का ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज किसी की खुशी या परेशानी में रील बनाना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज लगातार जज्बात की कमी होती चली जा रही है। आखिरी गाना ये रहा। मदन मोहन और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये बताइए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के बापू सभागार में आयोजित मानव तस्करी विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मानव तस्करी को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है।

0: उन्होंने कहा कि गुमशुदा बच्चों की तलाश और मानव तस्करी रोकने पर सरकार का पूरा ध्यान है। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए अमानुल्लाह, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव रंजन, गृह विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाला मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन की एक खेप ऑस्ट्रेलिया निर्यात की गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% अधिक लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क होगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद के अनुसार व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक लेनदेन के लिए किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान की कल से शुरुआत हो रही है। वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान यह अभियान शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय ध्वज के साथ नागरिकों का अटूट और भावनात्मक रिश्ता स्थापित करना। तिरंगा केवल सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों तक सीमित न रहे, बल्कि हर भारतीय के घर तक पहुंचे और उसके मन में देश के प्रति गर्व और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करे। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जो 17 अगस्त तक चलेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस उपलब्धि से यह जानकारी मिली है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। पुणे में 12 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरण ने बताया कि इस चैंपियनशिप के लिए बिहार की महिला हॉकी टीम का चयन राजगीर खेल अकादमी में हुए चयन ट्रायल के आधार पर किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान पटना, अरवल, गया, जहानाबाद, वैशाली, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड RRB सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ के कुल 545 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.pnb.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर

0: प्रशिक्षणकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधि

0: उन्हें वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
3: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और

0: शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नख में। SH बिहारी की वो लोपी नहीं है।

0: खुद से सुनी है, नहीं उदास बस ये।
1: गुलजार के बोल हेमंत कुमार की तर्ज, उन्हीं की आवाज, सन्नाटा फिल्म का ये गाना था। इससे पहले सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज थी, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर की तर्ज थी। एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज

0: फिल्म का नाम था दुल्हन एक रात की। ये गाना अभी आपने सुना और ये आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश थी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
2: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें।

0: में शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है मिस्टर नटवरलाल फिल्म के गाने से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें और फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, पलोमा और डॉक्टर ईशानी। और ये चिट्ठी लखी श्रीवास्तव, दिशा, दिव्यांश और रूही की है, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा ये खत है चेतन शामतकर और ज्योति शामतकर और पुरुषोत्तम शामतकर का, उल्हासनगर से। और इसी गाने की फरमाइश करने वाले ये श्रोता हैं गुजरात भावनगर से राहुल ओझा, दीपल और ये नाम कुछ प्राप्तक ओझा जैसा कुछ नाम लिखा हुआ है। और ये कर्नाटक से चिट्ठी है चिन्ना तिरुपति से श्यामला, प्रकाश, अश्विनी, रमेश, आनंद और मनवित की। आप सभी सुनिए ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत आनंद बख्शी, संगीत राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत जमाने को दिखाना है फिल्म से है और इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने गाया है। आपको बता दें कि मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत आरडी बर्मन ने कंपोज किया और चिट्ठी लिखी घड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे संदीप अमूल्य और वैशाली बाठे ने। इसी गाने के लिए राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती जासमीन और प्रयागराज का खत है और ये चिट्ठी है रवि भाई सिसोदिया मुन्ना भाई सिसोदिया गीताबा सिसोदिया धर्मराज करणराज और पूरे सिसोदिया परिवार की केदारनाथ सोसाइटी से। वामन मगरे मराठवाड़ा नांदेड़ से इन्होंने चिट्ठी लिखी है और वारंगा फाटा जिला हिंगोली से कुंडलीक मोरे पांडुरंग मोरे अश्विनी मोरे और वैष्णवी मोरे ने चिट्ठी लिखी है और दिलचस्प ये है कि केदारनाथ सोसाइटी वाले हमारे श्रोताओं ने अपना नाम नहीं लिखा वो नाम अपने शहर का नाम लिखना भूल गए। आपके लिए ये गाना

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब जो गाना आ रहा है उसके लिए आप सभी के खत मिले हैं। अल्लिया नगर केंड गांव से भाऊ साहेब नवथर अक्षय चंदन जय कुमार चंदन रुचिता चंदन और इनका परिवार। ये चिट्ठी है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार श्याम कुमार प्रमिला चीनू आसमा दीपक अनुश्री और पूरे श्याम कुंवर परिवार की और बहुत ही रंग बिरंगी चिट्ठी राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे की जूना तारफेल अकोला महाराष्ट्र से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा और ये पूरा परिवार हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गाने को सुनना चाहता है। उदयपुर से फरमाइश आई है अशरफ खान जब्बार मोहम्मद तजीब खान मंजू और निम्मी की। आप सभी की फरमाइश पर सौतन फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें गीत सावन कुमार संगीत उषा खन्ना।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और मनचाही गीत कार्यक्रम में देश भर से हमारे श्रोता लिखते हैं चिट्ठियां और इंतजार करते हैं अपनी

चिट्ठियां शामिल होने का और अपने गानों का। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता। ग्राम खकल तहसील कौंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंश राज गुर्जर और इनका पूरा परिवार, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं। और गणेश पेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया। और ये श्रोता हैं सिंधी कैंप की खोली अकोला महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा संतानी, नैन्सी संतानी और सुमित संतानी। ये सभी सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, फिल्म है मशाल।

अब मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बहू बेगम फिल्म का गीत सहर लुधियानवी के बोल रोशन की तर्ज और आप सभी की फरमाइशें चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया वरुण जाउलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे निखिल साखरकर रोहित सुनीता अरविंद साखरकर और पूरा परिवार मालेगांव जिला वाशी से और कबीर रेडियो श्रोत्रा संग बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तमूरिया राधिका प्रभा देवी अजय देव देव शंकर तुषार देव तमूरिया और इनका पूरा परिवार। ये गाना आप सभी की फरमाइश पर, फिल्म का नाम है बहू बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधु राय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। तो सुनिए नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग।
1: केशव कहाँ चला गया? केशव, केशव, तीसरी घंटी हो गई और केशव से कहूंगी अनाउंस करे। हाँ है ये लेखक की तुम केशव ठाकर अभी आया पाटिल जी, जाके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे?
2: जहाँ जहाँ जहाँ
1: केशव कहाँ जा रहे हैं? माइक्रोफोन तो ये रहा।
2: सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, माइक जरा ऊंची करो।

आई मीन नमस्कार देवियों और सज्जनों। हाँ, तो नाट्य मंच अपने नए नाटक के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर आप सबका सहर्ष स्वागत करता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है हास्य प्रधान नाटक किसी एक फूल का नाम लो। सज्जनों सज्जनों शांत, इसके लेखक हैं केशव ठाकर और निर्देशक जगन्नाथ पाठक। सज्जनों सज्जनों सुनिए सुनिए, कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। कांता कामनी देसाई, प्रमोद जगन्नाथ पाठक, भाभी स्वाति सोनी। सज्जनों शान और सुनिए, नंदलाल प्रीतम सोनी, निरंजन सुंदर देसाई और देश पांडे केशव ठाकर। हाँ सज्जनों, तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।

0: जानता, मान लो कि
1: प्रमोद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह कितनी देर हो गई।
1: दफ्तर जा रहे हो प्रमोद, जाओ।

0: हेलो, कौन? नंदलाल भाई? हाँ, मैं कांता बोल रही हूँ। सुनिए, प्रमोद आज फिर झगड़ा करके दफ्तर चला गया है। हाँ, आज रात अगर आप हमारे यहाँ आ सकें ज्योत्सना भाभी को लेकर तो ठीक रहेगा। हाँ, प्रमोद को खुद फोन करके बता दे, निरंजन को मैं बता दूंगी। अच्छा, रात को जरूर आइएगा। बाय।
1: कहो मेरी जान।
0: ओह, तुम आ गए निरंजन। आज रात को फैसला हो जाएगा। मैंने नंदलाल भाई और भाभी को बुलाया है।
1: सच मेरी कांता?
0: आओ, सब आ जाओ, आज मेरी अर्थी उठ रही है। रोने वालों की जरूरत होगी। नंदलाल भाई आओ, ज्योत्सना भाभी आओ, निरंजन तुम भी आओ।
2: आखिर हुआ क्या कांता?
3: अरे नंदलाल, मैं बताती हूँ। असल में कांता और निरंजन?
4: नहीं नहीं नहीं, ये बात झूठ है। हम प्रेमी नहीं है।
2: प्रमोद, तुम ये क्या टाइप कर रहे हो?
5: आज जहाँ दंगा होने वाला है नंदलाल भाई, उसी को खत्म करने के लिए मैंने अपना यह घोषणा पत्र तैयार किया है। तो सुनो, आई प्रमोद पटेल, हस्बैंड ऑफ माय मोस्ट बिलवड वाइफ कांता पटेल, मैडम नेम कांता गोस्वामी, डू हियर बाय डिक्लेयर।
3: प्रमोद भाई सुनिए ना, मैं तुरंत अनुवाद कर सकती हूँ। लाइए अपना कागज, मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ।
5: ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो प्रमोद भाई कहते हैं, मैं प्रमोद पटेल, कांता पटेल का स्वामी, घोषणा करता हूँ कि मेरी किसी समय प्यारी पत्नी कांता मेरे विश्वास पात्र दोस्त निरंजन को चाहती है, इसलिए आज फला साल के फला महीने की फला तारीख को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से मैंने अपनी जान देने की घोषणा की है।
5: मुझसे सुनो मेरी घोषणा। मैं प्रमोद पटेल अपनी सारी ताकत जुटाकर कांता के छिपाए हुए पिस्तौल से आत्महत्या करता हूँ। अलविदा। अलविदा।
0: मुझे विश्वास हो गया है कि...
5: कैसा विश्वास?
0: कि तुम मुझे प्यार करते हो।
5: फिर भी मैं अपनी घोषणा पर
0: नहीं,
5: अटल हूँ।
0: प्रमोद रुक जाओ।

0: दो।
1: इस पिस्तौल से मैं ही मरूंगी। लाओ पिस्तौल मुझे दो।
0: कांता ये पिस्तौल मुझे दो। तुम्हारा संसार उजड़ने के पहले मैं ही इस पिस्तौल से।
1: खबरदार निरंजन, तुम मेरे जीवन में तो आए पर अब मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना वरना अभी इस पिस्तौल से।
0: ठीक है पहले मुझे मार डालो, मेरी दुखी आत्मा को शांति दो। कांता कांता मुझे गोली मार दो वरना मैं तुम्हारे हाथ से पिस्तौल लेकर आत्महत्या कर लूंगा।
1: सर तुम मुझे इतना प्यार करते हो निरंजन।
0: कांता कांता तुम मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो या पिस्तौल मुझे दो, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। तुम दोनों प्रेमी जियो और खुश रहो।
2: सुनो प्रमोद, तुम्हारी पत्नी यदि दूसरे को चाहती है तो इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे शादी करने से पहले मेरी इस पत्नी ज्योत्सना को किसी दूसरे से प्यार था।
3: हैं? नंदलाल इस रहस्य का तुम्हें पता था?
2: तुम्हारा प्रेमी देश पांडे थोड़े दिन हुए वो मेरे पास आया था पैसों के लिए।
0: कैसे पैसे?
2: ब्लैकमेल के पैसे।
3: लेकिन ब्लैकमेल किस लिए?
2: उसके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं।
3: है?
0: कितने रुपए मांगता है वो?
2: सौदा आज पक्का होगा, वो आता ही होगा यहाँ।
0: यहाँ?
2: हाँ मैंने देश पांडे को यही का पता दिया है और अब प्रमोद कांता और निरंजन तीनों से मेरी प्रार्थना है देश पांडे यही आ रहा है। तुम में से जो भी मरना चाहता है वो उसे मारने के बाद मरे तो मैं उसका एहसान मानूंगा।
0: प्रमोद तुम्हारा इरादा मुझे मारने का हो तो रुक जाओ, मैं देश पांडे का खून करूंगा और इस तरह फांसी पर लटक कर तुम्हारी और नंदलाल की दुनिया आबाद कर जाऊंगा। शायद देश पांडे आ गया, मैं दरवाजा खोलता।
1: नहीं तुम यहीं रुको प्रमोद, तुम्हारा शायद भागने का इरादा है, दरवाजा मैं ही खोलूंगी।
4: कांता अपना पिस्तौल मुझे देती जाओ, उस चांडाल का मैं खून करूंगी।
0: ये मेरा घर, मैं ही उसका खून करूंगा। तुम्हें करना हो तो उसे अपने घर ले जाओ। लो वो आ गया।
5: आप सबको नमस्कार, माफ कीजिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
2: गुड इवनिंग मिस्टर देश पांडे। ये सब मेरे मित्र हैं। ज्योत्सना तुम तो इन्हें मिस्टर देश पांडे को जानती हो?
3: हाँ हाँ।
2: और प्रमोद कांता निरंजन ये है मिस्टर देश पांडे जिनका खून कौन करे इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। हैं? सब लोग एक पंक्ति में क्यों बैठ गए?
0: आखिर बात क्या है नंदलाल?
2: तुम्हें नहीं, मैं इस थिएटर हॉल में बैठे हुए दर्शकों को सब बताता हूं। देवियों और सज्जनों, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद कांता और निरंजन एक दूसरे के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, एक दूसरे से अपना खून कराने के लिए जोर दे रहे थे और अब सवाल है मिस्टर देश पांडे के खून का। भाइयों और बहनों आप जानते हैं कि ये रहस्य नाटक है, इस नाटक के सभी पात्र यहां मौजूद हैं। आप विद्वानों में से कोई भी ये बता दे कि किसका खून होगा और कौन खून करेगा तो उसकी अक्ल की मैं दाद दूंगा। आपको बस इतना बता दूं कि खून इनमें से ही किसी एक का होने वाला है और इनमें से ही कोई करेगा भी।
4: नंदलाल मेरे हाथ में ये पिस्तौल देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी तिकड़मों से तंग आ चुकी हूँ। अरे हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले, मैं तुम्हारा खून करती हूँ।
2: अरे ज्योत्सना ये क्या कर रही हो?
1: भाभी
2: ये पिस्तौल असल है,
1: मेरे
2: असली
1: दो। भाभी ये पिस्तौल मुझे दो।
4: क्या कर रही हो तुम?

0: कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
1: आपका नाम, उम्र, काम?
0: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, उम्र 33 साल, काम नाटकों में अभिनय करना।
1: सरकारी वकील अब दवा से गिरा कर सकते हैं।
0: थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुलजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
2: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
0: कुछ और?
2: मतलब?
0: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?
2: जी जी हाँ, कामिनी देसाई मेरी प्रेमिका है।
0: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, क्या यह भी सही है कि आप

0: क्यू मी लॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुलजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
1: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
0: कुछ और?
1: मतलब?
0: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?
1: जी जी हाँ, कामिनी देसाई मेरी प्रेमिका है।
0: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, क्या यह भी सही है कि आप दोनों अगले महीने की 15 तारीख को शादी करने वाले थे?
1: जी जी हाँ।
0: 15 को ही क्यों?
1: वो हम लोग एक नया नाटक तैयार कर रहे थे और उम्मीद थी कि नाटक सफल होगा और उसकी आमदनी में से हम हनीमून के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे।
0: यह नाटक कब हुआ?
1: पिछले महीने की 1 तारीख को।
0: नाटक का नाम क्या था?
1: किसी एक फूल का नाम लो।
0: उस नाटक में आप दोनों के अलावा और किन किन लोगों ने काम किया था?
1: प्रीतम सोनी, स्वाति सोनी, सुंदर देसाई और केशव ठाकर का नाम लेते लेते रुक क्यों गए? उसके नाम को लेकर उस दिन कामनी से तुम्हारी जो बातचीत हुई थी वो क्या भूल गए हो?
2: हम दोनों, प्रीतम, स्वाति और सुंदर, ये तो नाटक के पात्र पक्के हो गए, लेकिन छठे पात्र के लिए कोई नहीं मिल रहा।
1: छठे पात्र के लिए सुनो, छठे पात्र के लिए केशव ठाकर।
2: केशव ठाकर? वो लेखक।
1: इसमें हंसने की क्या बात है? छोटा सा रोल है, बहुत मजा आएगा। हाँ,
2: सुंदर से पूछ ले।
1: आता ही होगा सुंदर भी। जी, मेरा नाम सुंदर देसाई, उम्र 30 साल, काम नाटकों में अभिनय करना। मुलजिमा कामिनी देसाई, उसको मैं जन्म से जानता हूँ सर। हम सब नाटकों में काम करते हैं। किसी एक फूल का नाम लो नाटक में हम सब ने काम किया था। कामिनी देसाई मेरी सगी बहन है सर, सगी बहन।
0: आप दोनों साथ रहते हैं?
1: जी हाँ, मैं, कामिनी और मेरी माँ तीनों साथ रहते हैं।
0: तीनों साथ रहते हैं। कामिनी ने जिसका खून किया उसके बारे में आप क्या जानते हैं?
1: जी नहीं, उसके बारे में मैं पहले कुछ नहीं जानता था। उसके मरने के बाद जाना कि उसका नाम शेखर खोसला था और वो किसी बड़ी फर्म का मालिक था।
0: उस नाटक में हत्या की घटना थी और उसमें एक पिस्तौल की जरूरत थी, ठीक है?
1: जी हाँ, लेकिन पिस्तौल में गोली नकली भरनी थी।
0: जगन्नाथ पाठक और कामिनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं?
1: जी हाँ, पाठक मेरा पुराना दोस्त है, हमने बहुत से नाटकों में एक साथ काम किया है। कामिनी और पाठक ज्यादातर नायक नायिका का काम करते थे और जाहिर है।
3: सच सच कह दूं ना कि तुम्हें अपनी बहन कामिनी और पाठक की शादी की बात पसंद नहीं थी?
1: जाहिर है, तुम दोनों में प्यार है और तुम शादी करोगे।
2: सुंदर, पाठक का कहना है कि मेरा इससे शादी करना तुम्हें पसंद ना होगा।
1: बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
4: सुन लिया कामिनी?
1: अरे वो तुम्हारा प्रीतम लाल नहीं आया?
4: तुम उसे प्रीतम लाल क्यों कहते हो?
5: अरे लगता है प्रीतम सोनी आ रहा है।
2: लेकिन वो तो अकेला ही आ रहा है।
4: प्रीतम, स्वाति सोनी कहाँ है?
5: आती होगी, वो सीधी आने वाली थी।
1: अरे स्वाति जरूर आई ही ना।
4: सुंदर,
1: अरे पाठक यार डांटते क्यों हो? मान लिया तुम इस नाटक के डायरेक्टर हो, लेकिन
4: रिहर्सल में अनुशासन जरूरी है। आई वॉन्ट डिसिप्लिन, आई सी।
1: अरे यार, मैं स्वाति से शादी का प्रस्ताव नहीं करने वाला हूँ।
6: जी, मेरा नाम प्रीतम लाल, कंचनलाल सोनी, उम्र 42 साल, काम अभिनय। जी, कामिनी को मैं 7-8 साल से जानता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मरने वाला कौन था। मेरा ख्याल है कामिनी पाठक के प्यार में।
0: आपने ये कैसे मान लिया?
6: कामिनी ने मुझसे कहा था कि पाठक उससे शादी नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगी।
0: अच्छा, पिस्तौल चलाने की बात नाटक में लिखी हुई है?

0: जी हाँ, नाटक में नंदलाल ये कहता है कि
1: मिस्टर प्रीतम, अच्छा ये बतलाइए कि पिस्तौल में असली गोली कैसे आई?
0: जी जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। कामनी भोली होने के कारण कई बार उत्तेजित होती, पर किसी को उससे बैर हो या उसे किसी से बैर हो, ये नहीं माना जा सकता।
1: आपकी पत्नी स्वाति सोनी और
0: जी
2: मैं स्वाति सोनी हूँ। पति का नाम प्रीतम सोनी, उम्र 37 साल, व्यवसाय गृहिणी का, और कभी कभी अपने पति प्रीतम के साथ नाटक में काम करने का। कामनी मेरी पक्की सहेली है। लगता है किसी ने उसे फंसाया है। मैं तो मान भी नहीं सकती कि उसने ऐसा किया होगा। इसमें जरूर कोई धोखा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती।
3: रोने की जरूरत नहीं, सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। क्या यह सच है कि कामिनी और पाठक के बीच प्यार था?
2: जी हाँ।
3: कामिनी को किसी और से भी प्यार था?
2: जी हाँ।
3: हाँ
2: जी,
3: या ना?
2: जी, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकूंगी।
3: क्या मतलब?
2: कामिनी एक सफल अभिनेत्री है, उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो एक भावुक स्त्री है और स्त्री का हृदय।
3: बस बस, ठीक से सोचकर जवाब दीजिए। आप बता सकती हैं पाठक और कामिनी की शादी करने पर क्या किसी को एतराज था? पाठक की कामिनी के सिवाय कोई दूसरी प्रेमिका थी या नहीं, और कामिनी का पाठक के सिवाय कोई दूसरा प्रेमी था या नहीं?
2: मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
3: याद रखिए, आपने हल्फ उठाया है।
2: हाँ जानती हूँ, मैंने हल्फ उठाया है, पर मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकती।
3: एक सवाल, आप मृत शेखर खोसला के बारे में कुछ जानती हैं?
2: जी नहीं, मैं शेखर खोसला या किसी के बारे में कुछ नहीं जानती।
3: आप कुछ छुपा रहे हैं।
2: आप क्या कहना ना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? मुझसे क्या कबूल करवाना चाहते हैं आप?
4: कामनी जी भाई, सुंदर के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो कबूल कर लो ना। अपने पति प्रीतम से छिप छिप कर उससे मिलती हो और कहती हो कि
5: सुंदर तुम बेकार इतनी कड़वाहट लाते हो, हमें कभी मुश्किल से तो ऐसा एकांत मिलता है।
6: ये तुम सोचती हो प्रीतम को पता नहीं चलेगा?
5: प्रीतम बहुत सीधा है, उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछा।
4: लेकिन कोई और जानता है।
6: कोई और जानता है? कौन?
4: केशव ठाकर,
6: वो बुद्धू लेखक।
5: हाँ वो बुद्धू लेखक, वो मूर्ख बना फिरता है, शायद है भी, लेकिन उसकी नजर बड़ी तेज है।
7: जी, मेरा नाम केशव ठाकर नहीं, मेरा मतलब है केशव लाल पुरुषोत्तम ठाकर, पेशा नाट्य लेखन।
3: तो आपने उस नाटक में देशपांडे का पाठ किया?
7: जी हाँ, मैंने देशपांडे का पाठ किया।
3: आप किस नाटक मंडली के लोगों से जान पहचान कैसे हुई?
7: वो बात यह है कि वो सुंदर देसाई है ना, उसके साथ एक बार अचानक मुलाकात हो गई थी। जी हाँ, वही मुझे अपनी मंडली में ले गया।
3: अच्छा, वो नाटक किसी एक फूल का नाम लो आपने लिखा था?
7: जी हाँ, मैंने लिखा था।
3: उसमें पिस्तौल की जरूरत थी?
7: जी हाँ।
3: आप कामिनी देसाई के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस खून के मसले पर रोशनी डाल सके?
7: वकील साहब, अजी आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा।
3: कामिनी देसाई का पाठक के सिवा कोई दूसरा प्रेमी भी था?
7: जी
3: मैं पूछ रहा हूँ, कामिनी का कोई दूसरा प्रेमी भी था?
7: जी हाँ, उसका एक दूसरा प्रेमी भी था।
6: तो अब ये भी बता दो कि कैसे तुमने कामनी के ही कारण नाटक लिखा, कैसे कामनी के निकट रहने के लिए तुमने उस नाटक में छोटा सा पार्ट करना स्वीकार किया, और कैसे नाटक के रिहर्सल में तुम हर तरह का अपमान सह लेते थे, और उस दिन रिहर्सल में

0: कामनी को सम्मुख पाकर तुम इतनी नर्वस हुए कि सिगरेट का जलता हुआ सिरा मुंह में डाल दिया और मुंह चला लिया।
1: कुछ नहीं।
2: तुम कामनी को ये दीवानों की तरह घूर रहे हो?
0: कुछ नहीं, वो जरा
3: आंशस हो गया।
2: अच्छा ठीक है,
4: ये पाठक भी आज कुछ
2: बस आप ध्यान से चूर करें। कामनी, तुम ठाकर के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? इसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रही हो? उससे
1: कह रही हूँ आप पाठक क्यों बेकार ईर्ष्या करते हो?
2: स्टॉप इट,
1: रिहर्सल शुरू करो ना। तुम प्रमोद का डायलॉग बोलो तो मैं कांता का डायलॉग बोलूं।
2: कांता मान लो,
1: मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्रमोद, तुम अपनी सीट छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी।
2: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है।
0: जी हाँ, कामनी का दूसरा प्रेमी था और वो मैं खुद था, यह केशवलाल पुरुषोत्तम ठाकर।
2: कामिनी भी आपसे प्रेम करती थी?
0: जी नहीं, वो तो मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं मनी मन उससे प्रेम करता था और अब भी करता हूँ। कामनी की जमीन पर चले उसे मैं चूमने को तैयार हूँ और जो वो कहे।
2: मतलब आप मन ही मन कामिनी से प्रेम करते थे?
0: जी हाँ, और उसके सामने मैं नर्वस आ जाता, यानी कि घबरा जाता।
2: अच्छा, मरने वाले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
0: जी, उसका नाम शेखर खोसला था।
2: सवाल यह है कि शेखर खोसला के बारे में आपके पास कोई खास जानकारी है?
0: आज देखे लो कि सब इस दुनिया में कौन किसी को जान सका है।
2: हाँ या ना में जवाब दीजिए।
0: किस बात का जवाब?
2: शेखर खोसला को आप उसकी मौत से पहले जानते थे?
0: अजी, इंसान को देखे ना, दो तरह से जाना जाता है, एक उसे प्यार करके और दूसरे उससे नफरत करके। भाई, हमारी जानकारी हमारी समझ से बनती है। अजी, मैं तो न तो शेखर खोसला से प्यार करता था न नफरत।
2: बेकार की बात मत कीजिए। अगर सीधा जवाब न दिया तो अदालत के अपमान के जुर्म में सजा होगी और झूठा जवाब दिया तो जेल।
0: अब देखिए वकील साहब, आप तो खामखा डरवा रहे हैं। अजी, क्या सच क्या झूठ इसका फैसला कर सकूं? जी, इतना विद्वान तो मैं नहीं।
2: आप शेखर खोसला को जानते थे?
0: जी,
2: हाँ या ना?
0: जी कुछ नहीं, याद नहीं।
2: याद कीजिए, आपने उसे 1000 रुपए दिए थे, ये सच है?
0: जी, क्या बात करते हैं वकील साहब। जी, बहुत लोगों ने मुझे कई बार 1000 रुपए दे दिए होंगे। अब देखिए ना, अब उस सब का हिसाब तो मुझे याद नहीं।
2: ठीक, दूसरा सवाल, नाटक में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ और जिससे खून हुआ उसमें असली गोली किसने भरी थी, आप बता सकते हैं?
0: जी नहीं।
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
0: कुछ नहीं।
2: ठीक से याद कीजिए।
0: जी, वो जी, मेरी याददाश्त कुछ अच्छी नहीं।
2: ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला से आपने 1000 रुपए लिए और ये नाटक लिखा जिसमें शेखर खोसला का खून हुआ। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था? मिस्टर केशव ठाकर चुप क्यों है, बताइए शेखर खोसला कौन था?
0: छिपा क्यों रहे हो? बता दो ना। अच्छा, तो तुम कामनी और पाठक की वो बात बता दो जो उस दिन तुमने ओट में छिपकर सुनी थी। किस दिन? मैं तो प्रायः रोज ही छिपकर कामनी को देखा करता था। अरे, उस दिन रिहर्सल के बाद जब तुम कामनी से मिले थे और फिर ओट में छिप गए थे।
5: कामनी, रिहर्सल के बाद केशव ठाकर तुमसे क्या कह रहा था?
1: कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, बेचारा सिर्फ बॉडम है, मेरी तारीफ कर रहा था।
5: सच बताओ कामनी।
1: पाठक, कितने शक्की हो तुम। तुम सोचते हो मैं उस फंटूष को प्यार करती हूँ?
5: नहीं, लेकिन ये जरूर सोचता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो।
1: मान लो छिपा रही हूँ, फिर
5: तो फिर हमारे संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सीधी सादी बात।
1: धमकी देते

0: सफाई चाहता हूं।
1: कैसी सफाई? ओह, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। शक्की अंधे फूंदू पति की तरह पूछे जा रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
0: यानी कि तुम कुछ छिपा रही हो?
1: हाँ, मैं कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती। विश्वास कर सको तो करो कि जो कुछ मैं छिपा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, धोखा देने के इरादे से नहीं।
0: यह चरित्र की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कि तुम जो छिपा रही हो वो चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो, मैं उसे छेड़ लूंगा। ऐसा क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं रहूंगा?
2: मिस्टर केशव ठाकुर
3: जी,
2: क्या सोच रहे हैं बताइए। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था?
3: जी जी, वो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा वकील साहब। मेरा मतलब है, शेखर खोसला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
4: सरदारी वकील अपनी जिरह बंद करें, अब अदालत खुद पांचों गवाहों से सवाल करेगी। केशव ठाकर
3: जी,
4: शेखर खोसला कौन था?
3: जी जी, कहा ना हुजूर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
4: स्वाति सोनी, शेखर खोसला कौन था?
1: जी जी, कैसे समझाऊं आपको? मैं कैसे समझाऊं एक स्त्री के दिल की बात? मैं कैसे कहूं शेखर खोसला कौन था? मैं शेखर खोसला को जानती हूँ, या कि शेखर खोसला को नहीं जानती।
4: प्रीतम सोनी, शेखर खोसला कौन था?
5: जी नहीं, मैं शेखर खोसला को नहीं जानता। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं।
4: सुंदर देसाई, आपकी बहन कामनी जिसका खून किया, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं?
5: जी जी, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बात ये थी सर कि थिएटर हॉल में औरों की तरह वो भी निमंत्रित था, और निमंत्रण पत्र उसी संस्था ने भेजे थे जिसने हमें नाटक खेलने के लिए बुलाया था। मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
4: जगन्नाथ पाठक, शेखर खोसला के बारे में क्या आप जानते हैं?
5: जी, अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
6: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी, प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की थी। इस नाटक का दूसरा भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है। आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का पहला भाग।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, आज स्वागत कर रहे हैं हम सभी उनका जिनके इशारों पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थिरके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महेश बाबू, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और लगभग 30 से अधिक दिग्गज अभिनेताओं को अपनी कोरियोग्राफी से नया अंदाज देने वाली वहीं माधुरी दीक्षित

0: ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जूही चावला, अमीषा पटेल, अंतरा माली और अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के यादगार गीतों को अपनी कल्पना और सृजनशीलता से जीवंत बनाने वाली बड़ी प्यारी सी कोरियोग्राफर। आज की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
0: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
1: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
0: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
1: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी।
0: ओके।
1: तो हुआ यूं कि घर की जरूरतें होती है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक मधुमती एकेडमी। मधुमती जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती
0: जी,
1: थी।
0: जी, जी, बिल्कुल।
1: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहां पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में।
0: क्या उम्र होगी वो? लगभग
1: 7 स्टैंडर्ड में होंगी। तो मेरी बहन और मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे। बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम दोनों को बुलाते थे।
0: अच्छा,
1: कि आप कॉम्पिटिशन में आ जाओ। तो मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी। मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी।
0: अच्छा।
1: तो जरूरत तब हुई जब लगा कि फीस भरना है, छोटे भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं। अच्छा। तो लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए, ट्यूशन देती थी। फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते, तो मधुमती मैम ने देखा और मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
0: अच्छा,
1: और वहां पे मैं, हाँ, एक हाथ मिल गया। और वहां पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को। तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि उर्दू सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी। उनके साथ एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें। अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है।
0: अच्छा।
1: तो मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम, अपने साथ रख के आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो
0: जी।
1: और एक हमारी तरबियत को नहीं भूलना है।
0: क्या बात
1: अपनी
0: है।
1: तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
0: मतलब नदी जैसे बहा रही है, बहते जाओ, लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं है। जी,
1: बिल्कुल
0: बहुत बढ़िया बात।
1: बहुत ज्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में मिलके वहां चला जाए।
0: जी,
1: समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। वहां से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज के ऑफर आने लगे। तो गणेश हेगड़े
0: जी
1: जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप, गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज के कोरियोग्राफर्स हैं।
0: जी,
1: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा। तो
0: हाँ,
1: अम्मी
0: तो
1: मेरी हमेशा साथ होती थी।
0: अमाउंट के लालच में आप
1: अमाउंट
0: काम
1: ये था,
0: की
1: हाँ, कि एक इतना अमाउंट आएगा तो दिमाग सोचने लगा कि अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमती मैम ने, हाँ, मधुमती मैम ने बोला बेटा करो, बुरा नहीं है। अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के।
0: जी जी
1: तो वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां से। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी।
0: तो आप
1: मुझे
0: उस समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में
1: नहीं,
0: कर
1: बिल्कुल
0: रही थी
1: नहीं,
0: या लीड डांसर्स थे?
1: नहीं, मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो
0: अच्छा
1: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे, तो
0: जी।

0: गणेश हेगड़े लॉलीपॉप इन्हीं का ट्रुप चलता था।
1: जी
0: उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां 12 लड़कियां ऐसे होती है।
1: ठीक
0: उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी जो अभी कोरियोग्राफर है।
1: जी
0: तो पोनी वर्मा ने यू नो शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी। तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेश आचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो
0: हाँ,
1: चेहरा अलग
0: तो
1: दिखता है
0: क्योंकि आप
1: चमकता हुआ।
0: क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं।
1: जी
0: उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ
1: जी
0: तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है
1: घुसा
0: बचपन
1: हुआ है
0: से।
1: जी।
0: तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी, जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो
1: जी
0: मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी। मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई।
1: अरे
0: उन्होंने
1: वाह
0: अम्मी
1: जी
0: से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था
1: तो उन्हें
0: काफी
1: एक
0: उस
1: और
0: वक्त।
1: हाथ चाहिए था जी।
0: तो फिर उस तरह से माई मदर यूज टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजन, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी। तब तक मैं यहाँ पहुंची 8 9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे थे
0: स्टिल
1: आप,
0: स्कूल में थी।
1: बहुत
0: तो वो
1: छोटे थे।
0: मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3 4 साल काम किया। बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का
1: क्या
0: मौका
1: बात
0: मिला।
1: है,
0: फिर एक, मैं सरोज जी की बहुत बड़ी फैन थी,
1: बिल्कुल
0: मैं
1: सब
0: काम बहुत बड़ी फैन, मतलब
1: है
0: मैं
1: मास्टर जी के फैन सब है
0: सब है। जब
1: जी।
0: मैं असिस्टेंट थी, उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका ये उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एक लव्य। काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एक लव्य बन गई।
1: क्या बात है।
0: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोज जी समा गई, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए।
1: जी
0: तो वो एक, उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एक लव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर, निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
1: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे है ना,
0: बहुत ज्यादा
1: तो कोई एक गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना
0: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी
1: है। तो
0: फैन
1: हमारे
0: हूँ।
1: विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे।
0: आप जैसे देखो, मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो हे प्यार दू,
1: क्या
0: गोरी
1: खूबसूरत
0: बैया तो
1: गीत
0: पे
1: है
0: वार
1: जी
0: दू।
1: जी जी जी
0: एक
1: गाइड
0: तो
1: फिल्म
0: जो
1: का ये गाना
0: अल्फाज,
1: जी।
0: जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स लता जी जब गाती थी, तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए।
1: जी
0: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ जो
1: तो
0: मुझे
1: फिर उनमें से
0: सुकून
1: कोई
0: देते
1: एक
0: हैं।
1: हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
0: एक तो पहले सुनाइए, आजा पिया तो हे प्यार दूं, गोरी बैया तो पे वार दूं।
1: चलिए
0: उसके बाद
1: जी,
0: हाँ
1: उसके
0: ये
1: बाद की
0: गाना, उसके
1: भी
0: बाद लग जा गले
1: अच्छा
0: के फिर ये हंसी रात हो ना हो।
1: बड़ी बढ़िया सी फरमाइश है आपकी, पर हम आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है, आजा पिया तो है प्यार दूं, गाइड
0: प्लीज
1: फिल्म का गाना है,
0: प्लीज
1: सुनते हैं ये गीत।
0: प्लीज सुनाइए।

0: रे तू।
1: तो शबीना जी आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे।
2: अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीजें तो हम जानते ही नहीं थे। और कई सारे लोग बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे, आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
3: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है। आजकल अलग माहौल है
1: जी।
3: जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है
1: जी, जी।
3: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है
1: जी,
3: उस लेवल पे करना है। वहां पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
1: शुरू
3: आती
1: हो जाती है जी।
3: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते हैं और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे डांसर,
1: वेरी गुड डांसर,
3: वेरी ग्रेसफुल। उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है, जो कमल मास्टर जी थे
1: जी।
3: और कमल मास्टर जी बहुत कमाल, उन्होंने एक ट्रेंड, जैसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था
1: जी,
3: भोली सूरत दिल के, जो वो हाथ का स्टेप
1: वो सब
3: था
1: कमल जी का दिया।
3: वो कमल
1: जी,
3: जी उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट थे गणेश आचार्य जी, उनके असिस्टेंट हूँ मैं।
1: बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही है।
3: बिल्कुल। वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी। और वही मास्टर जी करते थे, गणेश मास्टर जी। वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
1: क्या डायलॉग है।
3: हाँ, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती
1: जी।
3: तो ग्रेस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
3: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है बट आपको देख रही है, तो इसलिए
1: एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे।
3: बिल्कुल,
1: अदायगी
3: मुझसे मिलेगी। डुएट सॉन्ग है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं, व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं असिस्टेंट थी
1: जी
3: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है। तो मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर को कॉपी करना और करके दिखाना
1: जी।
3: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के, जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ गणेश मास्टर जी ने की है।
1: गणेश मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान।
3: शबीना खान। तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते हैं अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी करी थे करिश्मा आपकी तरह करी थी। तो ये जो
1: मैं ही सिखा रही थी
3: मैं ही, हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते, तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं।
1: तो फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं। अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इलाका जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया।
3: मैं मजेदार बताऊं थोड़े से।

0: लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें,
1: जी
0: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी दे रे पीछे
1: क्या
0: पीछे
1: बढ़िया
0: पीछे
1: गाना
0: पीछे,
1: है
0: उसमें मैं असिस्टेंट थी। और जितने लोग मुझे अब देखते हैं,
1: जी
0: जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती थी
1: नहीं, आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से तो
0: उस वक्त काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो।
1: जी
0: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
1: बिल्कुल, ये
0: आपकी
1: गाना
0: मर्जी
1: हम
0: है।
1: जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरुला जी
0: हाँ
1: ने
0: जी
1: गाया हुआ
0: हाँ
1: ये
0: जी
1: गाना है और बड़ा खूबसूरत, वो बुलंद आवाज के साथ, उस
0: बिल्कुल
1: बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है। तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: बिल्कुल
1: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शबीना खान पूरा डांस दिखा रही हैं, और जो रानी मुखर्जी हैं उस डांस को कर रही हैं। तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।
0: ठीक।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे, तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है, और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी, वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: सो ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं।
0: जी
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूं
0: हाँ
1: और अरबाज खान को
0: हाँ
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है,
0: अच्छा
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना।
0: हाँ
1: सो बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके YouTube पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी वहां
0: ऐसा
1: पे।
0: मुझे भी समझ नहीं आया था उस
1: हाँ आप
0: गाने में।
1: देखिए,
0: जी
1: गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर दैट सॉन्ग, ब्रदर हेलो ब्रदर
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं
1: मैं
0: बट
1: हूँ, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है,
0: ओ
1: तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या। बहुत लोगों को लगता था, इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो ऐसे दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट
0: जी जी
1: पर्सनालिटी
0: जी
1: बाल काफी कुछ मिलता था उस वक्त।
0: जी
1: और फिर एक गाना था काली नागिन की जैसी जुल्फे
0: ब्यूटीफुल
1: तेरी काली
0: सॉन्ग।
1: काली, मैं
0: यस
1: असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी
0: हो
1: के
0: गए
1: साथ
0: थे।
1: हो जाते थे,
0: अच्छा
1: तो वो एक गाना था। उसके बाद में चांदी की डाल पर

0: फोड़ने
1: वो मटकी फोड़ने वाला गाना,
0: मटकी फोड़ने वाला गाना, वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइट शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहाँ पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले, तो आई यूज टू डू इट।
1: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए, मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
1: जी जी जी अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय।
0: बहुत सारे
1: जी, उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया?
0: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां हैं वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने,
1: पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी बहुत,
0: तो मेरे असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की, कॉलेज जाना शुरू किया, काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ, अपने बहन भाइयों की पढ़ाई।
1: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
0: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
1: आप कोरियोग्राफी के साथ?
0: हाँ, तो क्योंकि मैं कोरियोग्राफर कभी बनना नहीं चाह रही थी, मैंने काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है।
1: जी,
0: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की, काम भी किया। सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
1: पैसों की भी
0: जरूरत थी, और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था, क्योंकि जिंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
1: हारे तो कभी नहीं थे,
0: कभी हारे नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहां से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं।
1: अच्छा।
0: कि कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है। तो पढ़ाई साथ साथ चलती रही मेरी।
1: मतलब आपने जो भी पढ़ा, अच्छा कठिन ही पढ़ा,
0: हाँ,
1: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे बायोटेक्निकल नेम्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे।
0: तो ऐसा होता था कि असिस्टेंट डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी।
1: ये
0: और
1: बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर
0: बिल्कुल
1: सकते।
0: यही मैं चाहती थी कि आपके
1: जी,
0: जरिए पता
1: तो
0: चले
1: हमारे
0: लोगों को।
1: कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं,
0: बिल्कुल
1: प्लस पढ़ाई भी हो रही है, वो भी साइंस की, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स,
0: बिल्कुल
1: ये तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना, याद करना,
0: बिल्कुल
1: फिजिक्स की मैथ्स भी होती है।
0: बिल्कुल।
1: और
0: इसलिए जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी।
1: बट कॉमर्स भी इजी नहीं है।
0: हाँ, बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास
1: जी,
0: की, मतलब मैं
1: क्या
0: खुद,
1: बात है,
0: हाँ,
1: बुककीपिंग
0: पढ़ाई में
1: की।
0: अच्छी। हाँ, तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड, विच इज हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो। तो जो
1: हाँ
0: पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है। जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ
1: जी
0: एक नॉलेज था, पढ़ाई का, डिसिप्लिन का।
1: जी
0: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है,
1: जी
0: वो आज
1: बिल्कुल,
0: भी मेरी लाइफ में है। इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है।
1: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज्यादा होगी, और वो
0: बिल्कुल
1: सब करके आप हर फील्ड में आप जीती।
0: बिल्कुल। और आज इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को, 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है।
1: जी
0: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है, जिन्हें अच्छे दिखना है, सुंदर दिखना है, लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो
1: जी
0: आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो, तो
1: हाँ,
0: मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके।
1: क्या बात है,
0: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म,
1: सुकून की नींद नहीं, पेट भर
0: बिल्कुल
1: के भूख नहीं,
0: बिल्कुल।
1: और एक अलग
0: ये
1: बेचैनी,
0: बिल्कुल मैं अपने आप
1: इसके
0: को
1: लिए
0: आज
1: डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम
0: नहीं जा,
1: करने के लिए लग जाना
0: चार
1: है।
0: घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को
1: जी,
0: कायम रखने के लिए।
1: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे लो,
0: बिल्कुल
1: आपके अंदर कुछ पनप रहा है,
0: बिल्कुल।
1: कुछ जाग
0: ये
1: रहा है।
0: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है।
1: जी
0: हमेशा
1: जी
0: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं, मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है,
1: इतना होने के बाद
0: ये भूख ही मुझसे करवाती है। तो मैं सर
1: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के लिए।
0: बिल्कुल। तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ
1: जी
0: कि ये कब हुआ, जब कोरियोग्राफी शुरू की।
1: जी
0: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ

0: और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना, फ्लो के
1: हुँ,
0: साथ चलो।
1: हुँ,
0: एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ। अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है, दिशा बदलनी चाहिए। तो
1: जी
0: मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया।
1: जी
0: मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे। हाँ
1: अच्छा, क्या
0: जी,
1: बात है।
0: तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया, उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है, लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था, लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या राय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी।
1: अच्छा, प्रश्न ही होता था,
0: हाँ,
1: शबीना आएगी
0: शबीना
1: ना
0: है
1: सिखाने
0: ना?
1: के लिए। हाँ
0: तो उन्होंने पूछा, शबीना है ना? हाँ, शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का। तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते वीजा लगवाने मेरा।
1: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल कपूर
0: हाँ,
1: जाके वीजा लगवा
0: वीजा।
1: रहे
0: और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम? अनिल कपूर बोल रहा हूँ, शबीना। मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट्स को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता।
1: क्या बात है।
0: जब मैं उनके साथ, मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी
1: हाँ,
0: कर
1: क्या
0: रही
1: खूबसूरत
0: थी,
1: गाना
0: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं
1: है।
0: पढ़ ही
1: जी
0: रही थी।
1: जी जी
0: असिस्टेंट डेज की बात है।

0: वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना,
1: जी
0: वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: 2003 की ये फिल्म है।
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: सीधे ब्रेक
0: मुझे
1: मिल रहा है बट
0: बिल्कुल
1: आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था इसलिए मैंने सीखा ही नहीं, मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। ही सेड दिस इज

0: आई वॉन्ट फ्रॉम यू, ये सर मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म। अंतरा माली हीरोइन थी
1: जी
0: उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी।
1: जी
0: सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ, तुम्हें बता देगा, एक गाना करो, मजा आया तो आगे करना।
1: वो
0: फिर
1: गाना कौन सा था पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ
1: हाँ,
0: है आज
1: वो
0: ये
1: भी
0: दिल,
1: बहुत अच्छा किया था अंतरा वाली जी ने,
0: आहा, आहा,
1: बढ़िया किया था।
0: बहुत फेमस हुआ था वो गाना। सर मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है। मैं
1: जी
0: गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना। मैंने किया, वो गाना था 1 2 3 और हमको आज कल है इंतजार,
1: हाँ, वो
0: माधुरी
1: मुझे
0: दीक्षित
1: अभी
0: का।
1: अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द, तो चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है। सच अ
1: सीख लेंगे
0: ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज,
1: जी।
0: उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है। इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और जब पहला गाना
1: कोई
0: एडिट करके, नहीं
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे
0: सर
1: इसमें।
0: तुमने यही सीखना और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई सेकेंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट, एंड अंतरा माली इज माई फर्स्ट स्टार हु, उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं।
1: जी
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया और फिर लगा कि ओ माई गॉड ये मेरा क्रिएशन है। जब 70 mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं,
1: जी
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरी, ये मैंने क्रिएट किया है।
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ, तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करना है। मम्मी बोले करो बेटा।
1: एक्चुअली में जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस
0: आप
1: डांस
0: उसको
1: को
0: जीते हो,
1: जी रहे होगे, उसके
0: बिल्कुल
1: साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे
0: बिल्कुल।
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।
0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं,
1: हाँ
0: एडिटिंग तक।
1: हाँ
0: पहला प्रोसेस होता है, गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं।
1: जी
0: तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं।
1: जी
0: ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो। तब मुझे वहां पे मजा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे। फिर जिंदगी का मोड़ मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई।
1: आपको सुन के ना इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलते जा रही हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा, और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए, जितनी भी जाएगी
0: तो
1: वो।
0: मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का जो मेरा अपना फेवरेट है,
1: जी
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म
1: हाय
0: से है,
1: हाय,
0: गाना है जलते दिए।
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब
1: जी
0: भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है।
1: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं
0: जी
1: और वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहां से वहां जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि कैसे
0: बिल्कुल।
1: वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना
0: सो
1: सुना
0: अगर
1: दें।
0: आप गाना देखेंगे आपके जरिए जो इतने लोग
1: सुनेंगे और बाद
0: हिंदुस्तान
1: में
0: के
1: देखेंगे भी।
0: देखेंगे और सुनेंगे,
1: जी
0: तो ये जो दिए देख रहे थे आपके, ये गाना था जलते दिए,
1: जी
0: तो हमारे जो सूरज बड़जात्या जी है उनके तो
1: जी
0: सब जानते हैं,
1: जी
0: सबके दिलों की धड़कन है वो,
1: जी
0: तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी।
1: बिल्कुल, बहुत
0: उनसे मैंने,
1: सरल
0: वो
1: है।
0: मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ।
1: जी
0: जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे,
1: खुद जलाएंगे यानी,
0: नकली दिए भी मिलते हैं जो
1: हाँ
0: आप
1: वो,
0: ऑन करके डाल
1: हाँ
0: दो।
1: एलईडी वाले
0: ही
1: जी।
0: सेड नहीं, उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे, ही सेड मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितनी
1: असली दिए
0: दिए
1: जलाएं।
0: दिख रहे हैं हम
1: हाँ
0: जलाएंगे, भले 50 100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है
1: ये
0: इस
1: बढ़
0: गाने
1: जाती है
0: की।
1: आजकल ये काम ऐसा
0: हाँ, तो
1: होता
0: उसमें
1: है,
0: दिए
1: ये
0: जलाने में मैं
1: ऑथेंटिसिटी
0: भी होती
1: होती
0: थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट, वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए

0: चल रहे हैं।
1: जी,
0: आपने जो
1: उसके
0: सवाल
1: साइड पे
0: किया,
1: भी, पटरी
0: साइड
1: पे भी
0: में
1: जल रहे हैं जी।
0: जहां जहां वो जा रही है
1: हाँ
0: वो दिए जल रहे हैं,
1: जी
0: और उन दियों को हम जलाते थे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी,
1: हाँ, और वो
0: तो वो
1: बहुत लाइट
0: चलकर,
1: नेट की
0: हाँ
1: साड़ी है वो
0: तो
1: जी।
0: वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर।
1: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा
0: हाँ
1: लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल
0: नहीं,
1: रही है और
0: वो
1: वो
0: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के कि
1: जी
0: ऐसा लगे कि है बहुत करीब,
1: जी
0: लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले, वो हमारे सेट पे होते हैं,
1: जी
0: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता, फिल्म
1: डॉक्टर्स होते
0: सेट्स,
1: हैं, एम्बुलेंस
0: डॉक्टर्स
1: होती
0: होते
1: है
0: हैं, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे
1: जी।
0: लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको
1: हाँ
0: भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो, लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो
1: हाँ
0: पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए,
1: इक्विपमेंट्स
0: सेफ्टी
1: और सेफ्टी नॉर्म्स के
0: बहुत
1: साथ में
0: ज़रूरी है,
1: ही
0: बहुत
1: काम करना
0: ज़रूरी।
1: चाहिए।
0: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से, कोमलता
1: भावित
0: से
1: सॉन्ग,
0: दर्शाया गया,
1: बहुत प्यारा, बहुत
0: बहुत
1: सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये।
0: बिल्कुल
1: दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है, तो
0: बिल्कुल
1: जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना, जलते दिए आप सबके लिए।

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया,
1: जी
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, इंटरनेट पे सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीजें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली, वो भी बड़ी काम आ जाती हैं। तो वहां से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा हैं, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी
1: रेखा
0: आपने
1: जी को
0: सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं, बात तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता
1: मैं
0: सकती हैं। जी
1: हर एक के बारे में बताती
0: जी
1: हूँ।
0: जी जी
1: रेखा जी हमारी उम्र और जान,
0: जी
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म की थी इंद्र कुमार जी की,
0: जी
1: मैं नई नई कोरियोग्राफर थी,
0: जी
1: और जब उनको पहली बार देखा मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी
0: आज भी उतनी ही
1: हाथ
0: खूबसूरत,
1: भी उतनी
0: पचहत्तर
1: ग्रेसफुल,
0: तेहत्तर 74 बरस की उम्र में भी वही अदायगी
1: आज
0: है।
1: भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले तो
0: हाँ
1: दिल के अंदर तीर घुस जाते, वैसी
0: हाँ
1: है वो।
0: हाँ
1: और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया, और उनके साथ मैंने वो फिल्म की,
0: जी
1: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और
0: जी
1: बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया
0: आह, क्या बात है।
1: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर। इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है, ठीक है। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा बहुत ग्रेसफुल है,
0: अच्छा
1: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है
0: अच्छा
1: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नज़ाकत,
0: हाँ
1: यू नो, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल।
0: यस
1: ग्रेसफुल मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था, कीमती एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहां आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नज़ाकत और आपका ग्रेस पता चलता
0: इसे
1: है।
0: अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके
1: बिल्कुल
0: निकल जाना।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: आपको ज्यादा शोर शराबा जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी। इसे कहते हैं अदायगी,
0: हाँ
1: जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है। सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्कड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी,
0: बिल्कुल,
1: और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर,
0: सोनम
1: शी वर्कड
0: कपूर।
1: रियली हार्ड। रात को दो
0: हाँ
1: दो बजे तक रिहर्सल किया, और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरे के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ, बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरे पे दिखा सकती हूँ। जो जलते
0: बहुत
1: दिए में आप
0: सॉफ्टनेस
1: देखिए,
0: के साथ में उन्होंने
1: बिल्कुल
0: डांस किया जी।
1: शकुंतला बन गई थी वो,
0: हाँ
1: बिल्कुल उस
0: हाँ
1: गाने
0: ऐसा
1: में,
0: ही,
1: यही था।
0: दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था। शी वॉज
1: शी
0: वेरी
1: इज
0: गुड,
1: वेरी
0: बहुत
1: ग्रेसफुल।
0: बहुत बहुत प्यारा किरदार उन्होंने।
1: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ, शर्वरी,
0: अच्छा
1: नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
0: सही बात है,
1: यू नो,
0: कहेंगे लोग।
1: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत जरूरी होता है, वो ही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्कड हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव।
0: इनके कोई
1: तो
0: नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी? जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए, ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में, तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है?
1: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की
0: जी
1: आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ।
0: जी
1: उनके साथ जब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
0: एक ही जरा जरा
1: वो भी किया, और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे
0: जी
1: थे।
0: जी
1: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा,
0: जी
1: तो मैं रो पड़ी।
0: हाँ
1: शी केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन।

0: पर अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखाइए गाना पूरा। और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया। शीजर मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है।
1: आ क्या बात है
0: हाँ, ये होता है अचीवमेंट।
1: जी।
0: और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी। आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है।
1: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को
0: उन्होंने
1: गुरु
0: अगर
1: मान के
0: माधुर
1: उसके जैसा ही
0: उन्होंने
1: काम
0: सरोज
1: किया
0: जी को अगर निभाया स्क्रीन पे, तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया।
1: जी
0: आपको पता है जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो
1: जी
0: सूरज बड़जात्या की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन।
1: जी बहुत
0: उन्होंने निभाया
1: खूबसूरत
0: उनको, उन्होंने उनको निभाया, गणेश आचार्य जी को निभाया। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल जो गाना है,
1: जी
0: मैं असिस्टेंट थी, वो भी उन्होंने किया
1: जी
0: माधुरी दीक्षित जी ने। तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया, बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड कि मुझे चेंज करना है। शबीना ने बहुत अच्छा किया, शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है। जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है।
1: जी
0: और वही चीज लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में मैं। टचवुड, अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है वैसे करना है, क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको। और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बड़जात्या, जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है चलना है। सूरज जी ने कहा सोनम मुझे यही चाहिए। जब आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: एक्टर फिर खामोश हो जाता है।
1: हाँ
0: और सलमान खान, उन्होंने
1: हाँ
0: जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है, वो सगा भाई है,
1: जी
0: वो भी मेरे साथ रह रहे के वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है।
1: अरे वाह
0: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है। सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है। सूरज जी ने बोला कि शबीना।
1: जी
0: तो वहां पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो स्टार मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है, तो फिर सब कुछ बैलेंस होकर चलता है। और मेरे मामले में यही चीज मेरे साथ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा।
1: हाँ
0: उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
1: और उनको वहां तक लाना पड़ता
0: लाना
1: है,
0: पड़ेगा
1: मेहनत
0: आपको
1: करनी पड़ती है।
0: उनके कैरेक्टर को। मैं करके दिखाती हूँ, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि उस
1: हाँ
0: कैरेक्टर को जी पाऊँ, उसकी तरह बन पाऊँ, उसके जैसे लचक लाऊँ, उसके जैसे। वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से।
1: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक डीओपी और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
0: सारे
1: इनके
0: एचओडीज
1: असिस्टेंट्स, एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
0: तभी
1: किरदार को
0: प्रेम
1: जी रहे
0: रतन
1: होते
0: धन
1: हैं।
0: पायो बनी है। मैंने वो ही फिल्म की 1.5 साल और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
1: जी
0: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
1: जी
0: इसका कोई भी कोना कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: सोनम का कैरेक्टर
1: जी
0: है, फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
1: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
0: उनको भी
1: बीच में
0: जीना है, हर एक कैरेक्टर को जीना है।
1: जी।
0: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है। अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है।
1: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे। वहां तक
0: बिल्कुल
1: पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी, तो हमारे श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे।
0: बिल्कुल,
1: थे तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है।
0: उफ प्लीज।
1: तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूं पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें
0: बिल्कुल,
1: संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है और क्या फिल्माया गया है।
0: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊँ इस
1: हाँ
0: पर,
1: बिल्कुल
0: अगर
1: जी,
0: आप इस गाने को फिर से मेरे मेरे इस
1: आपके
0: इंटरव्यू के
1: नजरिए से।
0: बाद अगर आप वापस से जितने आपके श्रोता है वो भी देखें, तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहां पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके डीओपी ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस,
1: हाँ
0: उसकी अदायगी देखिए। वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती जरूर हूं,
1: अच्छा
0: क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर।

0: जंगल में वो गाना शूट हो रहा
1: हाँ
0: है और दो लोग
1: लाइट
0: हैं,
1: इफेक्ट्स इतना खूबसूरत आ रहा
0: बिल्कुल
1: है जी,
0: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं
1: कुछ
0: है,
1: नहीं है
0: और दोनों हर फ्रेम में है,
1: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
0: लाइट्स
1: गई
0: भी
1: हैं
0: नहीं है,
1: बैकग्राउंड में क्योंकि वो
0: तो
1: जंगल का है।
0: उसको वो जो सूदिंग वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
1: जी
0: किया है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
1: तो ऐसे
0: कोरियोग्राफर एक
1: गानों में भी
0: म्यूज
1: कोरियोग्राफर का काम
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: बिल्कुल
1: सिर्फ
0: होता
1: नाचने के लिए नहीं बाकी।
0: बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए,
1: जी
0: और आप फिर ये गाना देखिए, आई
1: जी
0: वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले
1: जी
0: फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए।
1: जी
0: तो बींग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विथ योर डायरेक्टर।
1: जी
0: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है
1: की मोमेंट हो।
0: मोमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे, जो लग जा गले में हुआ है।
1: जी
0: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और मनोज कुमार जी,
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: और कैरेक्टर्स देखो उसके जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में। इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए।
1: तो इतनी अच्छी बात के बाद तो ये गाना बनता है, तो जल्दी से सुना देते हैं ये लग जा गले।

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर एचआर पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
2: परेशान हूं मैं।
1: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
3: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
5: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
5: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त तथा विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक छात्र संगठन है। उन्होंने मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संगठन अपनी सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाकर शहरी बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कास्ट 24 और काउंसलिंग फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर

0: जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। पार्टी सांसद तरुण चुग ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अन्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए माफियाओं को जबरन वसूली की रकम देने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज टेंडोग लेहो रम फाट के अवसर पर सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि ये त्यौहार लेप्चा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और विरासत तथा उनकी भूमि के बीच अटूट संबंध का एक सुंदर उत्सव है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के इस संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कार्यक्रम युववाणी की प्रस्तुति होगी शाम 5:35 पर। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी लोक गीत। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी की प्रस्तुति होगी शाम 6:10 पर। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास की प्रस्तुति होगी शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र। समय होगा शाम 7:25।

हेलो मनपसंद, आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से हम प्रस्तुत करेंगे शाम 7:50 पर, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से हेलो मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग हम प्रस्तुत करेंगे रात्रि 8:15 से। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान की प्रस्तुति होगी रात्रि 8:30 पर। रात्रि 8:45 पर सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आज आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:15 पर सजेगी गजलों की महफिल। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

गाय फिल्म हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग की प्रस्तुति होगी रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम के आखिर में रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

हे महावीर बजरंग एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे अरविंद सिंह और सौम्या वर्मा की आवाज़ों में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में दोस्तों आइए शबाब साबरी को सुनते हैं।

जय हो बजरंग बली। अब आइए सुनते हैं अविनाश करण की आवाज में ये भजन। लेकिन इससे पहले सुनते हैं कुछ संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
1: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वां दीक्षांत समारोह के अवसर पर अपन संबोधन में कहलन हा कि हर पीढ़ी अपन समय के खास चुनौती के सामना करेले और अपन राष्ट्रीय जिम्मेदारी के निभावेले। प्रधानमंत्री कहले कि देश में नया क्षेत्रन के विकास से युवा लोगन खातिर नया अवसर बन रहल बा। उ सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसन क्षेत्रन के उदाहरण देत कहले कि भारत सब क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने के दिशा में काम कर रहल बा। पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सत्र 2023-25 के छात्रन के दीक्षांत समारोह आज पटना विमेंस कॉलेज में आयोजित कैल गेल। समारोह के दौरान राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन छात्र छात्रा लोग के स्वर्ण पदक से सम्मानित कैले, जेमे 28 गो छात्रा और 10 गो छात्र शामिल रहलन। इनके अलावा 1305 स्नातकोत्तर छात्रन और 155 PhD शोधार्थी लोग के भी उपाधि प्रदान कैल गेल। ये अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीतामढ़ी जिला में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला मिल्क पाउडर संयंत्र और मत्स्य जीरा बैंक के प्रजनन काम के उद्घाटन कैले। ये दौरान मुख्यमंत्री जिला में विभिन्न विकास योजना के शुरुआत भी कैले। इससे पहले श्री चौधरी पुनौरा धाम पहुंचलन और माँ जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कैले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के बापू सभागार में आयोजित मानव तस्करी विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के सम्मेलन के उद्घाटन कैले। ये सम्मेलन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रतिनिधि शामिल बाड़न सन। अपन संबोधन में मुख्यमंत्री कहले कि राज्य में मानव तस्करी के लेके सरकार जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम कर रहल बिया। वो कहले कि गुमशुदा लैकन के तलाश और मानव तस्करी रोके पर सरकार के पूरा ध्यान बा। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए अमानुल्लाह, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव रंजन, गृह विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोगन उपस्थित रहलन।

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात कैले। श्री कुमार पत्रकार लोगन से बातचीत में कहलें कि बिहार के हेल्थ केयर सेक्टर में हो रहल काम, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और रेफरल व्यवस्था में सुधार के पहल पर चर्चा भइल। सूचना और प्रसारण मंत्रालय राज्यन के मुख्य सचिवन और आपदा प्रबंधन विभागन से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रन में नया सामुदायिक रेडियो केंद्रन के स्थापना बढ़ावे देवे के निर्देश देले बा। लोकसभा में एगो सवाल के जवाब में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन कहले कि प्राकृतिक आपदा और आपात स्थिति के दौरान स्थानीय भाषा में समय पर और भरोसेमंद जानकारी पहुंचावे में सामुदायिक रेडियो केंद्रन के महत्वपूर्ण भूमिका होला। भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई कहले बा कि यूपीआई के माध्यम से कइल जाए वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ता लोग खातिर मुफ्त हुई। व्यापारियन से डिजिटल भुगतान स्वीकार करे खातिर भी कौनो शुल्क ना लिहल जाए। परिषद के अनुसार व्यापारियन और भुगतान सेवा प्रदाता के बीच होखे वाला व्यावसायिक लेन देन खातिर कौनो प्रकार के शुल्क के भुगतान उपभोक्ता लोग के ना करे के परी। देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के काल से शुरुआत हो रहल बा। साल 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ई अभियान शुरू भइल रहे। एकर उद्देश्य बा राष्ट्रीय ध्वज के साथ नागरिकन के अटूट और भावनात्मक रिश्ता स्थापित कल जाओ। ई अवसर पर पूरा प्रदेश में विभिन्न स्थानन पर विशेष कार्यक्रमन के शुरुआत हुई जे 17 अगस्त तक चली। पुणे में 12 से 23 अगस्त तक आयोजित होके वाला 16वां हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल प्रतियोगिता खातिर बिहार टीम के घोषणा कर दिया गया बा। कप्तान सपना कुमारी के नेतृत्व में 17 सदस्यीय दल आज पुणे खातिर रवाना भइल। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्रन शंकरन बतौले कि टीम में 2 गोलकीपर, 6 डिफेंडर, 5 मिडफील्डर और 4 फॉरवर्ड शामिल बाड़े। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा वाणी।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम में आज बातें करेंगे हिंदी साहित्य के महान कथाकार भीष्म साहनी जी पर, जिनका एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी भी है। बात करेंगे काकोरी के शहीदों को प्रणाम करेंगे, उनको समर्पित करेंगे आज का ये कार्यक्रम, और अलावे इसके हिंदी फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार भीष्म साहनी जी को याद करते हैं और उनके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान रचनाकार को याद करने का दिन है आज, जिनकी कलम ने इतिहास के दर्द को महसूस किया, आम आदमी के जीवन को आवाज़ दी और इंसानियत को साहित्य का सबसे बड़ा धर्म माना। आज 8 अगस्त है, हिंदी के महान कथाकार और नाटककार भीष्म साहनी की जयंती है। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर अध्यापन, पत्रकारिता, रंगमंच तथा साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। वे प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे, लेकिन भीष्म साहनी की असली पहचान बनी उनकी संवेदनशील और मानवीय लिखनी से। वे ऐसे लेखक थे जिन्होंने

उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, उनके लिए साहित्य समाज को समझने, मनुष्य के दुख दर्द को पहचानने और इंसानियत की आवाज़ को मजबूत करने का माध्यम था। उनकी रचनाओं में आम आदमी दिखाई देता है, उसकी खुशियां, उसकी परेशानियां, उसके संघर्ष और उसके सपने। भीष्म साहनी की सबसे चर्चित कृतियों में उनका उपन्यास तमस विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विभाजन की त्रासदी और उसके कारण पैदा हुए सामाजिक तनाव को केंद्र में रखकर लिखा गया यह उपन्यास हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। तमस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तमस केवल एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं करता, यह हमें उस दौर के सामान्य लोगों के जीवन और उनके सामने खड़ी मानवीय त्रासदी को समझने का अवसर देता है। भीष्म साहनी की विशेषता यह थी कि वे किसी घटना को केवल ऊपर से देखकर नहीं लिखते थे, वे उसके भीतर मौजूद इंसानी भावनाओं को पकड़ते थे। भीष्म साहनी जी की रचनाओं में झरोखे, कड़िया, वसंती, मायादास की माड़ी, कुत्तों और नीलू नीलिमा नीलोफर जैसे उपन्यास शामिल हैं। उन्होंने कहानियां भी लिखीं और भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, वांगचू तथा पाली जैसे कहानी संग्रह हिंदी साहित्य को दिए। नाटक के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। हानुष माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में और मुआवजे उनके चर्चित नाटकों में शामिल हैं। उनकी रचनात्मकता केवल लेखन तक सीमित नहीं थी, बल्कि रंगमंच से उनका गहरा जुड़ाव रहा और उन्होंने अभिनय तथा नाट्य गतिविधियों में भी भाग लिया। इप्टा यानी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से उनका संबंध भी रहा है। श्रोताओं, भीष्म साहनी की भाषा की सबसे बड़ी खूबी थी उसकी सहजता। वे कठिन शब्दों के पीछे नहीं भागते थे, उनकी भाषा आम जीवन के करीब थी। यही कारण है कि उनके पात्र हमें किताब के पन्नों पर अपने बने हुए काल्पनिक लोग नहीं लगते, बल्कि हमारे आसपास के परिचित मनुष्य जैसे महसूस होते हैं। उनकी कहानियों में छोटी छोटी घटनाओं के भीतर बड़ी मानवीय सच्चाइयां छिपी होती हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि समाज में चाहे कितनी भी मतभेद हों, अंततः सबसे महत्वपूर्ण चीज है मनुष्य और उसकी इंसानियत। भीष्म साहनी का साहित्य हमें इतिहास से भी जोड़ता है और वर्तमान से भी। उन्होंने अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को करीब से देखा था। विभाजन का अनुभव उनके जीवन और साहित्य दोनों पर गहरा प्रभाव छोड़ गया है, लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को केवल शिकायत में नहीं बदला, उन्होंने उसे साहित्य में बदलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी और सीख बना दिया। उनका संदेश मानो यही था कि नफरत की आग में सबसे पहले इंसानियत जलती है, इसलिए उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक लगती हैं। साहित्य में भीष्म साहनी का योगदान अनेक विधाओं में फैला हुआ है, उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथा और अनुवाद। उनकी आत्मकथा आज के अतीत भी उनके जीवन और समय को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने रूसी साहित्य के अनुवाद के माध्यम से भी हिंदी पाठकों को समृद्ध किया। उनके साहित्य योगदान को अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और वर्ष 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन किसी लेखक की सबसे बड़ी पहचान पुरस्कार नहीं होती, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पाठकों के दिल में जीवित रहना, और भीष्म साहनी आज भी जीवित हैं। दोस्तों, अपनी कहानियों में, अपने पात्रों में, अपने नाटकों में और सबसे बढ़कर उस मानवीय दृष्टि में जो उनकी रचनाओं की आत्मा है। 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी साहित्यिक यात्रा वहीं समाप्त नहीं हुई। उनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं, मंचित होती हैं और नई पीढ़ियों को सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हुए हम यही कह सकते हैं कि भीष्म साहनी ने शब्दों को केवल

कागज पर नहीं उतारा, उन्होंने शब्दों में मनुष्य को और उसके चेहरा को देखा है। उन्होंने इतिहास के अंधेरे को देखा, लेकिन साहित्य के माध्यम से इंसानियत की रोशनी तलाशते रहे। और अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत।

दोस्तों आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। तो आइए अब इस कार्यक्रम में याद करते हैं काकोरी के शहीदों को। भारत की आज़ादी की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि यह त्याग, साहस और बलिदान की भी कहानी है। इस महान स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत वीरों ने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही अमर क्रांतिकारियों में काकोरी कांड के वीर शहीदों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख जाता है। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी के पास क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खजाने को ले जा रही ट्रेन को रोककर सरकारी धन अपने कब्जे में लिया। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं था, बल्कि उस धन का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने के लिए करना था। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया और पूरे देश में क्रांतिकारियों के साहस की चर्चा होने लगी। काकोरी कांड से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे महान देशभक्त शामिल थे। इन वीरों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना भारत माता की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। रामप्रसाद बिस्मिल केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक महान कवि और देशभक्त भी थे। उनके भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने की अद्भुत भावना थी। अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल की मित्रता इस बात का सुंदर उदाहरण थी कि देश की आज़ादी के लिए सामने धर्म और जाति की दीवारें कितनी छोटी थीं। दोनों ने मिलकर यह संदेश दिया कि भारत की असली ताकत उसकी एकता में है। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी के क्रांतिकारियों को कठोर सजा सुनाई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। इसके बाद 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी दे दी गई। उनके बलिदान ने देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की लौ को और प्रज्वलित कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग, साहस और कर्तव्य में दिखाई देता है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, अपने अधिकारों के साथ जीवन जीते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पाते हैं, तब हमें उन वीरों को अवश्य याद करना चाहिए जिन्होंने इस स्वतंत्रता की नींव अपने बलिदान से मजबूत की। तो आइए काकोरी के उन अमर शहीदों को शत शत नमन करें और संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और सम्मान को हमेशा बनाए रखेंगे। काकोरी के अमर शहीदों को कोटि कोटि नमन। भारत माता के उन वीर सपूतों को शत शत प्रणाम। उनका साहस हमारी प्रेरणा है, उनका बलिदान हमारी विरासत है और उनका सपना एक स्वतंत्र, मजबूत और एकजुट भारत हमारी जिम्मेदारी है। और आइए

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

भारत सिंह भारती और उनके साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये भोजपुरी लोकगीत। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। मैं हूं संजय किशोर।
4: और मैं हूं प्रिया। तो किसान वाणी कार्यक्रम में संजय जी, सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताएं कि आज के अंक में क्या क्या प्रसारित होने वाले प्रमुख विषय हैं।
3: जी, जरूरी है कि हम पहले जान लें कि आज हमारे इस अंक में किन किन विषयों पर हम बात कर रहे हैं, तो बताइए।
4: हम जानेंगे धान का फुदका कीड़ा, ये कैसे लगता है और इसे किस तरीके से पहचान सकते हैं, इसके लक्षण के बारे में और किस तरीके से इसका बचाव किया

0: जा सके।
1: और साथ ही हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में।
0: वहीं हम बात करेंगे मशरूम के जो किसान हैं उनके बड़े ही फायदे के बारे में, जो कि बिहार सरकार ने उनको ये सौगात दिया है। अभी फिलहाल उस पे हम विराम रखते हैं
1: और साथ ही हम आपको लोकगीत भी सुनवाएंगे
0: और साथ ही साथ आप सभी किसान भाइयों और बहनों के फायदे के लिए एक वार्ता भी जरूर सुनवाएंगे जिसका विषय है पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग।
1: कुछ नसीहत होगी आपके लिए और समसामयिक सूचना भी हम आपको देंगे।
0: तो मौसम को भला कैसे भूल सकते हैं, तो मौसम की जानकारी भी आपको जरूर देंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कृषि चर्चा की, जिसकी हमने बात की धान का फुदका कीड़ा, जिसे हम लीफ हुपर भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि ये लीफ हुपर होता कैसे है, वो दिखने में कैसा होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से वो धान के जो फसल है उसे नुकसान पहुंचाता है।
1: ये छोटा भूरे रंग का या हरे रंग का कीट होता है, यह पौधे के तने के निचले हिस्से से रस चूसता है। तो आवश्यक है कि इस कीट के होने वाले नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले इसके लक्षण को हम समझ लें।
0: ये जो लक्षण है इसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती है, पौधे कमज़ोर होकर के सूखने लगते हैं, वहीं अधिक प्रकोप होने पर खेत में जगह जगह सूखे हुए हिस्से दिखाई देते हैं, जिसे हॉपर बर्न कहा जाता है।
1: तो इससे बचाव के लिए हमारे जो किसान भाई और बहन हैं वो कुछ विशेष बातों पर ध्यान रख सकते हैं। खेत में लगातार अधिक पानी न रखें, आवश्यकता के अनुसार जल का प्रबंधन करें या जल की निकासी अगर संभव हो तो वो जरूर करें।
0: खेत में नाइट्रोजन उर्वरक का संतुलित उपयोग करें, वहीं नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करें।
1: और यदि प्रकोप अधिक हो जाए तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अनुशंसित कीटनाशक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं।
0: तो समय पर पहचान और उचित प्रबंधन से धान की फसल को फुदका कीट से बचाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई धान के फुदका कीड़ा की।
1: और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। यह भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को खेती से जुड़े खर्चों में सहायता के लिए हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
0: वहीं ये राशि साल में 3 किश्तों में दी जाती है, प्रत्येक किश्त 2,000 की होती है। ये पैसा सीधे किसान भाइयों एवं बहनों के बैंक खाते में भेजा जाता है और इसका माध्यम है DBT।
1: इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय में सहयोग देना और खेती के लिए आवश्यक खर्चों में मदद करना। अब बात इस योजना के लाभ किन किसानों को मिल सकता है इसके बारे में आपको बता दें।
0: तो बता दें कि आवेदक भारत का किसान होना चाहिए, किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए, वहीं आधार संख्या और बैंक खाता होना आवश्यक है। EKYC पूरा होना चाहिए, यानी कि आपको KYC कराना बहुत ही जरूरी है ताकि किश्त का भुगतान हो सके।
1: और अब बात करते हैं मशरूम के उत्पादन करने वाले किसानों के बारे में। बिहार सरकार की पहल से अब तक मशरूम की खेती की जा रही है, कम लागत में बेहतर कमाई का ये बहुत ही अच्छा जरिया है।
0: मशरूम किसानों के लिए एक खुशखबरी भी है, यानी वो किसान जो कि मशरूम की खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही कहते हैं ना बम्पर धमाका है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार में मशरूम की खेती को कृषि श्रेणी में शामिल किए जाने से बिजली दरों में राहत का रास्ता खुला है और ये बहुत अच्छी बात है ना संजय जी।
1: जी बहुत ही अच्छी बात है कि किसानों के लिए हर तरह से हमारी सरकार प्रयास कर रही है।
0: और ये जो प्रयास है ना ये कहीं ना कहीं एक मानसिक सुकून देता है।
1: जी बिल्कुल।
0: और मानसिक सुकून की जहाँ तक बात करें ये सुकून सिर्फ बातचीत से तो पूरी नहीं हो सकती।
1: तो अब क्या इरादा है?
0: इरादा तो मेरा बिल्कुल वही है जो वादा किया है हमने अपने श्रोताओं से। सावन का महीना आते ही पूरी प्रकृति हरियाली का चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर पड़े झूले रिमझिम फुहारे और मन को छू लेने वाली लोक धुने इस मौसम की पहचान बन जाती है।
1: जी जी प्रिया जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप लोकगीत सुनाने वाली हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनते हैं, क्योंकि मैंने झूले की बात कही तो क्यों ना झूला झूला जाए।
1: चलिए एक झूला गीत ही सुन लेते हैं, इसके माध्यम से हमारे किसान भाई भी झूल लेंगे, हम भी झूल लेंगे। तो सुनते हैं ये झूला गीत, कलाकार हैं प्रिया।

0: ये गीत तो प्रिया जी बहुत ही प्यारा था, और इस प्यारे से गीत के बाद हम अब अपने किसान भाइयों के लिए क्या बताने वाले हैं?
1: देखिए, खेती तो है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई और बहन है, खेती के साथ ही साथ पशुओं का पालन भी करते हैं। तो पशुओं का जब पालन आप कर रहे हैं, तो ठीक अपनी सेहत का जिस तरीके से हम ध्यान रखते हैं, वैसे ही पशुओं के भी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है।
0: जाहिर सी बात है कि बरसात का समय है और पशुओं में कोई ना कोई रोग लग ही जाता है, और इस रोग से बचने के संबंध में कुछ बताना चाह रहे हैं आप, तो मेरा ख्याल है कि पशुओं में जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा हो जाता है।
1: बिल्कुल, तो इसकी जानकारी हमसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ही देंगे, तो सुनते हैं इस वार्ता के माध्यम से। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग, वार्ताकार हैं डॉक्टर अजीत कुमार।
2: भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। शहरीकरण होने के कारण कृषि योग्य भूमि कम होते जा रहे हैं, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके चलते लोग पशुपालन को

व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। पशुपालन के द्वारा किसानों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक आहार जैसे दूध, मांस आदि मिलता है। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर किसान स्वयं को एवं अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। पशुओं के दूध उत्पादन की क्षमता, प्रजनन क्षमता, कार्य करने की क्षमता एवं मांस उत्पादन क्षमता पर पशुओं को दिए जाने वाले आहार के अलावे पशुओं में होने वाले जीवाणु, विषाणु एवं परजीवी जनित रोगों का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि पशुपालक को पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी हो तो पशुपालक तुरंत रोकथाम के उपाय को अपनाकर एवं पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने पशुओं के उत्पादक क्षमता में होने वाले अत्यधिक हानि को कम कर सकते हैं एवं अपने पशु को भी अकाल मृत्यु से रोक सकते हैं। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग एक अत्यंत संक्रामक विषाणु जनित रोग है। खुरपका मुंहपका रोग, जिसे अंग्रेजी में फूट एंड माउथ डिजीज या FMD के नाम से जाना जाता है, यह एक संक्रामक विषाणु जनित अर्थात वायरस के द्वारा होने वाला रोग है जो प्रायः खुरबटे या कह सकते हैं खुरफटे पशुओं अर्थात जिस पशु का खुर दो भाग में बटा होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर तथा अन्य जंगली पशुओं को काफ़ी प्रभावित करता है। खुरपका मुंहपका रोग काफ़ी तेजी से फैलने वाला एक बीमारी है जो किसी भी उम्र के पशुओं एवं उनके बच्चों में हो सकता है। इस रोग को खुरहा, भंजहा, FMD, चमसिया, चपचपिया, आभा आदि क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का कारण एक अत्यंत सूक्ष्म प्रकार का RNA विषाणु है जो पिकोरना समूह के अंतर्गत आता है। इस विषाणु के 7 प्रकार और अनेकों प्रकार हैं, जिसमें AOC, Asia 1, Asia 2 एवं SAT मुख्य हैं। हमारे देश में AOC एवं Asia 1 विषाणु के प्रकार के द्वारा खुरपका मुंहपका रोग होता है। इस रोग के विषाणु का प्रसार संक्रमित पशु के सांस एवं रोगी पशु का जूठा आहार या चारा तथा पानी के ग्रहण करने पर दूसरे पशु के शरीर में इस रोग के विषाणु प्रवेश कर रोग पैदा करता है। संक्रमित पशु को देखरेख करने वाले मनुष्य के शरीर एवं कपड़ों के द्वारा भी इस रोग के विषाणु का फैलाव होता है। इस रोग के होने में नम वातावरण, पशु दुर्बलता, संक्रमित पशु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आसपास के क्षेत्रों में रोग का प्रकोप का इतिहास आदि सहायक कारक जो रोग के तेजी से प्रसार में मदद करता है। खुरपका मुंहपका रोग से प्रभावित पशु में सर्वप्रथम तीव्र बुखार 104 डिग्री से 105 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। संक्रमित पशु के जीभ, मसूड़ों, नथनों, होठों, तालू आदि पर छाले हो जाते हैं। पशु खाना पीना कम कर देता है। छाले होने के कारण संक्रमित पशु के मुंह से झागदार लार गिरता है एवं होठों से चपचपाहट की आवाज़ आती है। खुरों के बीच भी छाले हो जाने के कारण पशु लंगड़ा कर चलता है और बार बार अपना पैर जमीन पर झटकता है। इस रोग के होने के कारण दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में अत्यधिक कमी हो जाती है। गर्भधारण किए हुए पशुओं में गर्भपात होने की पूरी संभावना इस रोग के होने के बाद होती है। थनों पर छाले पड़ जाने पर दुधारू पशुओं में थनैला रोग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। खुरपका मुंहपका रोग की पहचान पशुपालक प्रभावित पशु के मुंह एवं खुरों के बीच घाव एवं अन्य लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। चूँकि यह एक विषाणु जनित छुआछूत का रोग है जिसका कोई सटीक इलाज नहीं है, अतः रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। पशुओं को देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। मुंह में बने घावों के साफ करने में 2% पोटासियम परमैंगनेट के घोल या बोरिक एसिड एवं ग्लाइसरीन या बोरेक्स एवं नारियल तेल या शुद्ध

0: एलम के घोल आदि का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले पर बोरोग्लिसरीन हल्दी युक्त घी या मक्खन लगाने से मुंह में चिकना हो जाता है और पशु को चबाने में आराम होता है। खुरों एवं थनों पर बने घाव को 1% पोटासियम परमैंगनेट या फिनाइल के घोल से धोना चाहिए एवं फिर जीवाणुनाशक स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2-3 बार धोना लाभदायक होता है। खुर के घावों को शीघ्र ठीक करने के लिए पशु को 2% तूतिया के घोल से धोना चाहिए तथा पैर में पड़े कीड़े के होने से बचाने के लिए आइवरमेक्टिन नामक सुई का 0.2 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर वजन के आधार पर त्वचा में लगाना चाहिए। मुंह, पैर अथवा थन के घावों के इलाज के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अथवा एनरोफ्लोक्सासिन की सुई 5 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर वजन के आधार पर मांस में 3 से 5 दिन तक पशु चिकित्सक के सलाह पर लगवानी चाहिए। अति तीव्र अवस्था में बुखार की दवा तथा कभी कभी सीरा मार्ग से पानी भी चढ़ाया जा सकता है। बी कम्प्लेक्स और खनिज मिश्रण सहायक दवा के रूप में देने से रोग को कम समय में ठीक किया जा सकता है। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाले लार एवं पैर के घाव के संसर्ग में आने वाले वस्तुओं, पुआल, भूसा आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ देना चाहिए। रोगी पशुओं को खाने में नरम एवं आसानी से पचने वाले आहार जैसे हरा चारा या घास देनी चाहिए। मुंह में घाव रहने के कारण पशु को कड़ा आहार देने पर खाने में दर्द होता है, अतः ऊर्जा युक्त द्रव्य आहार जैसे गुड़, छोया का घोल पिलाना फायदेमंद साबित होता है। जिस जगह पर रोगग्रस्त पशु को रखें वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दें। रोगग्रस्त दुधारू पशुओं से दूध निकालने के बाद दूध दुहने वाले भी अपने हाथ एवं मुंह को साबुन से धो लेना चाहिए। रोगग्रस्त पशु का इलाज सदैव पशु चिकित्सक से सलाह लेकर करनी चाहिए। इस रोग में यद्यपि व्यसक पशुओं की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन रोग के ठीक होने के बाद पशु के शरीर पर के बाल एवं खुर बड़े बड़े हो जाते हैं। पशु के धूप सहने की क्षमता घट जाती है एवं दुधारू पशु का दूध उत्पादन रोग होने के पहले के जैसा नहीं हो पाता है। प्रभावित पशु स्वस्थ होने के उपरांत भी महीनों हाफते रहता है। इन सब कारणों से पशुपालक को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। चूंकि यह एक विषाणु जनित रोग है जिसकी कोई विशिष्ट चिकित्सा नहीं है, अतः इस रोग के इलाज की अपेक्षा बचाव पर ज़्यादा ध्यान देकर खुरपका मुंहपका रोग से पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकते हैं। टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव के लिए सर्वोत्तम उपाय है। खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु बछड़े को सर्वप्रथम 4 माह की उम्र पर प्रथम टीका लगवानी चाहिए, फिर उसके बाद प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर टीका फरवरी एवं सितंबर के महीने में लगवाते रहें। अगर बगल वाले गांव में खुरपका मुंहपका रोग फैलने की सूचना मिले तो अपने पशुओं को बाहर चरने के लिए नहीं जाने देना चाहिए। इसके अलावे बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देनी चाहिए। इस रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु को नहीं खरीदना चाहिए। पशुपालक पशुशाला को सदैव साफ सुथरा रखनी चाहिए। संक्रमित पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे खनिज एवं विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से पशु को मिलती रहे। इस बीमारी से मरे पशु को इधर उधर ना फेंकें, बल्कि जमीन में गहरे गड्ढे में मृत पशु को डालकर मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देनी चाहिए और समय समय पर पशु चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, अभी हमने इस वार्ता के माध्यम से जाना कि किस प्रकार पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग से उन्हें बचाया जा सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर अजीत कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम अपनी तरफ से भी संजय जी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई नसीहत जरूर दे दें अपने किसान भाइयों और बहनों को।
2: जी, हमारा तो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लाभ उन्हें हो, तो जो भी नसीहत आप देना चाहती हैं बताइए, हमारे किसान भाई सुनेंगे।
1: तो पशुपालन की हमने बात की और खुरपका मुंहपका की ही बात की, तो क्यों ना यहीं से शुरुआत करते हैं। पशुओं में PPR, FMD एवं HS यानी गलघोटू रोगों का खतरा अधिक है। पशुओं का

0: समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें स्वच्छ एवं सूखा रखें तथा बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की आवश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलघोंटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगाए हो तो इस माह में अवश्य लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें।
1: इसके साथ ही सब्जियों से संबंधित कुछ और भी नसीहत हम देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को। खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 250 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान यानी कि जब बारिश हो रही है, इस दौरान नर्सरी को खरपतवार से मुक्त रखें। जहां आवश्यकता हो वहां समय पर निकाई गुड़ाई करें। तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट लगाएं। मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें।
0: तो ये तो हमने अपनी नसीहत आपको दी, वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, ये कैसे जाने। तो इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है
1: और इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण पूर्व हवा चलने का अनुमान है।
0: तो ये तो हमने जानकारी दी मौसम की और मौसम के साथ ही साथ हमारा ये जो समय हो चला है वो समाप्त होने की तरफ है।
1: तो अब हम चाहेंगे कि किसान भाई जो इस कार्यक्रम से लाभ ले रहे हैं या उनके मन में किसी प्रकार का कोई विचार आ रहा है, कोई प्रश्न है, तो इसके लिए हमारे पास एक फीडबैक का पता है
0: और वो पता है हमारा ईमेल आईडी airpatna@gmail.com।
1: तो इसी के साथ मुझे यानी संजय किशोर को
0: और मुझे यानी प्रिया को
1: आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: खेतों की आवाज, देश की पहचान।
3: कहो गिरधारी भाई, गए थे मक्का बेचने, हाई का ले आई इतनी बोरियों में?
4: खाद है सरजू भाई, यूरिया, डीएपी, पोटास, यही सब। हर बार खेत में खाद बढ़ा कर डालो और उपज जस का तस। घाटे का सौदा है खेती।
3: बिल्कुल गलत, अपने खेत को बंजर मत होने दो। मेरी मानो, मिट्टी की जांच करवा कर उसका हेल्थ कार्ड बनवा लो।
4: लेकिन उससे क्या फायदा होगा?
3: अरे भाई, तुम्हारे खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी अथवा अधिकता है इसकी जानकारी मिल जाएगी और उसी के अनुसार निर्धारित मात्रा में तुम्हें खाद उर्वरकों की जरूरत होगी। पैसे भी बचेंगे और मिट्टी की सेहत भी बरकरार रहेगी।
4: लेकिन इसमें बड़ी झमेला है।
3: अरे नहीं, बिल्कुल आसान है। अपने प्रखंड कार्यालय या कृषि सलाहकार अथवा जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला से संपर्क करो, बस।
4: किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं।
3: सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं। कृषि लागत में कमी लाकर मिट्टी सुरक्षित रखते हुए लाभ का दायरा बढ़ाएं।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।

कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे अगले प्रसारण की कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

दामाद जी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज़ में। विनय बिहारी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लाल सिन्हा ने। श्रोता दोस्तों, सांझ गीत कार्यक्रम में अब आइए सुनवा रहे हैं निरहुआ मेल फिल्म का एक गीत, आवाज़ मोहन राठौर की है। प्यारे लाल यादव हैं गीतकार और संगीतकार हैं राजेश रजनीश।

निरहुआ मेल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहन राठौर की आवाज़ में। प्यारे लाल यादव के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रजनीश ने। अगला गीत हम आप तक पहुंचाएं इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सुन, सोचतानी की काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई
2: तो रोकले के बा।
1: रोकले तो कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत की कैसे मदद मांगी।
2: हमरा से
1: तुहरा से तो बताओ।
2: आकाशवाणी बाना, हम सुनले बानी की आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
1: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा?
2: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से वही जगह पहुँच जाये।
1: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे हुई?
2: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 8700014242।
1: ओ, 8700014242।
2: हाँ।
1: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर।

आपन भइल पराया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सर्वेश मिश्रा और सुचिता ब्यास की आवाज़ों में। एमडी ब्यास के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी संतोष सुमन ने।

इसी के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी और आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर। जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित 23 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए प्रविष्टि के अनुसार आज अब तक जिला मुख्यालय स्तर पर कुल 17 अधिकारियों ने 26 नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया। जिले के कुल 11 प्रखंडों में 16 अधिकारियों की उपस्थिति रही, जहां 44 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी तंत्र को सीधे जनता के द्वारा द्वार तक ले जाना है। जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इन मुलाकातों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और विकास योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सकेगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रेषित पवित्र कलश रोहतास जिले के सासाराम समाहरणालय पहुंचा। समाहरणालय परिसर में जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में पवित्र कलश का श्रद्धापूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, जिला कला एवं सांस्कृतिक पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पत्रकार बंधु, जिले की नाट्य टीम के कलाकार, जन प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने एवं नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मेरा युवा भारत रोहतास द्वारा आज दिनांक 8/8/2026 को सासाराम स्थित एसपी जैन कॉलेज ऑडिटोरियम में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा को शिक्षा, कौशल विकास, खेल, रोजगार, सामाजिक सेवा एवं राष्ट्र निर्माण जैसे

सकारात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान नशे के स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए लोक नृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, माइम, चित्रकला, भाषण, शॉर्ट फिल्म, रील, स्लोगन, लेखन एवं स्लैम पोएट्री जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नशा मुक्ति विषयक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्प्रभावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यालय जिला खेल पदाधिकारी रोहतास, प्रेस विज्ञप्ति, खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारे शारीरिक शिक्षा। खेल विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2026-27 संभवतः माह अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। जिला विकास की अवधारणा को उद्देश्य तक पहुंचाने हेतु खेलों के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना अनिवार्य है, जिसमें शारीरिक शिक्षकों व शारीरिक शिक्षिकाओं तथा शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसी परिप्रेक्ष्य के तहत डेहरी अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड तथा नौहट्टा, रोहतास, तिलौथू, डेहरी या कोढ़ी गोला के सभी कोटि के विद्यालयों में पदस्थापित शारीरिक शिक्षक और शिक्षिकाओं का दो दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम आज सरस्वती विद्यानिकेतन मॉडल स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय तिलौथू में संपन्न हुआ। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदन सृजन करने हेतु दिनांक 10/8/2026 से 31/8/2026 रविवारीय एवं बिहार सरकार के राजपत्रित अवकाश को छोड़कर तक जिला उद्योग केंद्र रोहतास के सभागार में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में इच्छुक आवेदक कार्यालय में आकर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। विदित हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना अंतर्गत रोहतास जिला का भौतिक लक्ष्य की कुल 339 है। शिविर में उपस्थित आवेदकों का आवेदन भारत ससमय ऋण स्वीकृति भुगतान की प्रक्रिया हेतु संबंधित बैंक शाखा को अग्रसारित किया जाएगा। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में।

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना पूरा पूरा हम आपको नहीं सुनवा सके, समय अभाव के चलते इसका हमें खेद है। वक्त मिलने पर इस गाने को पूरा पूरा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कृपया हमारे प्रसारण को निरंतर सुनते रहिए। और अब इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले में मिल्क पाउडर संयंत्र और मत्स्य जीरा बैंक का उद्घाटन किया। प्रतिवर्ष 5 करोड़ मछली जीरा का होगा उत्पादन। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था को करेगी मजबूत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दिनारा के योगिया गांव पहुंचे, मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और फिडे विश्व एमएचओ रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में राज्य के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क पाउडर संयंत्र और मत्स्य जीरा बैंक के उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ भी किया। एक रिपोर्ट।
1: सीतामढ़ी जिले के राघवपुर बखड़ी में मत्स्य बीज प्रक्षेत्र ब्रूड बैंक की शुरुआत हुई। इसके निर्माण में 10 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत आई है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य सरकार के सहयोग से विकसित की गई है। इसके निर्माण में भुवनेश्वर का सीफा और ICAR ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया है। 38 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में 60 तालाब है। इस प्रक्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ स्पॉन उत्पादन होगा। इसमें जयंती रेहू, अमृत कतला और अमोर कार्प की प्रजातियां शामिल है। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुभाष चंद्र यादव का कहना है कि यह ब्रूड बैंक अंतर प्रजनन की समस्याओं को दूर कर राज्य को गुणवत्तापूर्ण और रोग मुक्त मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसमें कतला, रोहू और अमूर कार्प जैसी प्रजातियां की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही यह केंद्र राज्य की सभी हेचड़ियों को प्रमाणित बुरड और स्पॉन की आपूर्ति करेगा, जिससे सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण और मुजफ्फरपुर जिलों सहित पूरे राज्य के मत्स्य पालकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार।
0: इसके पूर्व श्री चौधरी पुनौरा धाम पहुंचे और मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही परिसर में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर 2028 तक मंदिर का निर्माण पूरा कर मां जानकी को भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में मानव तस्करी को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। पटना के बापू सभागार में आयोजित मानव तस्करी विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौधरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गुमशुदा बच्चों की तलाश और मानव तस्करी रोकने पर सरकार का पूरा ध्यान है।
2: एक एक महीने में लगभग 1200 से अधिक बच्चों की रिकवरी की जा रही है, तो इन चीजों को और बढ़ाने के हम जरूर इंश्योर करते हैं कि आपके सुझाव पर पूरी तरह बिहार सरकार काम करके बिहार के बच्चे और बिहार से जो गायब हुए लोग हैं उनको रिस्टोर करके उनको पुनर्वासित करने का भी काम लगातार करता रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से

0: आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सत्र 2023-25 के छात्रों का दीक्षांत समारोह आज पटना विमेंस कॉलेज में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इनमें 28 छात्राएं और 10 छात्र शामिल हैं, जबकि 1305 स्नातकोत्तर छात्रों और 155 पीएचडी शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थीं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की। श्री कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा सहयोग के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सशक्त बनाने का प्रयास होगा।
2: शिष्टाचार मुलाकात की और बिहार में जो हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं उनसे अवगत कराने आया हूं कि हम लोग चाहे रेफरल के लिए जो कर रहे हैं या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा है, पीपीवी मोड पे हम कुछ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं।
0: भारतीय भुगतान परिषद पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क होगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद के अनुसार व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक लेनदेन के लिए किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के योगिया गांव में पिछले दिनों हुई मजदूर चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। बाद में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्री यादव ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की।
4: हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली, बात ऐसी से नहीं हुई।

0: पहले बात की है कि पूरा सुरक्षा का इंतजाम जो है उनके परिवार को किया जाए।
1: उन्होंने मृतक के परिवार को भी सुरक्षा देने की मांग की। इस बीच रोहतास के पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपित अजीत तिवारी को गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का शव बरामद करने की कार्रवाई जारी है।
2: हत्या करने के बाद शव लेकर भाग रहे अजीत तिवारी को पीछा करके यूपी पुलिस की मदद गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसको अगर पूछताछ एवं कार्रवाई के लिए वहां से लाया जा रहा है और साथ ही उस छोटापुर नहर के पास SDRF और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव की तलाश की जा रही है।
1: देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान की कल से शुरुआत हो रही है। वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान यह अभियान शुरू हुआ था। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रेरणा का यह अवसर देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए।
3: इस बार देश वंदे मातरम की 150 वर्ष सम्मान के साथ में मना रहे, इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें। वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप में गायन करने के लिए कुछ लोगों को शब्दों की, उसके लिरिक्स को लेकर के, उसके धुन को लेकर के कुछ चुनौती हो सकती थी। हमने तकनीकी के रूप से इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि लोग आसानी के साथ में उसके साथ कराओके को आनंद लेते हुए उसको गा सकते हैं और अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं।
1: इस अवसर पर प्रदेश भर में कल से विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जो 17 अगस्त तक चलेंगे। अभियान को लेकर शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने भी जिलावासियों से इसमें शामिल होने की अपील की है।
4: प्रिय जिलावासियों, हर घर तिरंगा अभियान 2026 दिनांक 9 अगस्त 2026 से 17 अगस्त 2026 तक इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक के घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपना श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट करने का है।
1: प्रदेश में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर और बक्सर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले के सिसवन में सबसे अधिक 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में आयोजित फिडे विश्व एमेच्योर रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। रानी पूजा ने ब्लिट्ज वर्ग और रैपिड वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि ओपन रैपिड वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। इसके साथ ही साकेत कुमार ने ओपन ब्लिट्ज वर्ग में स्वर्ण पदक और ओपन रैपिड वर्ग में रजत पदक जीते। अमन कुमार ने ओपन अंडर 2000 के रैपिड वर्ग में रजत पदक पर कब्जा जमाया। पुणे में 12 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। कप्तान सपना कुमारी के नेतृत्व में 17 सदस्यीय दल आज पुणे के लिए रवाना हो रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि इस चैंपियनशिप के लिए बिहार की महिला हॉकी टीम का चयन राजगीर खेल अकादमी में हुए चयन ट्रायल के आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि टीम में 2 गोलकीपर, 6 डिफेंडर, 5 मिडफील्डर और 4 फॉरवर्ड शामिल हैं। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस ने श्री कृष्णा सेतु के पास वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 33 मवेशियों को जब्त किया। इस मामले में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल को निगरानी विभाग ने 50,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार ये गिरफ्तारी 17 लाख की मशीन उपलब्ध कराने के लिए रिश्वत मांगने पर की गई। शिवहर जिले में गश्ती के दौरान पिपराही थाने की पुलिस जीप अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में वाहन चालक चौकीदार रामजी राय की मौत हो गई, जबकि दारोगा अशोक सिंह समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अररिया जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी विनोद दुल्हन ने स्वीकृत 31 आवेदकों के घर की छत पर 3 दिनों में सोलर पैनल स्थापित करने का

देश अधिकारियों को दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले में मिल्क पाउडर संयंत्र और मत्स्य जीरा बैंक का उद्घाटन किया। प्रतिवर्ष 5 करोड़ मछली जीरा का होगा उत्पादन। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था को करेगी मजबूत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दिनारा के योगिया गांव पहुंचे, मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और फिडे विश्व एमेच्योर रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में राज्य के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और

0: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दिनारा के योगिया गांव पहुंचे, मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और फिडे विश्व एमेच्योर रैपिड और ब्लिट शतरंज प्रतियोगिता में राज्य के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
3: वैशाली जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में 12 अगस्त को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध और प्रभावी तरीके से अभियान के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक शाखाओं को ऋण आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन करने और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है। 17 अगस्त को रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ELC एंड ECINET आयोजित होना है। इसकी तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब के गठन पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि युवाओं को मतदान, निर्वाचन प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत माय भारत पोर्टल पर ऑनलाइन नशा मुक्ति प्रतिज्ञा अभियान शुरू किया गया है। इसके माध्यम से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिले में मिशन मोड में विशेष राशन कार्ड निर्माण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 1,04,750 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई जारी है। महादलित टोलों सहित सभी पात्र लाभुकों तक अभियान का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के पहले 100 दिन पूरे होने के अवसर पर बीते दिनों वैशाली जिला मुख्यालय सहित सभी अनुमंडलों, प्रखंडों और पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने जिले में विकास, सुशासन और जन कल्याण से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: और अब सुनिए पूर्वी चंपारण जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आलोक कुमार का है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं सत्यम कुमार।
4: पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पिपरा कोठी अंचल में 5 एकड़ सरकारी भूमि को 30 वर्षों की लीज पर केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लीज में नवीकरण का विकल्प भी शामिल होगा। रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने राखी भेजने वालों के लिए विशेष पहल की है। रेल डाक सेवा यू मंडल की ओर से अंतरदेशीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाने वाली राखी मेल पर 10% की विशेष छूट दी जाएगी। यह सुविधा 12 अगस्त से प्रभावी होगी। प्रति व्यक्ति अधिकतम 5 राखी मेल स्पीड पोस्ट लेखों पर छूट का लाभ लिया जा सकेगा। लिफाफे पर राखी मेल लिखकर मोतिहारी रेलवे स्टेशन स्थित बुकिंग काउंटर से बुकिंग कराई जा सकती है। काउंटर 24 घंटे खुला रहेगा। जिले में उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक उपलब्ध कराने और शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा गया है। इधर नीलाम पत्रवाद के बड़े बकायादारों के विरुद्ध पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कई बकायादारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए हैं। इनमें जय मां दुर्गा राइस मिल, मन्नू ट्रेडर्स एंड राइस मिल, शिव शक्ति राइस मिल, आर्यनंदिनी राइस मिल, विवेक राइस मिल और अन्नपूर्णा राइस मिल शामिल हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे वैशाली और पूर्वी चंपारण जिले की हलचल।
5: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम।

0: चर्चा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी पटना के साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा में मैं सविता पारीक आपका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आजादी के जश्न से पहले
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद।
3: श्रोताओं नमस्कार, हेलो मनपसंद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त रागिनी। तो प्यार भरा नमस्कार आप सभी को, और चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे श्रोताओं से और लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला कॉल। हेलो मनपसंद।
4: हेलो मनपसंद,
3: कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता राजनगर मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ मैडम।
3: जी कुशेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कुशेश्वर जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र अभी लगभग कितनी है?
4: हमारी उम्र तो 76 है मैडम।
3: अच्छा 76 है, यानी आप आकाशवाणी सासाराम काफी दिनों से सुन रहे हैं?
4: जी हाँ, काफी दिनों ऐसे आकाशवाणी तो 90 साल पूरा हो गया है। आकाशवाणी परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद,
3: और हम भी आप जैसे श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इतनी उम्र के बावजूद समय निकालते हैं और हमें फोन करने की जहमत उठाते हैं। आपको आकाशवाणी सासाराम से इतना प्यार है, तो क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
4: सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा के गीत है ना आपकी पसंद का, जय जय शिव शंकर, वो सुना देते तो अच्छा रहता।
3: जी जरूर सुनवाते हैं आपको जय जय शिव शंकर, आपकी कसम फिल्म से लिया गया ये गीत। इसी गीत को हमारे एक और श्रोता ने भी पसंद किया है, तो आइए पहले उनसे कर लेते हैं ये बातचीत। हेलो मनपसंद।
5: दीदी नमस्कार।
3: नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन साहब बोल रहे हैं?
5: मैं पंचीराम शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील खासी गांव कंठी से।
3: अच्छा जम्मू कश्मीर से आपने फोन लगाया है, क्या हाल चाल है जम्मू कश्मीर का?
5: बहुत अच्छे दीदी जी, आपकी दुआएं हैं।
3: अच्छा तो जम्मू कश्मीर में मौसम तो इस समय काफी खुशगवार होगा?
5: बस थोड़ी हल्की सी फुहार हुई बारिश की, अभी धूप खिली हुई है चारों तरफ।
3: जी आपने हमें इतनी दूर से कॉल किया है, तो क्या आज आपका पसंद है?
5: दीदी जी मुझे आज किशोर कुमार का गाना सुनना है, क्योंकि कल किशोर कुमार का जन्मदिन भी था, तो मुझे वो किशोर कुमार का गाना सुनना है। सावन का महीना भी चल रहा है, तो आपकी कसम फिल्म का जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर।
3: अच्छा आपकी कसम का ये भी गीत है, बहुत ही अच्छा गीत चुना है आपने।
5: कार्यक्रम में मुझे कॉल करके बहुत अच्छा लगा, और मेरे दो तीन साथी है राकेश जी शिमला से और भगवान सिंह परमार जी और बिहार से शेख जफरा सर।
3: अच्छा जम्मू कश्मीर में हम पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश।

हेलो मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इस सप्ताह संसद में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: हवा महल।
1: जंजीरें टूटी और आज़ादी की रोशनी ने हमारे वतन को मुनव्वर किया। ये वो महीना था जब कुर्बानियों की दास्तान ने हकीकत में ढली, जब शहीदों के लहू ने आज़ादी का चिराग रोशन किया और जब ख्वाब हकीकत बनकर हमारे दिलों में उम्मीद की किरण बनकर जगमगाने लगा। हम उन अजीम रहनुमाओं को आज खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने इस आज़ादी के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने जान व माल की कुर्बानी पेश की, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हवाओं में आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ अपने ख्वाब को
2: अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाईं, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक 2 शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप

सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक

पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया।

0: पसंद है आपको?
1: हाँ दीदी, और कैसे दीदी बारिश आपके पास?
0: हम लोग की तरफ तो बारिश बिल्कुल रोज ही हो जा रही है और रिमझिम।
1: अरे वाह वाह, खुश नसीब है तुम।
0: बिल्कुल चारों तरफ हमारे यहाँ हरियाली है और बारिश अच्छी खासी हो रही है। हमारे यहाँ धान के पौधे भी खेतों में लग गए हैं।
1: अरे वाह दीदी, कुछ मित्रों का नाम लेता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल ले लीजिए।
1: गौतम जी राय बोले, तुकाराम जाधव, सुनील झा, भगवान सिंह जी, हमारे राजेंद्र गंगवार जी, शारुण अंसारी जी और दिलीप पहुजा, सोनू जी, तनुश्री सातारा, सभी दोस्तों को और नारायण गायकवाड़।
0: सभी दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए सावन आया बादल छाया।

तो इसी गीत के साथ ही हमारा आज का यह हेलो मनपसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक। तो आप सभी श्रोताओं से हम गुजारिश करते हैं कि जिन श्रोताओं के कॉल आज शामिल हो चुके हैं वो हमें कुछ दिनों तक कॉल न करें। अगले बुधवार को हमारे नए श्रोता इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, हेलो मनपसंद कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमारा रिकॉर्डिंग समय है पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक, और हमारा नंबर है 0618422110। तो इस नंबर पर आप पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक प्रत्येक बुधवार को रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं और अपनी पसंद का गीत प्रत्येक बुधवार को रात 7:50 से रात 8:45 तक सुन सकते हैं। और अब इसी के साथ रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान कहते हैं ना दोस्तों कि कोई भी निर्णय जिंदगी का हो, अगर जिंदगी के बेहतर भविष्य के लिए हो तो जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, और खास करके जब रोजगार की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, कोर्स चुनने की बात हो, तो अपने आप से पूछना चाहिए कि भैया तू किस में जाना चाहता है, कहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तेरा मन किस में लगता है। किसी के कहने से नहीं, खुद के कहने पर विचार करना चाहिए। इसीलिए उड़ान कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे कोर्सेज की जानकारी जो आपके जीवन में स्थायित्व लाएगी, ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ढेर सारा पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ मिलेगा। और जो लोग कहते हैं ना कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, उनको एक करारा जवाब मिलेगा जब आप इन कोर्सेज को कीजिएगा। ढेर सारे कोर्सेज हैं, लेकिन उसमें बीसीए और बीबीए का जो कोर्स है ना, बहुत ही वाइब्रेंट है। जी हाँ, जिसको करके आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। उड़ान कार्यक्रम हर साल इसी समय आता है और युवा साथियों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है। फिर भी हम कहते हैं कि हमारी बातों पर नहीं, अपने आप पर भरोसा कीजिए, R&D कीजिए, तलाशिए कौन से कोर्स, अगर मैथमेटिक्स आपका सही है, अगर फिजिक्स सही है, अगर आपने PCM किया है तो किस कोर्स की तरफ जाएं तो आपके लिए अच्छा करियर होगा। और ये कार्यक्रम हमें आप तक पहुंचाने में वर्षों से मदद कर रहे हैं और ये मदद अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हो रही है। सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हम समाज से कुछ लिए हैं तो समाज को कुछ हम दें, और ऐसे में उड़ान कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया आर्किड बिजनेस कॉलेज ने। आर्किड बिजनेस कॉलेज बहुत ही उम्दा कॉलेज, ये हम नहीं कह रहे, आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए बिहार के लिए कि बीसीए और बीबीए की पढ़ाई कहाँ कहाँ अच्छी होती है। पहला नाम जरूर आर्किड बिजनेस कॉलेज का आना चाहिए। ये पटना में है, ये पटना के राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पटना में है। 27 वर्षों से आप युवाओं के साथ काम कर रहा है और इसीलिए हम इस संस्थान यानी आर्किड बिजनेस कॉलेज का आपको नंबर दे रहे हैं। इस पर बात कर लीजिए, कहीं भी कोई परेशानी हो बीसी और बीबीए के लिए, यहाँ एकदम आधुनिक, एकदम उत्तम क्लासरूम की व्यवस्था के साथ साथ प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ पढ़ाई होती है, और करियर में कहाँ जाना है रोजगार का भी असिस्टेंस दिया जाता है। नंबर नोट करें, 7520800 7520800। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से एकमात्र ऐसी संस्था है जो बीसी और बीबीए के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त है। और स्थायी मान्यता प्राप्त होने का क्या मतलब होता है?
3: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
4: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
3: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
3: फिर तो आर्किड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
5: आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800। याद रखें 7520800800।
2: सुन लिया ना, इसीलिए कहते हैं कि करियर का चुनाव, इंस्टीट्यूशन का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इसी कार्यक्रम में आशीष आदर्श जी आए थे, उन्होंने कहा था ना कि हर संस्थान अपने संस्थान को बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन में दिखाता है, लेकिन असलियत क्या है इसे जानने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसका सबसे अच्छा जरिया हो सकता है वहां के स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं या जो पढ़कर निकल चुके हैं। तो ऐसे ही कुछ युवा छात्रों की हमने प्रतिक्रिया ली जो आर्किड बिजनेस कॉलेज से बीसी और बीबीए कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत के अंश हम आपके लिए भेजते हैं इस स्टेशन से।
6: सर, मेरा नाम रिया राज है, अभी मैं बीसीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। बीसीए मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरा कंप्यूटर

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: कंप्यूटर साइंस में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, मतलब कंप्यूटर में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एआई वगैरह को जानने में मतलब बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरी मशीन्स वगैरह में, मशीन्स वगैरह को जानने में, इसको एक्सप्लोर करने में, कोडिंग वगैरह को सीखने में, पाइथन जावा सी प्लस प्लस इन सब में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं जॉब ही लेना चाहती हूँ टेक कंपनी में, और यहाँ बहुत ऐसा मतलब आते रहता है अपॉर्चुनिटी। आर्किट बिजनेस कॉलेज, वैसे मुझे तो रिकमेंडेशन मिला था मेरे एक फ्रेंड से जो अभी सीनियर थे मेरे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की बहुत अच्छी फैकल्टी है, सब बहुत अच्छे हैं। तो पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, फिर मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद फर्स्ट डे ही, जिस दिन मतलब सारे स्टूडेंट का ये इंस्ट्रक्शन होता है, उस दिन ही मैं अनुपम मैम से मैंने मिला। उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि वो मतलब बहुत विलिंगली ट्राई कर रही है कि हम लोग का मतलब फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो उसके बाद यहाँ की फैकल्टी से इंट्रोडक्शन हुआ हम लोग का। उसके बाद यहाँ के सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, यहाँ मतलब ट्राई किया जाता है कि बच्चे को पुश किया जाए उस चीज में। अब ये तो हमारे पे निर्भर करता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। अब जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो ऑफ कोर्स नहीं लगेगा जॉब, अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब बिना पढ़े ही सब कुछ मिल जाए। बैठ के सोचने से कुछ होगा नहीं, अब आप अपने आप को जितना इग्नोर करते रहोगे उतना आप मतलब गड्ढे में गिरते जाओगे, क्योंकि एटलीस्ट सबको पता है कि पटना में, बिहार में और पूरे भारत में पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, और कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग अपने फ्यूचर के खिलाफ एक स्टेप नहीं लेंगे तो हम और भी गिरते चले जाएंगे और उस लाइन में चले जाएंगे जहां हमसे कोई कभी नहीं पूछेगा। तो अभी मौका है, अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा कॉलेज है, सब कुछ अच्छा है, तो लेना ही चाहिए एडमिशन सबको। आर्किट बहुत सहयोग कर रहा है क्योंकि ये लोग सारे कंपनीज लगभग लाते ही रहते हैं हम लोग के लिए। यहाँ के फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं सब कोई। अब ऐसा तो नहीं है मतलब यहाँ पे कोई भी लापरवाही वगैरह भी कुछ नहीं है। इवेंट्स वगैरह में भी ले जाया जाता है, और ऐसे ऐसे इवेंट्स में ले जाया जाता है जिससे हम लोग का मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उन इन इवेंट्स के कारण उनका कॉन्फिडेंस भी खुलता है। तो और क्या ही चाहिए।
1: और क्या ही चाहिए। वाह वाह, बहुत खूब, एकदम लबरेज है। हाँ, कॉन्फिडेंस से आशा है कि अच्छे कॉलेज आर्किट बिजनेस कॉलेज में आ गए हैं, नौकरी मिलेगी ही। और इस छात्रा ने सारी चीजें बता दी। हाँ, रिकमेंडेशन था, मैं यहाँ आई, देखी फैकल्टी क्या है, इवेंट्स होते हैं, कंपनीज आती है, सारा कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि आप अपने लिए नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। हाँ, आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होता है, ये होता है संस्थान की ताकत और अपनी ताकत। जो उन्होंने कहा कि संस्थान चाहे लाख कुछ कर ले, लेकिन लेकिन लेकिन आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। BCA और BBA, हम बार बार, राजेश आपका बार बार कह रहा है कि बहुत ही उम्दा, हाँ बहुत ही उम्दा कोर्स है। और आर्किट बिजनेस कॉलेज के विषय में हम कुछ भी नहीं कहेंगे, आप सर्च करें, देखें, लोगों से पूछें, संस्थान में जाएं, जो दिल में आए सो पूछें। 27 साल से लगातार कोई संस्थान खड़ा है तो कुछ न कुछ होगा। अगर आपको जानकारियां और चाहिए तो नोट करें नंबर 7520800, 7520800 पर डायल करें और जानकारियां लें। सुनिए ये क्या कह रहे हैं।
2: मेरा नाम सुजल कुमार हुआ, मैं पटना का रहने वाला हूँ, मैं अभी BCA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट जब ज्वाइन किया था तो उस समय से ही काफ़ी एक्साइटेड था, फर्स्ट टाइम किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ कंप्यूटर और डेटा साइंस के फील्ड में काफ़ी कुछ अच्छा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। और यहाँ के फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव हैं और उन्होंने एक्चुअली हेल्प करते रहते बीच बीच में स्टूडेंट्स को, और मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह ज्वाइन होते हैं ताकि स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स और अपने करियर गोल के बारे में फोकस होकर के डिसीजन ले सके।
1: बिल्कुल सही, फोकस्ड होना तो बहुत जरूरी है और इसमें संस्थान बहुत बड़ा योगदान अपना दे सकता है। हमने जो दोनों स्टूडेंट से बातचीत के अंश सुनवाए आपको, सारे लोगों ने यही कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, बाहर भी ले जाया जाता है, फैकल्टी भी कोऑपरेटिव हैं, कंपनीज भी आती है रोजगार के लिए, माहौल बहुत अच्छा है और सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ आर्किट बिजनेस कॉलेज में आकर। हर स्टूडेंट को अपने संस्थान के लिए ऐसा ही सोचना चाहिए, लेकिन सोचेंगे तभी जब ये सुविधाएं मिलेगी। हाँ, शिक्षण संस्थान चलाना एक विजन होता है, एक अपनापन होता है कि हमें इन बच्चों को आगे पहुंचाना है, और इसमें आर्केड बिजनेस कॉलेज

0: हमने देखा है कि अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ता नहीं है। बहरहाल हम बातें कर रहे हैं बीसी और बीबीए जिन लोगों ने पीसीएम हाँ किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कोर्स किया है ना, उनके लिए बहुत ही उम्दा कोर्स है। आशीष जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर जो आपको इंजीनियरिंग चुनना हो और बीसी और बीबीए चुनना हो ना, तो दोनों में से किसको चुना जाए, बड़ा लॉजिकली उन्होंने बताया था। अभी हम सुनवाएंगे। अभी एक बार फिर से वैसे बच्चों के लिए जो अभी भी इनडिसिसिव हैं, अभी भी सोच रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए उनका वो बाइट हमने रखा हुआ है, मैं सुनवाऊंगा। उड़ान कार्यक्रम चल रहा है जिसे हम लेकर आते हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज की तरफ से, जहां बीसी और बीबीए की उम्दा पढ़ाई होती है। अगर आपको कोई भी, हम ये नहीं कहते कि आप वहां एडमिशन ले लो जाके, देखिए समझिए जानिए परखिए, अगर ऐसा लगे तो आप जुड़ जाइए और फोन पर बात करके आप आ जाइए या सीधे आ जाइए। लेकिन फोन नंबर हम आपको बताते हैं 7520800 7520800, ये नंबर है, डायल करें, पूरी जानकारियां एकदम तफसील से लें। लेकिन संस्थान स्थायी मान्यता प्राप्त होना तो बहुत सारी परेशानियां नहीं आती हैं, जैसे ये,
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्किड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
3: आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
0: तो चलिए, हम चाहते हैं कि आपके जीवन में परेशानियां ना हो, और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पीसीएम किया है लेकिन इनडिसिसिव हैं, इंजीनियरिंग जाएं या बीसीए या बीबीए की तरफ जाएं। आशीष जी आए थे इस कार्यक्रम में, उन्होंने क्या कहा था सुनिए।
4: मेरा यही कहना है, यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है, तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपका जो टैलेंट है वो एवरेज है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूं, जिस कोर्स को आप जरूर करिए और आप देखिए उसका कितना फायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप एमसीए कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। एमसीए करने के बाद में बैंक से लेकर के इवन के जो आईटी कंपनी से लेकर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एमसीए, वो एमसीए आप कीजिए बीसीए करने के बाद में, या बीसीए करने के बाद भी इवन बहुत सारी आईटी कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्सॉर्ब कर लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीसीए एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल करके कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूं कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़, तो मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, बीसीए करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़, आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और बीसीए करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप बीसीए करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के एमसीए कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
0: थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप करियर काउंसलर भी हैं, आप बच्चों के मन को अच्छे से समझते हैं, आप टेक्निकल पढ़ाई को भी समझते हैं, और लोगों के बीच आपकी बात एक मायने रखती है। बहरहाल, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन सेल्फ एनालिसिस कीजिए, जो आशीष जी ने बातें कही ना, उसको तथ्यों पर रखकर तौलिए और फिर डिसीजन लीजिए, सेंटिमेंट में नहीं, किसी के कहने सुनने में नहीं। हम कह रहे हैं, यानी राजेश कह रहा, आशीष जी कह रहे, लोग कह रहे हैं बीसी और बीबीए की पढ़ाई बहुत अच्छी है, इसको भी तौलिए, समझिए, जानिए, परखिए, बीसी और बीबीए की पढ़ाई आपको कहां कहां ले जा सकती है। हाँ, सारी चीजें हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये सही है, तो आर्किड बिजनेस कॉलेज 27 वर्षों से लगातार आप युवाओं के साथ लगा है आपके ब्राइट करियर के लिए। नोट कीजिए नंबर जहां आप बात कर सकते हैं, 7520800 7520800, ये नंबर है, जाइए, देखिए, सुनिए, परखिए और तब बातचीत कीजिएगा, है ना, समझ रहे हैं ना, मेरे कहने से नहीं। तो बस आज का उड़ान कार्यक्रम खत्म करने की अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।

0: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: परेशानियों से घिरे हैं।

0: उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
3: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने

0: देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां

0: हुए भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
3: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9

वंदना कुमारी की आवाज़ में अभी आप ये सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं केसरी नंदन भगत और उनके साथियों को।
1: हाँ

बदलल जमाना बदलल खेतिया के ढंगवा हर बाके बदले खेतवा।

इसी के साथ भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

करार एल्बम से ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में। डॉक्टर शफी हसन के लिखे इस कलाम की धुन बनाई थी हरिहरन ने।

0: गुलाम अली की गाई इसी गज़ल के साथ महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: वो बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प गीतकार के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब क्या करें, इस गीतकार का नाम ही बावरा है। जाहिर है कि बावरेपन की बहुत सारी निशानियां होंगी इनकी इस दास्तान में।

आज के फनकार कार्यक्रम आज गुलशन बावरा पर केंद्रित है, एक ऐसी जुनूनी शख्सियत पर जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और फिल्म संसार में जबरदस्त नाम कमाया।

0: देखिए जी, मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को जिला शेखुपुरा में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। साखी वाले दिन मैं जन्मा था। कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए, तो मैं तो अपने माता पिता खो चुका था। लकीली देखिए, हमारी एक बहन है कौशल्या देवी, जो जयपुर में रहती थी।
1: पढ़ाई लिखाई के बाद गुलचन बावरा को शौक लग गया लिखने का और वो चले आए मुंबई।
0: जब मैं आया था बम्बई में 1955 में, तो मुझे लगता है बम्बई की पॉपुलेशन 10 लाख थी, और आज इतनी पब्लिक को देखना, उनसे वाकफियत करना, उनसे बोलना।
1: लेकिन मुंबई वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं आए थे, वो तो आए थे गायक बनने के लिए। आपको बता दें कि गुलशन बावरा को रेलवे में नौकरी मिल गई थी और कोटा में उनकी पोस्टिंग हुई, और उसके बाद वो चले आए मुंबई। सन 1955 में वो मुंबई आए, रेलवे में क्लर्की करते और बाकी समय में फिल्मों में लिखने के लिए और गायकी के लिए जद्दोजहद करते।
0: बम्बई ऐसी नगरी है कि यहाँ पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बम्बई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ।
1: यही वो दिन थे जब रेलवे में माल गोदाम की नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब से आई मालगाड़ी गेहूं के एक के बाद एक बोरे उतारे चली जा रही है। गेहूं की इस जबरदस्त पैदावार को देखकर गुलशन बावरा के मन का जो गीतकार था, वो कह उठा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये कविता उन्होंने अपनी डायरी में लिखकर रख ली और मनोज कुमार को उन्होंने दिखाई, जो उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और गुलशन बावरा के दोस्त भी थे। मनोज कुमार को ये कविता याद रह गई। आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म उपकार बनाई, तो इस कविता को एक नामी गीत में बदल दिया।

0: गुलशन बावरा का नाम गुलशन बावरा कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है।
1: बात यूं है, जब मैं नया नया दिल्ली से आया था तो मेरा कुछ रहने या कपड़ों का स्टाइल कुछ ऐसा था जो दिल्ली वाले नीले पीले कपड़े और पहना करता था, तो लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे। गीत लिखा चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जा। तो जब वो गीत रिकॉर्ड हुआ उसके साथ ही मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तो एक दफा कल्याण जी भाई के घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था, तो उसने बोला, एक तीसरा गाना लिखना था भजन, तो उसने उसको बोला कि

0: ये गाने तुम उसी से ही लिखवाओ जिसने ये दोनों गाने लिखे। तो बोले ये सामने बैठा हुआ है लड़का, इसी ने लिखा है वो गाना। तो बोले झूठ मत बोलो कल्याण जी भाई, आपका जोक मारने का स्टाइल है तो ये क्या लिखेगा, ये तो पिक पॉकेट था, पॉकेट मार था लग बावरा। तो उस फिल्म में शैलेंद्र और हर्षद के भी गीत थे, तो उन्होंने रविंदर भाई से पूछा कि रवीन भाई ये कल्याण जी करेक्ट बोल रहे हैं कि ये गाने इसी ने लिखे हैं? बोले हाँ बिल्कुल इसी लड़के ने लिखे हैं। तो बोले अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा, ये बावरा सा लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया।
1: तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। सबसे पहले गुलशन

0: बोले हाँ बिल्कुल इसी लड़के ने लिखे। तो बोले अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा, ये बावरा सा लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया।
1: तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। सबसे पहले गुलशन बावरा ने सन 1959 में कल्याण जी वीरजी शाह के संगीत निर्देशन में अपना पहला गीत लिखा जिसे लता मंगेशकर ने गाया। वो गाना था ये।

सन 1961 में गुलशन बावरा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी ताकत से फिल्मों में गाने लिखने लगे। गुलशन बावरा ने सबसे ज्यादा काम आरडी बर्मन के साथ किया। पंचम के साथ उनकी दोस्ती बड़ी ही मशहूर रही है। गुलशन बावरा ने एक एल्बम भी जारी किया जिसमें वो पंचम से जुड़ी दोस्ती की और गाने बनने की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें गुलशन बावरा ने बताया था कि एक दिन बारिश का समय था और पंचम का उनके पास फोन आया। उन्होंने फोन पर गुलशन बावरा को एक धुन दी जो थी चाबू चाबू चिया चिया चाबू चाबू चिया। गुलशन बावरा ने कहा, ये क्या है, इस पर मैं क्या गाना लिखूं? तो पंचम ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर पर आता हूं। दरवाजा खटका और पंचम गुलशन बावरा के घर में घुसते हुए गाना गाने लगे। मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग बनाना अंजू, गीत क्या है, धुन क्या है, तू समझ गया गुल्लू, अब जल्दी से लिख दे गाना गुल्लू।

इस तरह से बड़े ही सुंदर और मस्ती भरे माहौल में गुलशन बावरा और पंचम ने कुछ अनमोल गाने दिए। गुलशन बावरा को दो बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सन 1974 में जंजीर फिल्म के इस गाने

0: 68 में फिल्म उपकार के इस गाने के लिए।
1: ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
0: जरा हाथ की सफाई फिल्म का ये गाना सुन लीजिए और ये सोचिए कि गुलशन बावरा ने किस तरह के मजेदार और सुरीले गाने दिए फिल्म संसार।

बाबरा बहुत लंबे समय तक लिखते रहे, यहां तक कि अजय देवगन के अभिनय वाली हकीकत फिल्म का ये मशहूर गाना सुनिए जो उनके बाद के दौर का गाना है।

वैसे आपको बता दें कि गुलशन बावरा पर्दे पर भी नजर आए फिल्म जंजीर के इस गाने में जो शख्स हारमोनियम बजाता हुआ थिरक रहा है वो गुलशन बावरा ही है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म संसार को बहुत ही मस्ती भरे और अनमोल गाने देने वाले गीतकार गुलशन बावरा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग।

पिता का साया एल्बम का ये टाइटल गीत अभी आप सुन रहे थे मोना वर्मा और जयवर्धन वर्मा की आवाज़ों में। रसरंग कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कैलाश खेर को।

कैलाश खेर को अभी आप सुन रहे थे। देश पर जान लुटाएंगे एल्बम का ये गीत था। अब आइए हम आपको सुनवाएं मुज्तबा अजीज नाजा की आवाज़ में चश्मे करम सरकार एल्बम का ये गीत।

मुस्तफ़ा अजीज़ नाज़ा को सुनने के बाद अब आइए रसरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ताज की आवाज़ में अनकंडीशनल लव एल्बम का टाइटल सॉन्ग।

श्रोता दोस्तों, अब आइए रसरंग कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं। इतना ना याद तुम आया करो एल्बम का टाइटल सॉन्ग प्रियंका सिंह की आवाज़ में। लेकिन इससे पहले सुनते हैं कुछ संदेश।

कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

इसी गीत के साथ गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

चित पर तराने सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रात की खामोशी में जब चांदनी धीरे धीरे अपना रंग बिखेरती है तो दिल भी किसी खूबसूरत नगमे की तलाश करने लगता है, और इन्हीं हसीन एहसासों के साथ सुनिए आज की महफिल का एक बेहद दिलकश गीत जो मोहब्बत की यादों को फिर से ताजा कर देगा। चांद निकला है सितारों की बारात आई है, चांद निकला है सितारों की बारात आई है, रात ने फिर कोई मीठी सी बात सुनाई है, दिल ने जब छेड़ी मोहब्बत की वही पुरानी धुन, यादों में फिर एक हसीं मुलाकात आई है।

दोस्तों, सावन की रिमझिम फुहारें, ठंडी ठंडी हवाएं और मीठी की सौंधी खुशबू मन को एक अलग ही एहसास से भर देती है। ऐसे ही सुहाने मौसम की याद दिलाता है हमारा अगला सदाबहार गीत। तो आइए सावन की इस खूबसूरत शाम को संगीत के रंग में रंगते हैं और आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा नगमा। सावन की घटा छाई, हवाओं ने गीत सुनाया, भीगी भीगी फिजाओं ने दिल को फिर से बहलाया, कुछ यादें, कुछ सपने और मौसम का ये प्यार। सावन लाया है दिल के तारों में मधुर झंकार।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जी यार।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। और चित्रपट तराने कार्यक्रम में बातें हो रही हैं सावन की, बारिश की, और प्यार मोहब्बत की। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बारिश की रिमझिम फुहार, सावन की ठंडी बयार और आँखों में छिपी अनकही भावनाएं, इन सब का खूबसूरत एहसास समेटे हुए है यह सदाबहार गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो आइए यादों और एहसासों की इसी मधुर दुनिया में होते हैं और सुनते हैं एक मधुर गीत। लेकिन इससे पहले आपकी इजाज़त से थोड़ी सी और गुफ्तगू कर लें। बरसात की बूंदों में जैसे कोई पैगाम हो, इन नम नम आँखों में किसी का नाम हो, दिल की धड़कन भी आज कुछ कहने लगी है, शायद शायद सावन में फिर किसी की याद आई है।

दोस्तों आइए अब कार्यक्रम के आखिर में थोड़ा सा बदलते हैं। सावन नहीं है, फुहार नहीं है अगले नगमे में, बरसात की बात नहीं है, लेकिन फ्लेवर वही है लगभग, क्योंकि बात प्यार की भी है, मोहब्बत की भी है, इश्क से सराबोर भी है ये अगला गीत जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि फ्लेवर वही है, कलर चेंज है ना। दोस्तों मोहब्बत की दुनिया में कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो वक्त बीत जाने के बाद भी दिल के बेहद करीब रहते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत और सदाबहार गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, तो आइए यादों और मधुर एहसासों से सजे इस नगमे का आनंद लेते हैं। और कहते हैं मोहब्बत की खुशबू से महकता रहे हर पल, दिल में सजा रहे कोई खूबसूरत सा कल, कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं एहसास बन जाते हैं, सुनते ही पुराने खूबसूरत पल याद आ जाते हैं।

0: तो दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ आज के हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम में से विदा लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आज की संगीत भरी शाम ने आपके दिल को सुकून और चेहरे पर मुस्कान दी होगी। संगीत यूं ही आपके जीवन में खुशियों के रंग भरता रहे। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपनों के साथ प्यार बांटते रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार और फिर मुलाकात होगी एक नए नगमे, नई यादों और नए एहसासों के साथ। इसी के साथ चित्रपट तराने यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे और तब लेकर हाजिर होंगे आपके लिए विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे 6:05 पर। वापस से स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे नमस्ते रोहतास। पसंद आपकी हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 8:20 पर सुबह। अंकुर नन्हे दोस्तों के लिए ये कार्यक्रम पूर्वाह्न 10:05 पर हम प्रस्तुत करेंगे। 10:30 पर लोक माधुरी और रसधार कार्यक्रम भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का है ये कार्यक्रम, आप सुनेंगे कल पूर्वाह्न 10:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रम कल पूर्वाह्न 11:00 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। वापिस से स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से वंदन कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी 5:10 पर। भोजपुरी समाचार बुलेटिन हम रिले करेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से 5:30 पर। विज्ञान एवं पर्यावरण की प्रस्तुति होगी कल 5:35 पर। गांव घर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 6:10 पर। गुड इवनिंग रोहतास रोज की तरह कल भी आप सुनेंगे 7:25 पर। ई मन पसंद आप सुनेंगे कल 7:50 पर। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण कल होगा 8:30 पर। लोकधारा भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम कल आप सुनेंगे 9:00। रसरंग कार्यक्रम 10:00 और 10:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट तराने। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा

0: मात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और एनएफएसयू फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।